103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी एफएम शिमला से बोल रहे हैं। आज रविवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 27वीं तिथि तदनुसार 17 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। सुप्रभात।

0: हर्ट्ज पर आप हमें सुन रहे हैं। 6 बजने को हैं। हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों के लिए आइए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन
2: के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। दोनों प्रधानमंत्री के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन भी यूरोपीय उद्योग जगत के गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगी। यह यूरोपीय उद्योगपतियों का एक प्रमुख मंच है। इस वर्ष जनवरी में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप की यह पहली यात्रा है। यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना और तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों का समाधान तलाशना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
3: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
4: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
3: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
2: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
5: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
2: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। उन्होंने कहा कि दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान भी करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सकी। सुनील नरेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे डेल्ही कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेटो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो सी फेई और नूर इज़्ज़ुद्दीन को हराया।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी एफएम शिमला है। 6:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे भक्ति रस कार्यक्रम हिमांजलि।

भोर भई अब जागो प्यारे, प्रभु का नाम पुकारो। जीवन के इस नए दिवस को प्रभु चरणों में वारो। आज की इस सुंदर सुबह में स्वयं को परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हैं। हिमांजलि कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं गणपति वंदन के साथ।

नहाए धोए क्या भया, जो मन का मैल न जाए। भजन हमारे भीतर के उसी मैल को धोकर आत्मा को शुद्ध करते हैं। भक्ति का सच्चा अर्थ है इस चंचल मन की डोर को संसार के सारे विचारों से खींचकर केवल प्रभु चरणों में बांध देना।

माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। कबीरदास जी ने कितनी सरलता से हमें ये समझाया है कि असली भक्ति बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि हमारे अंतर मन की शुद्धता में है।

आपके मंगलमय दिन की कामना करते हुए मैं भारती यह कार्यक्रम यहीं संपन्न करती हूँ। हिमांजलि भक्ति संगीत यह कार्यक्रम आप FM शिमला पर अभी सुन रहे थे। राम के चरित्र का पवित्र मानसरोवर मानस गान, आइए अब सुनते हैं।

भगवान शंकर के शाप के कारण शूद्र कुल में जन्मे काकभुशुंडी को हजार योनियों में जन्म ग्रहण करना पड़ा। अंतिम बार वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए और इसी जन्म में उन्हें श्री राम के अनन्य भक्त होने का सुअवसर और गौरव प्राप्त हुआ। उन्हीं दिनों सुमेरु पर्वत पर लोमश ऋषि वटवृक्ष के नीचे बैठे प्रभु भक्ति और उपासना किया करते थे। काकभुशुंडी, जो अब ब्राह्मण कुलवंशी थे, लोमश ऋषि के पास पहुंचे और उनसे सगुणोपासना का मूल मंत्र देने की प्रार्थना की, ताकि अयोध्या जाकर स्वयं अपनी आंखों से श्री राम का धाम देखकर अपना जीवन सफल करें। किंतु लोमश ऋषि ने सगुण मत का खंडन करते हुए निर्गुण ब्रह्म का निरूपण आरंभ कर दिया। उत्तर में ब्राह्मण ने सगुण मत का निरूपण किया और अपने मत के प्रतिपादन में वे ऋषिवर से वाद विवाद पर उतर आए। इनकी हठधर्मिता से लोमश ऋषि को क्रोध हुआया और इनकी टाएं टाएं सुनकर उन्होंने इनको चांडाल पक्षी अर्थात कौवा हो जाने का शाप दे दिया। ब्राह्मण ने नतमस्तक होकर ऋषिवर का शाप स्वीकारा और कौवा होकर सहर्ष वहां से उड़ चले। ऋषि के प्रति इनके मन में कोई दुर्भाव उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि ये जानते थे कि सभी क्रियाओं के मूल में रघुनाथ जी की प्रेरणा होती है।

अभी आप सुन रहे थे तुलसीकृत मानस गान। गाया कलाकार लता मंगेशकर, ए हरिहरण और साथी, संगीतकार सतीश भाटिया। FM शिमला 103.7 MHz पर अब आप सुनेंगे देशभक्ति गीत।

0: FM शिमला 103.7 MHz पर आपने ट्यून इन किया है। अब वक्त है FM न्यूज हेडलाइंस का।
1: नमस्कार, FM न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं गोदावरी वर्मा। प्रदेश में 4 नगर निगमों सहित 51 शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों को लेकर आज वोट डाले जाएंगे। मतदान अब से कुछ देर बाद 7 बजे शुरू होगा, जो 3 बजे तक जारी रहेगा। धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन नगर निगम में ये चुनाव पार्टी चिन्ह पर करवाए जा रहे हैं, जहां भाजपा व कांग्रेस के बीच ही मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यदि मतदान के दिन मतदाता के पास किसी कारणवश मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो उसके स्थान पर किसान पासबुक, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड जैसे 17 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाया जा सकता है। नगर परिषद और नगर पंचायतों के लिए डाले गए वोटों की गिनती आज मतदान खत्म होने के तुरंत बाद शुरू होगी और शाम तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा नगर निगमों के लिए डाले गए वोटों की गिनती 31 मई को होगी। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेश के सभी मतदाताओं से शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने पहली बार मतदान करने वाले युवाओं से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शहरी निकायों में पार्टी की जीत का दावा किया है। उन्होंने शिमला में कहा कि चारों नगर निगमों में कांग्रेस पार्टी ने ईमानदार व कर्मठ प्रत्याशी उतारे हैं और सभी शहरी निकायों का संतुलित विकास करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश भाजपा ने भी नगर निगम चुनावों में अपनी जीत का दावा किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने नाहन में कहा कि चारों नगर निगमों में भाजपा की जीत से विकास का नया दौर शुरू होगा और जनता को कांग्रेस सरकार की विफलताओं से मुक्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल शिमला से नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। उनका आज नई दिल्ली से थिरुवनंतपुरम जाने का कार्यक्रम है, जहां वे 18 मई को केरलम के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में आज आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल का एक अहम मुकाबला खेला जाएगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। FM न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
2: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।

0: आप सुन रहे हैं FM शिमला, 7 बजने को हैं आकाशवाणी दिल्ली से। अब सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन के बीच हेग के व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिन बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से बढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति मुक्त से प्रतिबंधित में संशोधित कर दी गई है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। विभाग के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि हिंदुओं को अपनी प्राचीन परंपराओं के अनुसार परिसर में पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति होगी। उच्च न्यायालय ने इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए, जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सका। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से होगा। दिल्ली में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कार्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो ज़ीफेई और नूरुज़्ज़ीन को हराया था। मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में ऐसी ही स्थिति रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार।

0: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।
1: हंड्रेड 3.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है FM शिमला। 7:05 हुए हैं और ये समय है चिंतन का।

महामाया की माया ने कैसा जादू कर रखा है। ब्रह्मा और विष्णु अचैतन्य हुए हैं तो फिर जीव उसे कैसे समझे। मछुआ छिद्रमय जाल को फैलाता है और उसमें मछली प्रवेश करती है। आने जाने का मार्ग खुला रहता है, फिर भी मछली नहीं भागती। रेशम का कीड़ा कोश बनाता है, यदि काटना चाहे तो वो उसे काट भी सकता है। महामाया से बद्ध कीड़ा खुद अपने ही जाल में मर जाता है। एक बाबा जी घूमते फिरते एक शहर में पहुंचे। रात ढल चुकी थी, शहर का दरवाजा बंद हो गया था। सर्दी के दिन थे, बाबा जी को ठंड लगी। गर्म कपड़ा पास में था नहीं। बाबा जी ने सोने के लिए जगह देखी, एक बड़भुंजे की भट्टी थी। बाबा जी ने देखा कि ये जगह बढ़िया है। भट्टी के भीतर थोड़ी थोड़ी गर्माहट थी, बाबा जी उसके भीतर जाकर सो गए। सुबह हुई, बाबा जी की नींद खुली। बगल में ही राजा का महल था। उधर राजा की नींद खुली, राजा ने अपने साथियों से पूछा, कहो भाई रात कैसे बीती। इधर बाबा जी भट्टी के भीतर से बोले, कुछ तुम्हारे जैसी, कुछ तुम्हारे से अच्छी। राजा को अनजानी आवाज सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने फिर पूछा, रात कैसे बीती। बाबा जी ने फिर कहा, कुछ तुम्हारे जैसी, कुछ तुम्हारे से अच्छी। राजा ने अपने आदमियों को भेजा कि जाकर देखो ये कौन बोल रहा है, उसको पकड़कर मेरे सामने लाओ। राजपुरुषों ने बाहर जाकर चारों ओर देखा, पर उनको कोई दिखाई नहीं दिया। जब पुनः बाबा जी ने वही बात कही, तब राजपुरुषों ने देखा कि भट्टी के भीतर एक बाबा जी बैठे हैं, वही बोल रहे हैं। उन्होंने बाबा जी से कहा कि चलो, आपको राजा ने बुलाया है। बाबा जी ने कहा, मैंने कौन सा अपराध किया है जिसके कारण राजा ने मुझे बुलाया है। राजपुरुषों ने कहा, आपके किसी अपराध के कारण राजा ने आपको नहीं बुलाया है, वे तो आपसे मिलकर कुछ बात करना चाहते हैं। बाबा जी भट्टी से बाहर निकले, उनके मुख पर और शरीर पर जगह जगह भट्टी की राख लगी हुई थी, कहीं कहीं कालिक भी लगी हुई थी। वे उसी अवस्था में राजपुरुषों के साथ चल पड़े। राजपुरुषों ने बाबा जी को राजा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। राजा ने बाबा जी को प्रणाम किया और पूछा, मेरे प्रश्न का उत्तर आपने दिया था। बाबा जी बोले, मैंने प्रश्न सुना तो उत्तर दे दिया, मुझे नहीं पता कि प्रश्न आपने किया था। राजा ने कहा, मैंने पूछा कि रात कैसी बीती, तो आपने उत्तर दिया, कुछ तुम्हारे जैसी, कुछ तुम्हारे से अच्छी। अब आप बताएं, रात मेरे जैसे कैसी बीती। मैं तो महल में सोया था और आप भट्टी में, फिर मेरे जैसी कैसे हुई। बाबा जी बोले, जब मैं और आप सो गए, तब ना तो मुझे भट्टी की याद रही और ना आपको महल याद रहा होगा, तो हम दोनों बराबर हो गए ना। आप नरम नरम गद्दों पर सोए, मैं नरम नरम राख पर सोया। राजा बोला, और मुझसे अच्छे कैसे हुई। बाबा जी ने उत्तर दिया, नींद खुलते ही आपको अपनी और राज्य की सैकड़ों चिंताएं सताने लगी, पर मुझे कोई चिंता नहीं है, इसलिए मेरी रात आपसे अच्छी बीती। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो साहन के साह।

डॉक्टर हुकुम शर्मा की प्रस्तुति चिंतन अभी आपने सुना। सुबह के 7:10 होने को हैं। अब आपको हम बताएंगे कि आज FM शिमला 103.7 MHz पर आप किस समय पर कौन सा कार्यक्रम सुन सकते हैं।

एंटरटेनमेंट और जानकारी से भरपूर कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला आप सुनिएगा थोड़ी ही देर में 7:15 पर। लोक संगीत आप सुनेंगे 8:32 पर, 8:45 पर फिल्म संगीत। कुदरत के रंग कार्यक्रम में आज करेंगे हिमाचल की किसी नई जगह की सैर फिल्मी तरानों के साथ 9:31 पर। नई पुरानी फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम झनकार आप सुनेंगे 10:00। साहित्य दर्पण में आज आप सुनेंगे डॉक्टर विजय लक्ष्मी नेगी से कविता पाठ 10:30 पर। पुरानी फिल्मों से गीत सुनिएगा 11:05 पर और 11:30 पर लोक संगीत। महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम महिला सम्मेलन सुनते हैं आप 12:20 पर। 1:10 पर कार्यक्रम म्यूजिक मस्ती के बाद 2:00 आप सुनेंगे सब रंग। शिखरों के स्वर में सुनिएगा लोक संगीत 2:30 पर। 3:10 पर ओल्ड हिट फिल्म संगीत। दी वॉइस ऑफ यूथ कार्यक्रम युववाणी का समय रहता है 3:30 का।

शाम 7:10 पर कार्यक्रम कृषि जगत। रात 8 आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत, एक फिल्म से। इस कार्यक्रम का समय रहता है 9:15 का। दिल की आवाज भी सुन 9:30 पर, और गजलों की महफिल सजेगी 10:00।

0: सदाबहार नगमे आप सुनेंगी रात 10:30 पर। हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों की अगर बात करें तो हिंदी समाचार आप सुनते हैं सुबह 8:00, 12:00, 1:00, 2:15 पर, रात 8:45 पर और 11:00। अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे सुबह 8:15 पर, 12:05 पर, 1:05 पर, शाम 7:05 पर, रात 9:00 और 11:05 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तो ये थी एफएम शिमला पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।
1: शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी, ये है आकाश।

अश्वणी। माटी की महक है जहां, खेतों खलियानों की वही आवाज घाटियों में गूंजती है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एफएम।

7:15 हो चुके हैं। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर लीजिए पेश है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला।

गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं, जुड़े हुए हैं हमारे साथ अपनी होस्ट एंड दोस्त भारती के साथ प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला। आज आप सुनेंगे रोज ही की तरह जानकारी और मनोरंजन से सजे इस कार्यक्रम में बातें करेंगे ढेर सारी। पहले पर एक बॉलीवुड नंबर की है बारी, तो यूं ही बने रहिए हमारे साथ। इस प्रोग्राम में आगाज कर रहे हैं इस गीत के साथ।

0: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
1: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
0: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
1: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी FM शिमला पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला।

छोटी सी बात पर रिश्तों को मत तोड़ो, 8 अरब की भीड़ में 8 लोग तो जोड़ो। कोई भी आपके पास 3 कारणों से आता है, भाव से, अभाव से और प्रभाव से। यदि भाव से आया है तो उसे प्रेम दो, अभाव से आया है तो उसकी मदद करो, और यदि प्रभाव से आया है तो प्रसन्न हो जाओ कि परमात्मा ने आपको इतनी क्षमता दी है। ईश्वर ने हमें ये योग्यता इसलिए दी है ताकि हम अपने शब्दों, अपने व्यवहार और अपने कार्यों से किसी के निराश मन में आशा की नई किरण जगा सकें। और सच मानिए, जब आपके छोटे से प्रयास से किसी के चेहरे पर मुस्कान खिलती है तो उस खुशी की खनक आपके अपने दिल को भी बाग बाग कर देती है। जब आप दूसरों के जीवन में रंग भरते हैं ना, तो आपकी अपनी जिंदगी का कैनवस भी और खूबसूरत हो जाता है। तो इसी अद्भुत जादुई एहसास के साथ करते हैं आज सुबह की शुरुआत। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए FM शिमला के साथ। शो आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग शिमला।

जड़ें अगर सलामत हो तो दरख्त मुस्कुराते हैं, इतिहास को समझने वाले ही वर्तमान में कदम जमाते हैं। गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम में अब होगी बात इतिहास में आज ही के दिन घटित कुछ विशेष घटनाओं की। स्वतंत्र भारत ने पूर्ण गणराज्य बनने के बाद 17 मई 1949 में राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल रहने का आधिकारिक निर्णय लिया। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का प्राथमिक उद्देश्य लोकतंत्र, मानवाधिकार, शांति और सतत विकास के साझा लक्ष्यों की दिशा में मिलकर

काम करना है। सत्रह मई 1954 में अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से माना कि सरकारी स्कूलों में रंग भेद करना पूरी तरह से असंवैधानिक है। बच्चों की विश्व प्रसिद्ध किताब द वंडरफुल विजिट्स ऑफ ओजेड पहली बार 17 मई 1900 में अमेरिका में प्रकाशित हुई थी। सन 1990 में WHO ने

0: भारतीय मुक्केबाजी के इतिहास में 17 मई 2010 ये दिन स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाज विजेंदर सिंह, जिन्हें बेस्ट बॉक्सर भी चुना गया था, दिनेश कुमार, परमजीत समोटा, अमनदीप, सुरन जॉय और जय भगवान ने अपने अपने फाइनल मुकाबले जीतकर सभी 6 गोल्ड मेडल्स जीते थे। भारतीय सेना ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अग्नि 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल यूजर ट्रायल किया था 17 मई 2010 को उड़ीसा के व्हीलर द्वीप, जिसे अब हम अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से भी जानते हैं, के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। तो ये था आज का इतिहास, और आज के इतिहास से कुछ विशेष घटित घटनाएं हमने आपको बताई। हमारे जिन लिसनर्स का आज जन्मदिन है या सालगिरह है, उन्हें भी आकाशवाणी FM शिमला की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और अब एक संदेश के बाद आपके लिए एक नगमा।
1: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
2: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
3: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
4: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी अपनी स्थापना के 90 गौरवशाली वर्ष पूरे करने जा रहा है। 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो किया गया था और इसे आधिकारिक तौर पर 1956 में आकाशवाणी नाम दिया गया। क्या आप जानते हैं 1939 में नोबल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कोलकाता शॉर्टवेव सर्विस के उद्घाटन पर लिखी एक कविता में ऑल इंडिया रेडियो को आकाश की वाणी आकाशवाणी कहकर संबोधित किया। 90 वर्षों का ये सफर आपके अटूट विश्वास से सजा है। आकाशवाणी की हर गूंज में आपके अपनत्व का एहसास रमा है। श्रोताओं, आपके इस अनमोल साथ के लिए सहृदय धन्यवाद। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का हमारा ये मंत्र सदा रहेगा देश के नाम।

0: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है, वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में, सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
1: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

17 मई है आज, और दोस्तों आज है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे। 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU की स्थापना की याद में ये मनाया जाता है। 2026 का थीम है डिजिटल जीवन रेखाएं, एक जुड़े हुए विश्व में लचीलेपन को मजबूत करना। 2026 के लिए इस थीम का चयन वैश्विक नेटवर्क और प्रणालियों को संकटों के दौरान अधिक मजबूत और भरोसेमंद बनाने पर जोर देने के लिए किया गया है। 2026 की थीम सरकारों, उद्योगों और समुदायों से उन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स जैसे कि सबमरीन केबल्स, सैटेलाइट्स और डाटा सिस्टम को मजबूत करने का आह्वान करती है, जो दुनिया को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। डिजिटल लाइफलाइंस यानी इंटरनेट और फोन अब सिर्फ मनोरंजन के साधन तो नहीं हैं, बल्कि हमारी लाइफलाइंस बन चुके हैं। डिजिटल नेटवर्क ने हम सभी को जोड़ रखा है। तो दोस्तों, आज के इस डिजिटल दौर में याद रखिए कि नेटवर्क चाहे 4G हो, 5G हो या 6G, दिल का कनेक्शन हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए। तकनीक का हाथ थामिए, लेकिन अपनों का साथ कभी मत छोड़िए, और हमारा साथ भी बिल्कुल मत छोड़िए। यूं ही बने रहिए हमारे साथ 103.7 MHz FM शिमला। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग शिमला, और अब ये सॉन्ग आपके लिए।

0: आकाशवाणी के साथ जुड़िए और अपने उत्पाद और सर्विसेज यानी सेवाओं से जुड़े अपने कारोबार के बारे में सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें।
1: शुभवाणी, लाभवाणी, जनजन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।
2: अब हम बात करेंगे एक ऐसे खामोश दुश्मन की जो बिना बताए दस्तक देता है। जी, हम बात कर रहे हैं हाइपरटेंशन की। आज है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। इस दिन की शुरुआत सबसे पहले मई 2005 में वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग द्वारा की गई थी। शुरुआत में ये 14 मई को मनाया गया, लेकिन 2006 से इसे स्थायी रूप से 17 मई के लिए निर्धारित कर दिया गया। 2026 का थीम है कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन टुगेदर, मिलकर उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करें। नियमित रूप से अपना ब्लड प्रेशर जांचें और इस खामोश कातिल को हराएं। खुद से वादा कीजिए कि नमक थोड़ा कम और मुस्कुराहट थोड़ी ज़्यादा। बीपी कंट्रोल में रखिए क्योंकि आपकी जान बहुत कीमती है। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए हमारे साथ।

0: शिमला। ये प्रोग्राम अभी आप सुन रहे थे हमारे साथ एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, 9:31 पर कुदरत के रंग कार्यक्रम में आपको करवाएंगे हिमाचल की एक नई जगह की सैर, तो जरूर सुनिएगा ये कार्यक्रम। नए पुराने गीतों के झनकार सुनिएगा 10 बजे। और 10:30 पर कार्यक्रम साहित्य दर्पण में आज सुनिएगा कविता पाठ डॉक्टर विजय लक्ष्मी नेगी से। एफएम शिमला पर अब वक्त है एफएम न्यूज हेडलाइंस का।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं गोदावरी वर्मा। प्रदेश में 4 नगर निगमों सहित 51 शहरी स्थानीय चुनावों को लेकर आज वोट डाले जा रहे हैं। मतदान 7 बजे से शुरू हो गया है जो 3 बजे तक चलेगा। धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन नगर निगम में यह चुनाव पार्टी चिन्ह पर करवाए जा रहे हैं, जहां भाजपा और कांग्रेस के बीच में मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। सिरमौर जिला में नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की भीड़ देखने को मिल रही है। जिला में 2 नगर परिषद और 1 नगर पंचायत के लिए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस दौरान कुल 40,133 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यदि मतदान के दिन मतदाता के पास किसी कारणवश मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो उसके स्थान पर किसान पासबुक, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड जैसे 17 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाया जा सकता है। नगर परिषद और नगर पंचायतों के लिए डाले गए वोटों की गिनती आज मतदान खत्म होने के तुरंत बाद शुरू होगी और शाम तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा नगर निगमों के लिए डाले गए वोटों की गिनती 31 मई को होगी। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने प्रदेश के सभी मतदाताओं से शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने पहली बार मतदान करने वाले युवाओं से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शहरी निकायों में पार्टी की जीत का दावा किया है। उन्होंने शिमला में कहा कि 4 नगर निगमों में कांग्रेस पार्टी ने ईमानदार व कर्मठ प्रत्याशी उतारे हैं और सभी शहरी निकायों का संतुलित विकास करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। शहरी निकाय चुनावों के अलावा प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर भी गतिविधियां जारी है। राज्य में इस बार 26, 28 और 31 मई को 3 चरणों में पंचायती राज चुनाव करवाए जा रहे हैं। कांगड़ा जिले में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए सबसे अधिक 17,643 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। एफएम न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
2: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: ये है आकाशवाणी एफएम शिमला। 8 बजने को हैं। अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों के लिए।
2: समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथिन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के

0: साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
4: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
5: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।

0: And also infrastructure development that has happened.
1: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर रही है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार माँ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के अध्यापक हैं। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: जी लवली, इन खेल खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला

0: इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 4 एटीपी चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो आईपीएल में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और शाम 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह के कई हिस्सों और पूरे निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ चुका है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई को केरलम तक पहुंचने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को आपदाओं का दशक बताते हुए इस स्थिति को बदलने की अपील की है। लोक सत्य की सुर्खी है, मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां, हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेगी दुनिया। प्रधानमंत्री की चेतावनी शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है, तब इससे अधिक चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती कि फिर से न सिर्फ भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा है। भोजशाला में अब बिना रोक टोक के 365 दिन हो सकेगी पूजा। दैनिक जागरण ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रवेश और पूजा की नई व्यवस्था, भोजशाला में लौटा आस्था का उल्लास। नीट यूजी पेपर लीक मामले में दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रक्षक ही भक्षक। पत्र के अनुसार एनटीए ने 4 नए अफसरों की नियुक्ति हुई, कथित सरगना कुलकर्णी को 10 दिन की हिरासत में भेजा। नवभारत टाइम्स की खबर है, जुलाई से सीबीएसई के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे तीसरी भाषा, इनमें 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। पत्र के अनुसार नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। आज विश्व दूर संचार दिवस पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, धरती के संसाधनों को निचोड़ रहा आपके फोन में पड़ा डार्क डेटा। पत्र के अनुसार हर दिन अनावश्यक फाइल और चैट से बढ़ रहा है डार्क डेटा, जिसे संभालने में खर्च हो रही है बिजली और पानी। मॉनसून के अंडमान पहुंचने की खबर हिंदुस्तान में है। पत्र के अनुसार अगले हफ्ते दक्षिण पूर्वी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. India and the Netherlands elevate their ties to strategic partnership following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Dutch counterpart Rob Jetten. Prime Minister Modi to reach Gothenburg today on a 2-day visit to Sweden to hold talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson.

मतगणना आज ही होगी, जबकि 4 नगर निगमों के नतीजे 31 मई को आएंगे। मतदान प्रक्रिया शांतिप्रिय ढंग से चल रही है। सिरमौर जिला में नगर निकाय चुनावों को लेकर मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की भीड़ देखने को मिल रही है। सिरमौर जिला में 2 नगर परिषद और 1 नगर पंचायत के लिए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस दौरान कुल 40,133 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। जिला कांगड़ा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में विभिन्न पदों पर कई उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। जिला के विभिन्न विकास खंडों में प्रधान, उपप्रधान, ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य और पंचायत समिति सदस्य पदों पर कुल 1680 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। जिला परिषद सदस्य पद पर कोई उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित नहीं हुआ है। प्रधान पद के लिए कुल 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, जबकि उपप्रधान पद के लिए 8 उम्मीदवार ने बिना मुकाबले जीत दर्ज की है। ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य पद पर सर्वाधिक 1657 उम्मीदवार निर्वी

0: निर्विरोध चुने गए हैं। जिला परिषद सदस्य पद पर कोई उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित नहीं हुआ है। प्रधान पद के लिए कुल 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, जबकि उप प्रधान पद के लिए 8 उम्मीदवारों ने बिना मुकाबले जीत दर्ज की है। ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य पद पर सर्वाधिक 1657 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इंदौरा विकासखंड में सर्वाधिक 5 प्रधान निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य पद पर विकासखंड इंदौरा में सर्वाधिक 153, लंबागांव में 127, रैत में 121, सुलह में 88, देहरा में 119 और फतेहपुर में 103 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। पंचायत समिति सदस्य पद के लिए प्रागपुर, पालमपुर, नगरोटा, बगवां, बढ़ो और रैत विकासखंड से एक एक उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। कुल्लू जिला दंडाधिकारी अनुराग चंद्र शर्मा ने रोहतांग मार्ग पर पर्यटक वाहनों की आवाजाही को लेकर संशोधित आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार अब रोहतांग मार्ग पर पर्यटक वाहनों की आवाजाही रहनी नाला से 3 मोड़ आगे तक होगी। इसके साथ ही अतिरिक्त अस्थायी पुलिस बैरियर को भी गुलाबा से स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में आज आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल का एक अहम मुकाबला खेला जाएगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। एफएम न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज FM शिमला।
2: ये है 103.7 मेगाहर्ट्ज पर FM शिमला। अब आप सुनेंगे हमारे साथ लोक संगीत।

0: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
1: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
0: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
1: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: लोक संगीत में अगली आवाज हेमराज हेतराम कैंथा की। आइए सुनते हैं इनसे ये लोकगीत।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे अंकुश संदल को।
1: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
2: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
3: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र

0: जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
1: राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: हिमाचली लोकगीतों का लुत्फ आप ले रहे थे एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे हमारे साथ कुछ फिल्मी तराने। मुकेश और साथियों की आवाजों में आइए सुनते हैं हम हिंदुस्तानी, इस फिल्म का गीत जिसे लिखा है प्रेम धवन ने और संगीत दिया उषा खन्ना ने।

ये वादा रहा। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की युगल स्वरों में। गुलशन बावरा ने ये गीत लिखा, संगीत आर डी बर्मन का। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी FM शिमला आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

0: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
1: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: थ्री इडियट्स, आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत सोनू निगम, स्वानंद किरकिरे, शान की आवाजों में।

0: लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
1: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: मुल्क। इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। मुल्क फिल्म में अभी आपने सुना शफाकत अमानत अली और शकील आजमी को। और अब FM शिमला पर हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म संगीत में एक और गीत। फिल्म का नाम है धुन की। गीत को अपनी आवाज़ दी है अरिजीत सिंह ने।

श्याम बहादुर इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल और सोनू निगम की आवाज़ों में, जिसे लिखा था गुलजार ने और कंपोज किया शंकर एहसान लॉय ने। इन फिल्मी तरानों का आनंद आप ले रहे थे हमारे साथ एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। गीत सुनते सुनते समय कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। 9:15 हो चुके हैं। अब आपको बताते हैं आकाशवाणी के प्राइमरी चैनल पर आज प्रसारित होने वाले कुछ विशेष कार्यक्रम। नौ बजकर 30 मिनट पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरबेला में आज आप सुनेंगे सीआर व्यास का गायन राग भैरव। 10 बजे सुनिएगा रिमझिम। 11:05 पर समूह गान शिक्षा पाठ। 11:30 पर बाल सभा। 12:20 पर कार्यक्रम महिला सम्मेलन। 1:10 पर

2:30 पर आप सुनेंगे हिम गुंजन। शाम 4:20 पर हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों में सबसे पहले आप सुनेंगे सिरमौरी कार्यक्रम।

शाम 4:50 पर महासवी, 5:20 पर किनौरी, 6:06 पर बिलासपुरी और 6:35 का समय रहेगा लाहौली कार्यक्रम का।

धारावी गीत, ये कार्यक्रम आज सुनेंगे रात 8 बजे। कृष्णलाल सहगल से सुनिएगा सुगम संगीत 8:30 पर। गजलों का गुलदस्ता सजेगा रात 9:15 पर।

आकाशवाणी दिल्ली से सुनिएगा नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम 9:30 पर और रात 10 बजे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा।

तो ये कार्यक्रम आज आप आकाशवाणी के प्राइमरी चैनल पर सुन सकते हैं। अभी आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए हमारे साथ। अभी कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ एफएम शिमला पर भी रिले किया जाएगा।
1: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है, वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में, सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
2: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में आज 51 शहरी निकाय चुनावों के लिए डाले जा रहे वोट। 360,000 से अधिक मतदाता कर रहे मताधिकार का प्रयोग। नगर परिषदों व नगर पंचायतों के चुनाव परिणाम आज शाम तक, जबकि 4 नगर निगमों के मतों की गिनती 31 मई को होगी। किन्नौर जिला में ठोस कचरा प्रबंधन पर सक्रियता से किया जा रहा है कार्य। केंद्र सरकार के नियमों की दी जा रही जानकारी। और आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में आरसीबी और पंजाब किंग्स की टीमें होंगी आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज 51 शहरी निकाय चुनावों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ, जो सायं 3 बजे तक चलेगा। शहरी निकायों में 449 में से 439 पदों के लिए 1,147 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें 196 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

0: शहरी निकाय चुनाव के लिए 3,60,859 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यदि मतदान के दिन मतदाता के पास किसी कारणवश मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो उसके स्थान पर किसान पासबुक, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड जैसे 17 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाया जा सकता है। नगर निगम के चुनाव पार्टी चिन्ह पर करवाए जा रहे हैं और मुख्य मुकाबला कांग्रेस व भाजपा के बीच माना जा रहा है। 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के परिणाम मतदान के बाद आज शाम को ही आ जाएंगे। इसके अलावा नगर निगमों के लिए डाले गए वोटों की गिनती 31 मई को होगी। मंडी जिला में आज शहरी निकाय चुनावों के लिए मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो गई, जो तो दोपहर 3 बजे तक चलेगी। चुनाव को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। तेज धूप को देखते हुए बड़ी संख्या में मतदाता सुबह ही मतदान केंद्रों पर पहुंच गए। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त अपूर्व देवगन के अनुसार जिले में कुल 63,112 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनके लिए 90 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता।
1: चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए 538 अधिकारी कर्मचारी और 180 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। आज नगर निगम के 14 वार्डों सहित नगर परिषद सुंदरनगर, जोगिंदरनगर, नेरचौक, सरकाघाट तथा नगर पंचायत रिवालसर और करसोग में मतदान हो रहा है। नगर निगम मंडी में सबसे अधिक 42 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। प्रशासन ने सभी मतदाताओं से लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़ कर भाग लेने की अपील की है। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
0: सिरमौर जिला में नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदान प्रक्रिया आज सुबह ठीक 7 बजे शुरू हुई। मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की भीड़ देखने को मिल रही है। सिरमौर जिला में 2 नगर परिषद और 1 नगर पंचायत के लिए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस दौरान कुल 40,133 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिनमें 20,138 महिला मतदाता शामिल हैं। प्रशासन की ओर से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने नगर परिषद के वार्ड नंबर 5 स्थित बूथ नंबर 2 में सुबह सबसे पहले परिवार सहित मतदान किया। उन्होंने नगर परिषद नाहन में भाजपा की जीत का दावा किया।
2: नाहन में स्पष्ट मुद्दा है, 3.5-4 साल में कांग्रेस ने नाहन के लिए एक फूटी कौड़ी का काम नहीं किया और जनता ने मन बनाया है नाहन में एंटी कांग्रेस वोट करने का। ऐसे में और भाजपा समर्थित जो उम्मीदवार हैं उनकी तरफ जनता का रुझान है।
0: सोलर नगर निगम के 17 वार्डों के चुनाव के लिए 38 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 2 केवल महिलाओं के लिए बनाए गए हैं। आज सुबह से ही लोग कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। नगर निगम सोलन में कुल 34,147 मतदाताओं में से 17,274 पुरुष तथा 16,872 महिला मतदाता हैं, जबकि एक ट्रांसजेंडर मतदाता है। जनजातीय जिला किन्नौर में ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर सक्रिय रूप से कार्य किया जा रहा है। हीलिंग हिमालय फाउंडेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर सुमन नेगी ने बताया कि संस्था द्वारा विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार के 1 अप्रैल 2026 से लागू ठोस कचरा प्रबंधन नियमों की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि किन्नौर में फाउंडेशन के 3 MRF केंद्र पूह, सांगला और पोवारी में संचालित हैं, जहां विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण साडा के सहयोग से ठोस कचरे का निस्तारण किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा हमारी किन्नौर जिला संवाददाता से।
3: हीलिंग हिमालय फाउंडेशन की टीम होटल, होम स्टे और घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। साथ ही स्कूलों में बच्चों को भी स्वच्छता, कचरा पृथकीकरण और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित किया जा रहा है। सुमन नेगी ने बताया कि संस्था प्रशासन और साड़ा के साथ मिलकर समय समय पर सफाई अभियान भी चलाती है। हाल ही में सांगला होली में क्षेत्र में सफाई अभियान आयोजित किया गया था, जबकि 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भी विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहाड़ों और हिमालयी क्षेत्रों से एकत्रित कचरे को MRF सेंटर तक लाया जाता है, जहां उनका पृथकीकरण कर आगे रिसाइकिल किया जाता है। इसका उद्देश्य कचरे को सर्कुलर इकोनॉमी में लाना है और नदी नालों व खुले क्षेत्रों में डंपिंग कम करना है। सुमन नेगी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कचरा केवल प्रशासन या किसी संस्था की जिम्मेवारी नहीं, बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेवारी है। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की डंखर पंचायत के ग्रामीणों ने आपसी एकता और तालमेल की एक अनूठी मिसाल पेश की है। स्पीति के माने योगमा गांव निवासी अशोक के परिवार की तीनों बहुओं को पंचायत चुनाव में सर्वसम्मति से निर्विरोध चुन लिया गया है। विस्तृत जानकारी के साथ लाहौल स्पीति जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: जानकारी के अनुसार तंजिन छोडुन को प्रधान, सोनम छोकित को बीडीसी सदस्य और सोनम आंगमो को प्रधान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विशेष बात यह है कि एक ही परिवार की तीनों बहुओं को पंचायत ने अलग अलग महत्वपूर्ण पदों के लिए विश्वास के साथ चुना है। इस फैसले की पूरे क्षेत्र में चर्चा हो रही है और लोग पंचायत की एकजुटता और परिपक्व सोच की सराहना कर रहे हैं। पंचायत के लोगों का कहना है कि आपसी सहमति का बनना गांव की एकता, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। ग्रामीणों का मानना है कि जब समाज मिलकर निर्णय लेता है तो विकास और सामाजिक सौहार्द की राह और मजबूत। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: जिला कांगड़ा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के तहत विभिन्न पदों पर कई उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। ये जानकारी देते हुए सहायक निर्वाचन अधिकारी सचिन ठाकुर ने बताया कि जिला के विभिन्न विकास खंडों में प्रधान, उप प्रधान, ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य और पंचायत समिति सदस्य पदों पर कुल 1,680 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। जिला परिषद सदस्य पद पर कोई उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रधान पद के लिए कुल 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, जबकि उप प्रधान पद के लिए 8 उम्मीदवारों ने बिना मुकाबले जीत दर्ज की है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य पद पर सर्वाधिक 1,657 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 5 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। शहरी निकाय चुनावों के अलावा प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों को लेकर भी गतिविधियां जारी है। राज्य में इस बार 26, 28 और 31 मई को तीन चरणों में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव करवाए जा रहे हैं। कांगड़ा जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के लिए सबसे अधिक 17,643 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। उधर सिरमौर जिले में 28 पंचायतें निर्विरोध चुनी गई हैं और सरकार द्वारा इन्हें 25-25 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका वर्मा ने बताया कि पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के लिए जिले में कुल 3,909 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में आज RCB और पंजाब किंग्स के बीच IPL का एक अहम मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह है। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। अंक तालिका में RCB 16 अंकों के साथ शीर्ष पर बनी हुई है, वहीं पंजाब किंग्स 13 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है और प्ले ऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए उसे ये मैच जीतना जरूरी है। धर्मशाला में कल होने वाले नगर निगम चुनाव को देखते हुए प्रशासन ने मैच देखने आने वाले क्रिकेट प्रेमियों के वाहनों के लिए वैकल्पिक पार्किंग व्यवस्था की है। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी का शीर्षक है, हिमाचल में 4 नगर निगम सहित 51 शहरी निकाय चुनावों के लिए मतदान आज। अमर उजाला, दिव्य हिमाचल व हिमाचल दस्तक की एक जैसी सुर्खी है, शहरी निकायों के लिए मतदान आज, जबकि दैनिक जागरण का शीर्षक है, सत्ता के सेमीफाइनल के लिए मतदान आज। हिमाचल दस्तक का कहना है, 22 मई को होगी कैबिनेट बैठक। मौसम पर दैनिक भास्कर के शब्द हैं, बढ़ने लगी गर्मी, मैदानी क्षेत्रों में 30 डिग्री पर पहुंचा पारा, 21 तक मौसम साफ रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज 51 शहरी निकाय चुनावों के लिए डाले जा रहे वोट। 3,60,000 से अधिक मतदाता कर रहे मताधिकार का प्रयोग। नगर परिषदों व नगर पंचायतों के चुनाव परिणाम आज शाम तक, जबकि 4 नगर निगमों के मतों की गिनती 31 मई को होगी। किन्नौर जिला में ठोस कचरा प्रबंधन पर सक्रियता से किया जा रहा है कार्य। केंद्र सरकार के नियमों की दी जा रही जानकारी। और IPL क्रिकेट में आज धर्मशाला में RCB और पंजाब किंग्स की टीमें होंगी आमने सामने। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 11:00 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए गए, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ FM शिमला पर भी रिले किया गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
3: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 MHz FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 MHz FM शिमला।
2: आकाशवाणी FM शिमला आप सुन रहे हैं।

0: नमस्कार, कुदरत किरण कार्यक्रम में मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त भारती आपका स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम में हम करवाते हैं आपको रोज अलग अलग जगहों की सैर फिल्मी तरानों के साथ, और आज हम सफर कर रहे हैं किन्नौर में भावनगर की, जिसे सुंगरा या बावनगर के नाम से भी जाना जाता है। ये वो जगह है जहाँ सतलुज की लहरें आपके साथ साथ चलती हैं और हवा में एक अलग सी ताजगी है। ना कोई बनावटीपन, ना ज़्यादा शोर, बस आप और पहाड़। इसके बारे में बातें करेंगी और भी, पर एक संदेश के बाद आपको सुनवाते हैं पहले एक नगमा।
1: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
2: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
1: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट

0: हम करवाते हैं आपको रोज अलग अलग जगहों की सैर फिल्मी तरानों के साथ, और आज हम सफर कर रहे हैं किन्नौर में भावनगर की, जिसे सुंगरा या बावनगर के नाम से भी जाना जाता है। ये वो जगह है जहां सतलुज की लहरें आपके साथ साथ चलती हैं और हवा में एक अलग सी ताजगी है। ना कोई बनावटीपन, ना ज्यादा शोर, बस आप और पहाड़। इसके बारे में बातें करेंगी और भी, पर एक संदेश के बाद आपको सुनवाते हैं पहले एक नगमा।
1: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
2: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
1: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
2: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: हिमाचल प्रदेश का एक कस्बा भावानगर, जो तरांडा और नाथपा झाकड़ी बांध के बीच सतलुज नदी के बाएं किनारे पर वांगटू से लगभग 12 किलोमीटर नीचे की ओर स्थित है। भावा वैली ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के पहाड़ों पर हरे भरे घास के मैदान और चारों ओर ग्लेशियर्स दिखाई देते हैं। भावानगर की इस यात्रा में हम सुंगरा पहुँचते हैं तो वहाँ स्थित महेश्वर मंदिर हमें हमारी प्राचीन कला और सभ्यता से परिचित कराता है। देवदार की लकड़ी पर की गई वो महीन नक्काशी इस बात का प्रमाण है कि हमारे पूर्वज कला और भक्ति को किस कदर एक सूत्र में पिरोते थे। आपने ट्यून इन किया है एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं कुदरत के रंग। गीत संगीत के साथ हम कर रहे हैं सैर आज भावानगर की।
1: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
2: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
3: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
4: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

कुदरत किरण, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं हमारे साथ। भावनगर का जिक्र अधूरा है अगर हम काफनू गांव की बात ना करें तो। यहीं से शुरू होता है मशहूर भावा पास ट्रैक। यहाँ की वाइब्स इतनी पॉजिटिव है कि आपका वापस आने का मन ही नहीं करेगा। यहाँ काफनू बांध और पनबिजली परियोजना मुख्य आकर्षण है। ये गांव अपने सेब के बागवानों और पारंपरिक लकड़ी के घरों के लिए भी जाने जाते हैं। यहाँ पर्यटकों के लिए होमस्टेज और कैंपिंग के बेहतरीन ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ केवल प्रकृति ही नहीं बल्कि आधुनिक भारत की गौरवशाली उपलब्धि भी देखने को मिलती है आपको। नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना, जहाँ सतलुज की धारा को बिजली में बदलते हुए देखने का अपने आप में एक अनूठा अनुभव है। अब वक्त है एक और गीत का।

यहाँ के जायके की अगर बात करें तो ट्रिप तब तक पूरी नहीं होती जब तक आप यहाँ के लोकल चिलगोजे यानी पाइन नट्स और गरम गरम थुक्पा ट्राई ना कर लें। देखिए, मंजिल तक पहुँचना तो मुकद्दर की बात है, पर सफ़र का आनंद ना लेना, अब ये तो गलत बात है। सफ़र छोटा ही सही पर यादगार होना चाहिए, मानते हैं ना आप इस बात को। चलिए अब सुनते हैं एक और गीत।

0: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
1: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: शिमला से यहाँ की दूरी लगभग 160 से 170 किलोमीटर है। आप रामपुर बुशहर होते हुए 6 से 7 घंटों में यहाँ पहुँच सकते हैं। रामपुर से भावनगर करीब 40 किलोमीटर ही दूर है। रिकॉम्पियो जाने वाली सभी बसें नाथपा झाकड़ी के पास से होकर गुजरती हैं। तो देर किस बात की, सब कुछ तो हमने आपको बता दिया। बैग पैक कीजिए और निकलते हैं सैर पर। और अब वक्त है आखिरी गीत का। इस कार्यक्रम में कुदरत के रंग कार्यक्रम का आखिरी गीत तब आपको हम सुनवा रहे हैं।

0: रहे थे हमारे साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला पर। लीजिए पेश है एफएम न्यूज हेडलाइंस।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं गोदावरी वर्मा। प्रदेश में आज 51 शहरी निकाय चुनावों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ जो सायं 3 बजे तक चलेगा। शहरी निकायों में 449 में से 439 पदों के लिए 1147 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें 196 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के परिणाम मतदान के बाद आज शाम को ही आ जाएंगे। इसके अलावा नगर निगमों के लिए डाले गए वोटों की गिनती 31 मई को होगी। मंडी जिला में शहरी निकाय चुनावों के लिए मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है जो दोपहर 3 बजे तक चलेगी। चुनाव को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। तेज धूप को देखते हुए बड़ी संख्या में मतदाता सुबह सुबह ही मतदान केंद्रों पर पहुंच गए हैं। सोलन नगर निगम के 17 वार्डों चुनाव के लिए 38 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिसमें 2 केवल महिलाओं के लिए बनाए गए हैं। आज सुबह से ही लोग कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। नगर निगम सोलन में कुल 34,147 मतदाताओं में 17,274 पुरुष और 16,872 महिला मतदाता है जबकि 1 ट्रांसजेंडर मतदाता है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की डंखर पंचायत के ग्रामीणों ने आपसी एकता और तालमेल की एक अनूठी मिसाल को पेश की है। स्पीति के माने योगमा गांव निवासी अशोक के परिवार की 3 बहुओं को पंचायत चुनाव में सर्वसम्मति से निर्विरोध चुन लिया गया है। शहरी निकाय चुनावों के अलावा प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर भी गतिविधियां जारी है। राज्य में इस बार 26, 28 और 31 मई को 3 चरणों में पंचायती राज चुनाव करवाए जा रहे हैं। कांगड़ा जिले में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए सबसे अधिक 17,643 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। उधर सिरमौर जिले में 28 पंचायतें निर्विरोध चुनी गई हैं और सरकार द्वारा इन्हें 25-25 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका वर्मा ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए जिले में कुल 3,909 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। जिला कांगड़ा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के तहत विभिन्न पदों पर कई उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। ये जानकारी देते हुए सहायक निर्वाचन अधिकारी सचिन ठाकुर ने बताया कि जिला के विभिन्न विकास खंडों में प्रधान, उपप्रधान, ग्राम पंचायत, वार्ड सदस्य तथा पंचायत समिति सदस्य पदों पर कुल 1,680 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में आज आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल का एक अहम मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह है। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। एफएम न्यूज हेडलाइंस में आज बस इतना ही। नमस्कार।
2: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला।
0: घड़ी की सुइयां अब इशारा कर रही हैं कि अब हम आपको सुनवाएं हमारा अगला कार्यक्रम, नए पुराने गीतों से सजा कार्यक्रम झनकार। अब आप सुनेंगे तो लीजिए पेश है लता मंगेशकर की आवाज में आपको हम सुनवा रहे हैं आम्रपाली। इस फिल्म का गीत

0: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
1: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
0: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
1: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी FM शिमला पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम झनकार। लीजिए पेश है ये अगला गीत आपके लिए। फिल्म का नाम है खानदान। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में आपको हम सुनवा रहे हैं ये नगमा।

लाजिम है कि सुबह की धूप में जरा अदब से बैठे। सुना है आज साजों से कोई नया अफसाना निकलेगा। झनकार कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला पर, और नए पुराने गीतों से सजा ये कार्यक्रम झनकार आपके लिए अगला गीत लेकर आए हैं, दो बूंद पानी। इस फिल्म से गायक कलाकार परवीन सुल्ताना, मीनू और साथी।

0: अलका याग्निक और सुरेश वाडेकर के युगल सरों में अभी आप सुन रहे थे खुदा गवाह। इस फिल्म का गीत एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम झनकार। कहीं जाइएगा नहीं, ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।
1: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
2: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
3: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
4: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: यस बॉस, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थी उदित नारायण और अलका याग्निक की।
1: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है, वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
2: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम झनकार। हैदर फिल्म में अब आप सुनेंगे सुखविंदर सिंह और साथियों को। ये है झनकार कार्यक्रम का आखिरी नगमा।

0: झनकार नए पुराने गीतों की। आप सुन रहे थे 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर।
1: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
2: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
1: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
2: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: पर आप बने हुए हैं हमारे साथ, यानी आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। 10:30 हो चुके हैं और अब वक्त है कार्यक्रम साहित्य दर्पण का।

नमस्कार, साहित्य दर्पण कार्यक्रम के आज के संक में आप सभी का स्वागत है। कविता की भावना वह आकाश होती है जहां कोई भी कवि अपने परों को खुलकर उड़ान देता है। कवि के लिए उसकी कविता केवल शब्द नहीं है बल्कि जीवन का सार है। शब्दों का उचित चयन ही तो कविता की आत्मा है। शब्द

0: से जो अर्थ बना दें। आइए सुनते हैं डॉक्टर विजय लक्ष्मी नेगी से उनकी कविताएं।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय लक्ष्मी नेगी अपनी कविताओं के साथ आपके कार्यक्रम में हाजिर हुई हूँ। मेरी पहली कविता का शीर्षक है देवदार। देवदार, मैं वृक्ष, बड़ा वृक्ष देवदार का, बढ़ता रहा दिन रात सर्दी गर्मी और बरसात में। मेरी शाखाएं तो देखो फैली है कितने विस्तार से, सुखद इतनी कि राहगीर को बारिश में भी जरूरत नहीं होती किसी छाते की। अनेक पशु पक्षियों और वन्य प्राणियों की शरण स्थली भी हूँ मैं वृक्ष।

या सुबह सवेरे गाती हैं प्रभातियां मेरी डालियों पर, मैं खुशी से फूला नहीं समाता। झूमा करता हूँ हवा के झोंके के साथ पूरी मस्ती से, बंदर भी तो मेरी शाखाओं पर झूलते छलांगे लगाते बहुत ऊपर तक रखते हैं अपनी पहुंच, फिर अंधेरा होते ही सिमट जाते हैं मेरे आगोश में। कभी कभी रात में भी टकराहट हो जाती है उनके विचारों में, भटक जाते हैं राह से, उलझ पड़ते हैं आपस में और हिलाते हैं मुझे पूरे जोश से, तब भी मैं नहीं होता बिचले। मैं वृक्ष, बड़ा वृक्ष देवदार का, अब मंजर कुछ और ही है, दुखी लाचार और मजबूर भी हूँ, मेहमान हूँ कुछ समय का। जमीन से उठती हुई कुछ बेलों ने मुझे बनाया है अपना सहारा, लिपटी हैं पूरी तरह से और चढ़ रही हैं चुपचाप धीरे धीरे ऊपर ऊपर और ऊपर, ढक गया हूँ पूरी तरह से अब मैं। मेरी शाखाएं छटपटाने लगी हैं लेकिन मैं असहाय हूँ और बंदी हूँ बेलों का। मैं वृक्ष, बड़ा वृक्ष देवदार का, कभी कभी ऐसा भी लगता है जैसे किसी को घेर लिया हो नशे की लत ने। इसी अपराध बोध में मैं घुट रहा हूँ अंदर ही अंदर, अथाह दुख में डूबा हुआ व्याकुल सोचता हूँ, काश सांस लेकर भी मैं जड़ ना होता, बेलों के जाल से सूखता भी नहीं, काट फेंकता इन जंजीरों को। सोचता हूँ मदद मांगू कैसे, बेजुबान हूँ, मिटने के कगार पर खड़ा हूँ, अंतिम सोच में डूबा बेसहारा। क्योंकि जब जब आपदाएं आती हैं वृक्षों पर, उन्हें मुंह देखना पड़ता है आरी और कुल्हाड़ी का, बही हुआ आ गए मिटाने को मेरा अस्तित्व। अब कुछ समय का ही मैं मेहमान हूँ, क्योंकि अब मैं इमारत के लिए लकड़ी बना दिया जाऊंगा। मैं वृक्ष, बड़ा वृक्ष देवदार का। मेरी अगली कविता का शीर्षक है गांव पूछता है। गांव पूछता है शहर से, कहाँ गए वो मेरे सुंदर लहलहाते हुए हरे भरे खेत, जिनमें उगा करती थी नाना प्रकार की फसलें, गेहूं मक्की बाजरा और धान, पर मुझे बंजर बना दिया तुम्हारी इस नई सोच ने। गांव पूछता है शहर से, पक्की सड़कें व मोटर गाड़ियां तो केवल तुम्हारी सुविधा के लिए ही आई थी, इसलिए नहीं कि तुम पलायन कर जाओ शहर की तरफ और लौट कर शहर की तरह बन जाओ। ये नियामतें तो तुम्हें और समृद्ध बनाने की खातिर थी। गांव पूछता है शहर से, पलायन के बाद जब लौटे तो बना दिया मुझे भी शहर जैसा, इसीलिए तुम ही से पूछता हूँ। चारों तरफ हरियाली थी, पेड़ लदे रहते थे फूलों और फलों से, कई प्रकार की औषधियों का भंडार होते थे मेरे जंगल। शहर बनाने की तुम्हारी इस जिद ने मिटा दिया मेरा सब कुछ। गांव पूछता है शहर से, शुद्ध वायु शुद्ध पानी दूध दही सब कुछ प्रचुरता में था यहाँ, तब बंद नहीं होता था बोतलों में जिसे आज गोधन अर्क के रूप में जाना जाता है। पशु भी नहीं घूमते थे आवारा, लौट आते थे शाम होते ही अपने घर की तरफ, लेकिन अब मैं कहाँ हूँ गांव पूछता है शहर से। हर घर में आंगन होता था, शाम को बैठते थे सब मिलजुल कर, किस्से कहानियाँ पहेलियाँ सुनाई जाती थी, तब घर के शादी ब्याह भी माने जाते थे पूरे गांव के, बेटी भी सबकी बेटी ही मानी जाती थी, बुरी नज़र से देखना भी पाप समझा जाता था तब तक, जब तक मैं गांव था। गांव पूछता है शहर से, अब शहर के नए रंग रूप में घर का रूप ले लिया है इमारत ने, चार दीवारी में बंद हो गया है सब कुछ, आंगन तो केवल टेरिस को ही माना जाता है, चौड़ी सड़कें बदल गई हैं अंधेरी छोटी गलियों में, छत का पानी टपकता है दूसरों की छत पर, कच्चे घर पक्के रूप लेकर बैठे हैं बड़े शान से, फिर भी सुकून ढूंढने जाना पड़ता है बड़े बड़े रिजॉर्ट्स में या हट्स में। गांव पूछता है शहर से, बना दिया है मुझे भी शहर नहीं बल्कि शहर जैसा, अब ना तो मैं पूरी तरह गांव ही रहा और ना बन पाया शहर भी, बताओ तो अब क्या बन गया हूँ मैं, क्या नया नाम सोचा है तुमने। गांव पूछता है शहर से, मेरी अगली कविता का शीर्षक है क्या हो तुम, अर्थात नारी क्या हो तुम, नारी क्या हो तुम, खनकती आवाज या
गुनगुनाता साज हो तुम।

प्रकृति के सारे रंगों को समेटे हुए खुशनुमा बहार हो तुम, नारी क्या हो तुम। एक प्रश्न जो दिखता है तुम्हारी आंखों में हमेशा ही, कि तुम क्या और नर क्या है। मुस्कुराती हुई लहलहाती कली भी हो, बज्जर सी कठोर चट्टान भी हो, फिर भी पूछती हूँ नारी क्या हो तुम। निर्गुण और सगुण, साकार और निराकार, और भी ना जाने कितने ही अंतर्द्वंद्वों को संजोए हुए एक विचार हो तुम। कितनी करीब हो उस परिदृश्य के जो पढ़ा जा सकता है तुम्हारी आंखों में, नारी क्या हो तुम। देखा है तुम्हें कदम कदम पर आगे बढ़ते हुए, जड़ों से जुड़कर तने को संभालकर, शाखाओं से ओतप्रोत होकर, आकाश को छूने की लालसा लिए अग्रसर होते हुए नित नए मार्ग पर, फिर भी नारी क्या हो तुम। दोस्त व दुश्मन, ममता और बात्सल्य, कूल और प्रतिकूल, पक्ष और विपक्ष, उज्जवल और मलिन, इन सभी का मुस्कुराता जवाब हो तुम। ना जाने कितने ही नामों उपनामों से सुसज्जित दिल की आवाज हो तुम, नारी क्या हो तुम, नारी क्या हो तुम। मेरी अगली कविता का शीर्षक है माँ मैं आऊंगा जरूर। माँ तुम हमेशा ही शिकायत करती हो, मैं कब आऊंगा परदेश से, पर नहीं आने देती यहाँ की व्यस्तता। ऊपर से चाहिए होता है पैसा भी आने के लिए, इतनी भी सस्ती नहीं है टिकट कि आ जा सकूं आसानी से, लेकिन माँ मैं आऊंगा जरूर जल्दी ही। घर आना अच्छा लगता है मुझे भी, पर मजबूर हूँ माँ, मैं एक बात पूछता हूँ तुमसे ही, मुझे परदेश जाने के लिए तैयार भी तो तुमने ही किया था, दिखावे का शौक था तुम्हें ही, ना तो तुमने तारीफों के पुल बांधे होते और ना मेरे मन में जाने की लालसा जगी होती, पर मैं आऊंगा जरूर। जाने अनजाने परदेश जाने का लालच तो तुम्हारे द्वारा ही भरा गया था मेरे मन में, लेकिन माँ मैं आऊंगा जरूर जल्दी ही। अब क्या है, पैसा चाहिए था भेज रहा हूँ, शानो शौकत चाहिए थी खरीदी जा सकती है पैसों से। हाँ तुम चाहो तो जब चाहे आ सकती हो मेरे पास, पर वहाँ की तरह गली मोहल्ले में नहीं बैठ पाओगी यहाँ पर, क्योंकि कुछ नियम है जीने के लिए इस देश में। अभी तो मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैं आऊंगा जरूर जल्दी ही। माँ अपने देश में रिश्ते हैं, प्यार हैं, भावनाएं हैं और बहुत कुछ है जीने के लिए, पर यहाँ पैसा तो बहुत है मेहनत कश लोगों के लिए। हाँ ये भी सच है, यहाँ पैसा बढ़ता तो तभी है जब अपने देश में आकर बदला जाता है रुपयों में। कभी सोचता हूँ आखिर कब तक जीता रहूंगा पैसों की खातिर, मुझे भी तो अपने याद आएंगे एक दिन, पर तब तक कहीं देर ही ना हो जाए माँ, लेकिन मैं आऊंगा जरूर जल्दी। मेरी अगली कविता का शीर्षक है झुरमुट। झुरमुट के बीच उगा हुआ नन्ना पौधा झांक रहा है बाहर, बीच में बनी रोशनी की छंटती हुई लकीरों से, झुरमुट के बीच उगा हुआ नन्ना पौधा ढका है पूरी तरह से झाड़ियों के जाल से, जो लिपटी हैं आपस में ही। नन्ना पौधा सुरक्षित तो है यहाँ, पर नहीं है स्वतंत्र जो बाहर निकल सके केवल अपनी इच्छा से, रोक लेंगी उसे आपस में उलझी हुई झाड़ियाँ। झुरमुट के बीच उगा हुआ नन्ना पौधा धूप इसे कभी छूती ही नहीं, पड़ा रहता है हमेशा ही छाया में, सघन झाड़ियों के बीच में ये भूल चुका है बढ़ना भी। कहाँ देखा झुरमुट इसे अपनी माया जाल से बाहर निकलने। झुरमुट के बीच उगा हुआ नन्ना पौधा ना के बराबर है बाहर की दुनिया, इसके लिए आसमान को छूना तो दूर, दर्शन भी ना कर पाया ये कभी सूर्य चांद और तारों के। सिर के ऊपर तना हुआ तंबू सा झुरमुट बनी झाड़ियों का, सांसों की गिनती तो है पर जिजीविषा से अवगत ही नहीं है ये पौधा। झुरमुट के बीच उगा हुआ नन्ना पौधा झांक रहा है पर बाहर नहीं आ सकता। झुरमुट के बीच उगा हुआ नन्ना पौधा। मेरी अगली कविता का शीर्षक है सपने। निकल पड़ती हूँ सुबह सवेरे उठकर, बैग में कुछ रंग बिरंगे धागे लेकर, बुनती हूँ कुछ सपने जिनमें से कुछ होते हैं अपने और कुछ बन जाते हैं बेगाने भी, कुछ दर्द भरे और कुछ

प्रफुल्लित भी। इन्हीं धागों से बुनती हूँ जज्बात भरी कहानियां, सपनों में लिपकी हुई। कितने ही चरित्र को लपेटे हुए जी रहे होते हैं कितने ही रूपों में ये सपने। निकल पड़ती हूँ कुछ रंग बिरंगे धागे लेकर और बुन देती हूँ नए से नए सपने। सुई भी काम करती है धागों से बुने हुए सपनों को जोड़ने का। अक्सर राह में मिल जाती हैं बहुत सी कविताएं, नन्ही उड़ती चिड़िया, हिलते हुए पत्तों की, मुस्कुराते हुए फूलों की, कांटों से भरी झाड़ियों की, वायु, पानी, झरने, पहाड़ और भी ना जाने कितने ही दृश्य सिले जाते हैं बड़े प्यार से, सुई और धागों के मेल से धर लेते हैं नया रूप कविता का। सुबह सवेरे बैग में निकल पड़ती हूँ रंग बिरंगे धागे लेकर बुनने कुछ सपने। लौट आती हूँ शाम को जब थकी हारी निढाल होकर बैठ जाती हूँ दरवाजे पर ही, डूब जाती हूँ गहरी सोच में और पिरो देती हूँ उन्हीं अनुभवों को माला बनाकर। कई रंग बिरंगे मोतियों को जोड़कर बन जाता है एक संस्मरण। फिर से तैयारी नई सुबह की। सुबह सवेरे उठकर निकल पड़ती हूँ बैग में कुछ रंग बिरंगे धागे लेकर, उनसे बुनती हूँ नए से नए सपने। मेरी अगली कविता का शीर्षक है जरूरी था तुम्हारा प्यार। बहुत जरूरी था तुम्हारा मेरे पास होना उस वक्त जब मैं ना समझ था, जा चुकी थी तुम मुझे छोड़कर। छोटी उम्र में क्या दोष था, केवल यही कि सिर्फ जन्म लिया था तुम्हारी कोख से माँ, तुम्हारे आंचल का सहारा ही काफी था मेरे लिए, पर मुझे तो पापा के बटन से ही मन बहलाना पड़ा था। तुम्हारी नहीं सुन पाया लोरी भी, नहीं थी तुम मेरे पास उस वक्त। रोता रहा अकेले में तुम्हारी याद करके, रजाई में सिर छुपाकर ढूंढती थी दो आंखें बिस्तर में तुम्हें, पर तुम नहीं थी उस वक्त। स्कूल में जब माँ नजर आती थी दूसरे बच्चों की, तड़प जाता था अंदर ही अंदर, ढूंढता था तुम्हें भी उस माँ की लाइन में। बहुत जरूरी था तुम्हारा मेरे पास होना उस वक्त। माँ मैं नहीं समझा सका अपने मन को, आज तक आपके फैसले जीवन और खुशियों में केवल खुद ही तुम शामिल थी, उसमें मैं कहाँ था। ढूंढ रहा हूँ उन्हीं प्रश्नों के उत्तर आज तक भी मैं माँ। मैं ठिठक जाता हूँ जब भी गाय के बछड़े को पास देखकर, चिड़िया को दाना खिलाते हुए अपने बच्चों को घोंसले में देखकर, बंदरिया को मृत बच्चे को भी छाती से लिपटाकर रखने में, डूब जाता हूँ गहरी सोच में, माँ बहुत जरूरी था तुम्हारा मेरे पास होना उस वक्त। आज भी कोसता हूँ अपनी बदकिस्मती को और सोचता भी हूँ आखिर क्या मजबूरी रही होगी तुम्हारी भी, वरना नहीं है आसान एक माँ के लिए छोड़ना बच्चे को इतनी आसानी से। माँ तुम्हारे जाने से बदल गए मायने ही माँ शब्द के। बहुत जरूरी था तुम्हारा मेरे पास होना उस वक्त। मेरी अगली कविता का शीर्षक है आग्रह। जब भी छोड़ो माँ का द्वार संवेदनाएं साथ लेती आना, बड़ी जरूरत होती है उनकी हर घर में। ये वही घर है जो कल तक होता है मेरा, आज से बन जाता है तुम्हारा। जब भी छोड़ो माँ का द्वार संवेदनाएं साथ लेती आना, जो संस्कार मिले होंगे वहां से उन्हें भूलना मत, उनके साथ इस घर के संस्कार भी मिला लेना। जब दोनों ही आत्म साथ हो जाएंगे, बीज और मिट्टी की तरह नए अंकुर प्रस्फुटित होंगे, नए विचारों के, नए अपनेपन के। पर मत भूलना जब भी छोड़ो माँ का द्वार संवेदनाएं साथ लेती आना। ना बनाना कोई धारणा जो विरुद्ध हो तुम्हारी सोच के, तुम खड़ी हो जाओ चौराहे पर, ढूंढती रहो सही राह को, भटक जाओ तलाश में, चल पड़ो किसी और राह पर। माना कि भटके हुए राही को वक्त लगता है लौटने, फिर भी संभाल लेना सब कुछ आत्म संयम से, लेकिन जब भी छोड़ो माँ का द्वार संवेदनाएं साथ लेते आना। माँ का दिल धड़कता है यहाँ भी तुम्हारे लिए, बाबा भी इंतजार में है आशीर्वाद देने के लिए। जो कुछ है जैसा है वैसा ही अर्पण है केवल और केवल तुम्हारे लिए। अपना लेना इसे मुठियों में भींचकर, समा लेना इसे आंखों के कटोरों में, उतार लेना इसे मन

की गहराइयों में बना देना एक सुख्त संसार। जब भी छोड़ो माँ का द्वार, संवेदनाएं साथ लेती आना। मुकाबला करना डटकर, जब भी तुम्हें कोई आहत करे, नीचा दिखाए, बार बार कोशिश करे तुम्हारे सद्गुणों को अब गुणों का रूप देने की। डरना मत, घबराना भी मत, कर देना पूरी तरह से विरोध अपनी बुलंद आवाज में। कुरीतियों व अंधविश्वास उखाड़ फेंक जड़ से ही, पर इतना सब कुछ होते हुए भी खो मत जाना दुनिया के इस माया जाल में। जब भी छोड़ो माँ का द्वार, संवेदनाएं साथ लेती आना। मेरी अगली कविता का शीर्षक है सैनिक की माँ। इंतजार में रहती है हमेशा ही सैनिक की माँ। कब बेटे के हाथ में मोबाइल होगा तो बताएगा अपना हाल। आम लोगों से अलग है वो, नहीं रख सकता अपने पास ये सब कुछ, क्योंकि भार होता है देश की सेवा का उसके कंधों पर। माँ को सब मालूम है, फिर भी रहती है इंतजार में हमेशा ही सैनिक की माँ। सोचती है ना जाने कौन सी घाटी, कौन से दर्रे पर भेज देंगे उसे पल भर में। दुश्मनों से घिरे हुए अपने देश की रक्षा में तत्पर, ना जाने किस ग्लेशियर को कर रहा होगा पार। माँ को सब मालूम है, पर फिर भी इंतजार है उसे हमेशा ही। माँ हमेशा ही इंतजार में रहती है, क्योंकि वो सैनिक की माँ है। माँ की दुआ का एक ही अर्थ, रक्षा करना मेरे लाल की और सभी वीर जवानों की, बचाकर रखना उन्हें दुश्मनों की नजर से। तीज त्योहारों के अवसर पर भी बेटा बॉर्डर पर खड़ा कर्तव्य में लीन, देश की खातिर माँ को सब मालूम है, फिर भी रहती है इंतजार में हमेशा ही सैनिक की माँ। वीर सैनिक कभी आता है लिपट कर झंडे में, बक्से को उठाए आते हैं सैनिक दहलीज पर। माँ फिर भी गर्व करती है सैनिक बेटे पर, कहती है अपने अश्रुपूर्ण हृदय से देश का था काम आ गया देश के ही, कुर्बानी दे गया देश की खातिर। माँ को सब मालूम है, फिर भी रहती है इंतजार में हमेशा ही सैनिक की माँ। मेरी अगली कविता का शीर्षक है मलिन बस्ती। गुजर रही थी जब मैं उस मलिन बस्ती से, सामने कचरे के ढेर से आती हुई दुर्गंध और काले पानी की सड़ांध असहनीय थी मेरे लिए। विवत्स दृश्य को देख लगा लिया चश्मा मैंने अपनी आंखों पर, रख लिया रुमाल अपनी नाक पर, पूरी तरह से ढक लिया अपने चेहरे को दुपट्टे के पल्लू से। गुजर रही थी जब मैं उस मलिन बस्ती से, फैक्ट्री से बाहर निकाले विषैले तत्वों का मिश्रण था। कुछ औरतें और बच्चे बड़ी तन्मयता से कुरेद रहे थे इस ढेर को, जैसे कोई बड़ा खजाना हाथ लगने वाला। ना चाहकर भी बार बार उठ रही थी मेरी नजर उस कचरे के ढेर पर। गुजर रही थी जब मैं उस मलिन बस्ती से, ठिठक गए मेरे पांव वहीं पर देखने के लिए, आखिर क्या ढूंढा जा रहा है यहाँ इस गंदगी में। केवल फैक्ट्री से निकला हुआ जंग लगा लोहा, कुछ चिथड़े नुमा कपड़े, प्लास्टिक व कांच की बोतलों के ढक्कन और ना जाने कितने ही विषाक्त पदार्थ नन्हे हाथों से निकाल रहे थे वो बच्चे। गुजर रही थी जब मैं उस मलिन बस्ती से, नंगे पांव नंगी टांगों, शरीर और दुख दर्द से बेपरवाह, व्यस्त थे अपने कर्म में। कांच चीरता होगा उनके भी हाथों और पांव को, रसायन टकराता होगा उनकी भी त्वचा से, क्या कोई समझता होगा उनका दर्द। सड़क पर जो बैठे होते हैं भीख मांगने, ग्रस्त कई रोगों से, शायद यहीं से वो पहुंचते होंगे इस विकृत अवस्था में। यही सोच लिए मैं चल पड़ती हूँ अपने गंतव्य की ओर। क्या देश का भविष्य मलिन बस्ती में है, या विदेश जाने वालों की हस्ती में, या फिर नशे की गिरफ्त में आए हुए बच्चों की मस्ती में है, कहाँ है देश का भविष्य। गुजर रही थी जब मैं उस मलिन बस्ती से। मेरी अगली कविता का शीर्षक है वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम पुराने फर्नीचर की तरह निकाल दिया गया बड़े ही प्यार से मुझे, अपने ही घर से पहुंचा दिया गया आश्रम के गेट पर। कपड़ों की पोटली उतार दी गई नीचे गाड़ी से और थमाई गई गेट कीपर के पास, कहा गया उसे पहुंचा देना इनके कमरा नंबर 7 में, क्योंकि 7 का अंक बहुत भाग्यशाली है। पुराने फर्नीचर की तरह निकाल दिया मुझे अपने ही घर से। मुस्कुरा रहा था मैं एक लाचार बाप।

ये सुनकर अपने भाग्यशाली होने पर भी सोचा, सच में हूं तो मैं पुराने फर्नीचर की तरह ही। कदम आगे बढ़ रहे थे अपने ही जैसे लोगों से मिलने के लिए। द्वंद चल रहा था अंदर ही अंदर कि क्या मैं रह पाऊंगा अपनों से दूर। वो अपने जो कर रहे थे मुझे पराया यहाँ भेजकर पुराने फर्नीचर की तरह। निकाल दिया गया मुझे बड़े प्यार से अपने ही घर से। हिचकिचा रहा था पीछे मुड़कर देखने में कि कहीं बेटा अभी भी खड़ा तो नहीं होगा उसी तरह जैसे बचपन में स्कूल जाते वक्त इंतजार में रहता था मेरे टाटा बाय बाय बोलने तक। सोचा कहीं नजरें ना मिल जाएं हम दोनों की। इसका इरादा डगमगा ना जाए। ना जाने कितना बड़ा दिल रखा होगा उसने मुझे यहाँ छोड़ने के लिए। कुछ तो मजबूरियां होंगी उसकी भी। आखिर हूं तो मैं पुरानी फर्नीचर की तरह ही। इसीलिए निकाल दिया गया मुझे बड़े ही प्यार से अपने ही घर में। अब हूं भी मैं किसी काम का नहीं। बेवजह पड़ा रहता हूँ इधर उधर। नई पीढ़ी की नई सोच भी नहीं रखता मैं। बड़े नाजों से पाला था उसे माँ बाप दोनों बनकर। पर कोई एहसान तो नहीं किया। फर्ज था सो निभाना ही था। सोचते हुए अचानक मुड़ा पीछे की तरफ बड़ी उम्मीद में कि बेटा खड़ा होगा इंतजार में। उसी समय चौकीदार ने आवाज लगाई, बाबा क्यों खड़े हो, अंदर चलिए। आपका बेटा तो कब का जा चुका है आपको छोड़कर। लंबी सांस ली और चल पड़ा मैं नए लोगों से मिलने के लिए। नया अनुभव, नए रूप, नया जीवन जीने के लिए। पुराने फर्नीचर की तरह निकाल दिया गया मुझे भी बड़े ही प्यार से अपने ही घर से। मेरी अगली कविता का शीर्षक है लिख दो मुझे भी। लिख दो मुझे भी किसी कागज के टुकड़े पर। खुद ना लिख सको तो लिखवा दो किसी और से। मुझे भी किसी कागज के टुकड़े। जहां तक पहुंच है तुम्हारी काश मेरी भी होती। मैं सिमटी रही चूल्हे चौके तक, घर की चार दीवारी तक। तपती रही धूप में, पिघलती रही आंच में। निकल ना पाई सांझ में भी। इसीलिए लिख दो मुझे भी किसी कागज के टुकड़े पे। देखती हूँ तुम्हें बहुत कुछ पढ़ते, कुछ लिखते हुए, कुछ कहते हुए और कुछ सुनते हुए। चाहती हूँ मैं भी मेरी भी पहचान हो, धूमिल ना हो जाऊं कहीं इस जीवन की दौड़ में। मुझे भी जाने कोई मुझसे ही, ना कि तुम्हारे नाम से। इसीलिए लिख दो मुझे भी किसी कागज के टुकड़े पे। बहुत किस्से कहानियां कविताएं लिखी हैं तुमने, पास वालों की भी, दूर वालों की, अपनों की भी, बेगानों की भी। कहीं नजदीकियां बन गई, कहीं बन गई दूरियां भी। चट्टानों और पत्थरों को भी नहीं छोड़ा तुमने, पिरो दिया उन्हें भी माला रूपी लेखनी के धागे में। इसीलिए लिख दो मुझे भी किसी कागज के टुकड़े। क्या संभव नहीं है लिख पाना कुछ भी मेरे इस वजूद पर। क्या नहीं उतरती सही तुम्हारे नाप तोल के पैमाने पर। आखिर कब तक बंदी रहूंगी मैं भी कुछ घड़ियों पलों या घंटों का हिसाब कर दो। बदल दो इन सबको नए पैमाने में। इसीलिए लिख दो मुझे भी किसी कागज के टुकड़े। लिख दो मुझे भी किसी कागज के टुकड़े। मेरी अगली कविता का शीर्षक है पड़ाव। रुक गई है जिंदगी इस पड़ाव पर आकर। सोचा जाता कुछ और, बोला जाता कुछ और। ना जाने क्यों कुछ क्षण में ही भूल जाते हैं शब्द जो वहां पर आने से पहले। रुक गई है जिंदगी इस पड़ाव में आकर। सोचना पड़ता है कई बार अपनी बात रखने के लिए। कभी तो औचित्य भी नहीं होता किसी बात का, फिर भी मन रखने के लिए कह दिया जाता है कुछ भी। रुक गई है जिंदगी इस पड़ाव में आकर। अब तो नाम भी भूल चुके हैं व्यक्तियों के, स्थानों के, यहाँ तक कि कई मसालों के भी जो मंत्र कंठस्थ थे पूरी तरह से। अब तो वो भी बोले जाते हैं कई टुकड़ों में। रुक गई है जिंदगी इस पड़ाव पर आकर। कभी आवाज भी नहीं सुनाई देती पास बैठे व्यक्ति की, और कभी धीरे से कही गई बात भी सुनाई पड़ती है बड़े आराम से। ध्यान कहीं और तो शरीर कहीं और पूरा मन कई बार और ही कहीं उपस्थिति दर्ज करवाता है। रुक गई है जिंदगी इस पड़ाव पर आकर। हर एक को देखा जाता है अब तो शक की निगाह से। बात चलती किसी और की, हम समझते हैं अपनी ही है। ना जाने कितनी ही उधेड़ बुन में अपने आप को उलझाए रखते हैं हम। बस इसी सोच में दिन से रात और रात से दिन गुजर जाता है। रुक गई है जिंदगी इस पड़ाव में आकर।

0: आते हैं और निकल जाते हैं अपने ही रास्ते से। नमस्ते के अलावा कोई बात नहीं होती अब किसी से। फिर भी कभी भी कोई भला मानस रुक के कर ले बात, अगर तो बड़ी संजीदगी से बता देते हैं उसे बीता समय, बीते दिन, बीते महीने और कई सालों के किस्से कहानियां। पूरी कोशिश में रहते हैं उसे ये जताने में कि हम भी गुजरे जमाने की सीढ़ियां हैं, तुम्हें भी चढ़नी होगी एक दिन, रुक गई है जिंदगी इस पड़ाव में आकर। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर विजय लक्ष्मी नेगी से उनकी कविताएं। इसी के साथ ही साहित्य दर्पण कार्यक्रम का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। अगले सप्ताह इसी दिन आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

0: साहित्य दर्पण के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर विजयलक्ष्मी नेगी से कविता पाठ। आप सुन रहे हैं एफएम शिमला का प्रसारण।
1: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
2: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
3: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
4: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: एक 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण। 11 बजने को है, हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
5: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ ही एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और रेडियो की डीटीएच सेवा पर भी उपलब्ध है।
6: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में आज 51 शहरी निकाय चुनावों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ, जो सायं 3 बजे तक चलेगा। शहरी निकायों में 449 में से 439 पदों के लिए 1147 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें 196 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। शहरी निकाय चुनावों के लिए 360,859 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यदि मतदान के दिन मतदाता के पास किसी कारणवश मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो उसके स्थान पर किसान पासबुक, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड जैसे 17 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाया जा सकता है। नगर निगम चुनाव के लिए पार्टी चुनाव चिन्ह पर करवाए जा रहे हैं और मुख्य मुकाबला कांग्रेस व भाजपा के बीच माना जा रहा है। 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के परिणाम मतदान के बाद आज शाम को ही आ जाएंगे। इसके अलावा नगर निगमों के लिए डाले गए वोटों की गिनती 31 मई को होगी। मंडी जिला में आज शहरी निकाय चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है, जो दोपहर 3 बजे तक चलेगी। चुनाव को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। तेज धूप को देखते हुए बड़ी संख्या में मतदाता सुबह ही मतदान केंद्रों पर पहुँच गए। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त अपूर्व देवगन के अनुसार जिले में कुल 63,112 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जिनके लिए 90 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता।
7: चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए 538 अधिकारी कर्मचारी और 180 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। आज नगर निगम के 14 वार्डों सहित नगर परिषद सुंदरनगर, जोगिंदरनगर, नेरचौक, सरकाघाट तथा नगर पंचायत रिवालसर और करसोग में मतदान हो रहा है। नगर निगम मंडी में सबसे अधिक 42 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। प्रशासन ने सभी मतदाताओं से लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़ कर भाग लेने की अपील की है। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
6: नगर निगम धर्मशाला के कुल 17 वार्डों में मतदान के लिए 34 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें से 12 मतदान केंद्रों को संवेदनशील तथा 5 मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। इन मतदान केंद्रों

0: और कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था व विशेष निगरानी की जा रही है। एसडीएम मोहित रत्न ने बताया कि नगर निगम धर्मशाला क्षेत्र में कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 36,800 है। इनमें 18,258 महिला मतदाता तथा 18,542 पुरुष मतदाता शामिल हैं। सोलन नगर निगम के 17 वार्डों के चुनाव के लिए 38 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 2 केवल महिलाओं के लिए बनाए गए हैं। आज सुबह से ही लोग कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। नगर निगम सोलन में कुल 34,147 मतदाताओं में से 17,274 पुरुष तथा 16,872 महिला मतदाता हैं, जबकि एक ट्रांसजेंडर मतदाता है। शहरी निकाय चुनावों को लेकर मतदाताओं में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है।
1: मैं वोट डाल के आ गया, उज्जवल भविष्य, अच्छी नगर निगम, अच्छी डेवलपमेंट के लिए सभी वोट डाले और अच्छी सरकार चुने।
2: जो अभी मैं ये मतदान करके आया हूँ और जो हमारे एरिया के जितने लोगों ने भी मतदान किया है, उनका एक ही लक्ष्य है कि उनको एम्बुलेंस रोड चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए। उस मुद्दे को लेकर हमने ये कहा और इसलिए हम बदलाव कर रहे हैं। उन्होंने ये दिया है कि इसमें बदलाव लाओ ताकि जो हमारे क्षेत्र में चिरकाल से समस्याएं उनका निदान हो सके, फंड की कमी ना आए, नेतृत्व की कमी ना आए, जो उनका रोड प्लान है, जो उनके मॉडस ऑपरेंडी है वो सही से हो।
3: मेरा नाम पूनम वर्मा है, मैं आनंद विहार वार्ड नंबर 12 की निवासी हूँ और मैं अभी वोट करके आई हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जो भी कैंडिडेट चुन के आए वो लोगों के हित के लिए कार्य करे और सभी की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए अच्छा काम करें।
0: जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की डंखर पंचायत के ग्रामीणों ने आपसी एकता और तालमेल की एक अनूठी मिसाल पेश की है। स्पीति के माने योगमा गांव निवासी अशोक के परिवार की तीनों बहुओं को पंचायत चुनाव में सर्वसम्मति से निर्विरोध चुन लिया गया है। विस्तृत जानकारी के साथ लाहौल स्पीति जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
4: जानकारी के अनुसार तंजिन छोडुन को प्रधान, सोनम छोकित को बीडीसी सदस्य और सोनम आंगमो को प्रधान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विशेष बात यह है कि एक ही परिवार की तीनों बहुओं को पंचायत ने अलग अलग महत्वपूर्ण पदों के लिए विश्वास के साथ चुना है। इस फैसले की पूरे क्षेत्र में चर्चा हो रही है और लोग पंचायत की एकजुटता और परिपक्व सोच की सराहना कर रहे हैं। पंचायत के लोगों का कहना है कि आपसी सहमति का बनना गांव की एकता, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। ग्रामीणों का मानना है कि जब समाज मिलकर निर्णय लेता है तो विकास और सामाजिक सौहार्द की राह और मजबूत। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में आज आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल का एक अहम मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह है। ये मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। अंक तालिका में आरसीबी 16 अंकों के साथ शीर्ष पर बनी हुई है, वहीं पंजाब किंग्स 13 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है और प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए उसे ये मैच जीतना जरूरी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 3:00 बजे। नमस्कार।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी शिमला के साथ साथ हमीरपुर व धर्मशाला केंद्रों तथा एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर भी प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
6: आप एफएम शिमला का प्रसारण सुन रहे हैं।
7: शिमला की वादियों से आपके दिलों तक आ गया है आपका अपना भरोसेमंद साथी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी एफएम शिमला। खबरें, संगीत, संस्कृति और मनोरंजन का बेमिसाल

0: पर्यटन की बात हो या संस्कृति की, हर मुसाफिर की जो आवाज बनता है, जुड़िए उस आवाज से जो हिमालय की गूंज जैसी है। आकाशवाणी FM शिमला, शुभवाणी लाभवाणी, ये है जन जन की वाणी, आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी FM शिमला से अगले कार्यक्रम के लिए कुछ पलों का इंतजार।

0: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
1: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

भोर की ताजगी के बाद और दोपहर की गर्माहट के बीच का समय दिन की रफ्तार में संगीत की मिठास महकने की ओर बढ़ता जा रहा है। धूप की नरम तपिश, चाय की आखिरी चुस्कियां और दिल के करीब पुराने फिल्मी नगमों की स्वर लहरियां। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण। संडे की इस सुंदर दोपहरी की ओर बढ़ते परिवेश में जब मौसम सुस्त कदमों से आराम की चादर ओढ़े बैठा है, आपका हम सफर, मैं हूं वीरेंद्र शर्मा, आकाशवाणी एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर लेकर हाजिर हूं पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम। दोस्तों, कभी कभी उल्फत की एक छोटी सी आहट भी पूरे शहर की सबसे बड़ी खबर बन जाती है। गलियों में फुसफुसाहटें होती हैं, महफिलों में चर्चे सजते हैं और दिल बस एक नाम पर ठहर सा जाता है। कार्यक्रम में पहला नगमा आसपास फिल्म से, जिसकी धुन में उल्फत की शरारत और शब्दों में दिल की मीठी सी हलचल है।

0: पुरानी फिल्मों से गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला से। कार्यक्रम का शेष भाग सुनिएगा एक अंतराल के बाद।
1: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
2: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
1: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
2: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: फिर से स्वागत आकाशवाणी एफएम शिमला पर। आप सुन रहे हैं पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम। दोस्तों, जिंदगी की भागदौड़, शोर और उलझनों के बीच कभी दिल चाहता है कि कहीं दूर, बहुत दूर चला जाए, जहां सुकून हो, अपनापन हो और प्रकृति की गोद में बस प्यार भरी बातें हों।

0: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
1: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
2: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
3: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम आकाशवाणी FM शिमला से आप सुन रहे हैं। यह है कार्यक्रम का अगला नगमा। फिल्म का नाम लीडर, जिसमें मोहब्बत की मिठास है, खूबसूरती की चमक और पुराने दौर के संगीत का वो सुनहरा एहसास जो आज भी दिलों पर राज करता है।

दोस्तों, इंतज़ार मोहब्बत की वो खामोश इबादत है जिसमें वक्त भले ही लंबा हो जाए मगर उम्मीद की शमा बुझती नहीं। किसी अपने की आहट, किसी वादे की आस और मिलने की तड़प दिल को हर पल उसी मोड़ पर ठहराए रखती है।

0: पुरानी फिल्मों से, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे।
1: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है, वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में, सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
2: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान, राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: आप आकाशवाणी FM केंद्र शिमला का प्रसारण सुन रहे हैं 103.7 MHz पर। आकाशवाणी FM शिमला पर अब चलते हैं लोक संगीत की ओर। हिमाचली लोक रंग, पहाड़ी सुरों से सजे संगीत सफर को अपनेपन की खुशबू के साथ महसूस करते हैं।

0: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
1: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
0: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
1: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: लोक संगीत में अगला लोकगीत लीजिए, सुनिए।

0: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
1: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
2: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
3: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: लोक संगीत में ये है अगला लोकगीत।

0: देते हैं।
1: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
2: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत। लोक संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला से।

0: लोक संगीत का आखिरी गाना आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
1: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
2: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
1: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
2: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: इसी लोकगीत के साथ ही लोक संगीत में अभी के लिए बस इतना ही।
1: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
2: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
1: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
2: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण सुन रहे हैं। दोपहर के 12 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं। प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी है। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार बढ़ाने, हरित प्रौद्योगिकी अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और जनसंपर्क में सहयोग के नए रास्ते तलाशेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। श्री मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया। उन्होंने उभरते क्षेत्रों में अधिक सहयोग का आह्वान किया।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में एक रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में एक किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रुपए और गुरुग्राम में 85.12 रुपए हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। आंध्र प्रदेश में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत युवा संगम का 6ठा चरण कल से शुरू हो गया। तिरुपति के जिलाधिकारी डॉ एस वेंकटेश्वर ने जिले के येरपेटू स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, बौद्धिक विकास और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम 27 मई तक चलेगा। टेनिस में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने इटालियन ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। 7वीं वरीयता प्राप्त एलिना ने फाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। आज इटली के जैनिक सिनर का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूट से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8:30 से खेला जाएगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रोली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। IPL क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi will reach Gothenburg today on a two-day visit to Sweden. He will hold bilateral talks with Swedish Prime Minister Ulf Kristersson to review cooperation in trade, green transition, AI, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defence, space, climate action and people-to-people ties. The two leaders will also address the European Roundtable for Industry alongside European Commission President Ursula von der Leyen. This visit is a third leg of Prime Minister Modi's UAE and European tour and his first to Europe since the India-EU Free Trade Agreement took effect in January 2026. Yesterday, in the second leg of the Prime Minister's tour, India and the Netherlands agreed to elevate their bilateral relationship to a strategic partnership following talks between Prime Minister Modi and Dutch Prime Minister Rob Jetten in The Hague. India has strongly condemned attacks on commercial shipping in the Strait of Hormuz, calling them unacceptable. India's permanent representative to the UN, P. Harish, said targeting civilian crew and disrupting freedom of navigation cannot be justified. He was speaking at a special meeting of the United Nations Economic and Social Council on safeguarding global energy and supply flows.
2: Targeting of commercial shipping, endangering civilian crew, impeding freedom of navigation in the Strait of Hormuz are unacceptable. International law in this regard must be fully respected. Open and predictable trade flows must be preserved and fragmentation avoided. Coordinated efforts are needed to stabilize energy markets and support countries facing external and fiscal pressures. Strengthening multilateral financial support mechanisms will also be critical in this regard. This crisis underscores the importance of combining immediate response with long-term transformation.
1: Mr. Harish's remarks came days after an India-flagged commercial vessel was attacked off the coast of Oman. Within days of levying high customs duties on precious metals, the government has imposed import curbs on silver. The Directorate General of Foreign Trade in a notification said the import policy for silver, including silver plated with gold and platinum, are revised from free to restricted with immediate effect. A major rail accident was averted in Ratlam, Madhya Pradesh this morning. Fire broke out in the B1 coach of the Tiruvananthapuram Hazrat Nizamuddin Rajdhani Express, train number 12431. The incident took place between Luni Richa and Vikramgarh Alot stations in the Kota division at around 5:20 a.m. Ratlam Railway Division's Public Relations Officer Mukesh Kumar informed there has been no casualty in this incident. All passengers in the coach

0: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में, सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
1: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान, राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: नेक्स्ट सॉन्ग फ्रॉम द मूवी गुरु।

फिल्म संगीत आप आकाशवाणी एफएम केंद्र शिमला से सुन रहे थे। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी एफएम शिमला। अगले कार्यक्रम के लिए कीजिए कुछ पलों का इंतजार।

मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला सम्मेलन।

0: कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज कार्यक्रम में आपकी हम सफर, मैं हूँ प्रोमिल
1: और मैं हूँ हर्षा शर्मा।
0: आप सभी को हमारा नमस्कार।
1: बहनों, तेज रफ्तार जिंदगी, काम का दबाव, तनाव और भाग दौड़ भरी दिनचर्या, क्या आपने कभी सोचा है कि इसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है? और एक ऐसी ही बीमारी जो बहुत तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रही है।
0: जी, मैं समझ गई हर्षा, आप किसकी बात कर रहे हैं।
1: जी
0: जी, बात हो रही है उच्च रक्तचाप की, यानी हाई ब्लड प्रेशर। और आज यानी 17 मई को हम उच्च रक्तचाप दिवस मनाते भी हैं।
1: जी है, बिल्कुल।
0: तो आज के समय में ये सामान्य सी समस्या है, क्योंकि हर किसी को देखो बीपी की समस्या तो रहती है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि जो उच्च रक्तचाप है, यानी कि जो हाई बीपी है, इसके होने के कारण क्या होते हैं?
1: जी बिल्कुल, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं बहनों, जैसे कि अधिक नमक खाना भी इसका एक कारण हो सकता है, साथ ही तनाव और चिंता करना भी इसका एक कारण हो सकता है। आजकल लोग पढ़ाई की चिंता, काम की चिंता या फिर परिवार की चिंता में रहते हैं। ज़्यादा तनाव लेने से भी बहनों दिल में तेज़ी से जो है काम करता है और रक्तचाप बढ़ जाता है।
0: जी, और देखिए गलत खान पान भी इसकी एक वजह हो सकती है, क्योंकि तला भुना खाना खाना या फिर ज़्यादा जंक फूड खाना, ज़्यादा तेल वाला खाना, मसालेदार चीज़ें खाने की वजह से भी ये समस्या हो सकती है।
1: जी, और आजकल की ज़िंदगी भी बहुत भाग दौड़ है। आजकल की ज़िंदगी में तो लोग अपने जीवन में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनके पास अपने लिए ही समय नहीं है। आजकल हम सभी व्यस्त होने के कारण थोड़ा सा भी शारीरिक काम या व्यायाम नहीं करते, जिससे शारीरिक कमज़ोर जो हमारा शरीर है वो कमज़ोर हो जाता है और मोटापा बढ़ने लगता है। इससे भी हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ता है।
0: जी, और नींद पूरी नहीं होना भी एक बहुत बड़ी समस्या है ना। तो इससे भी हमारे शरीर को देखिए आराम नहीं मिलता है। तो अगर आराम नहीं मिलता है तो हमें तनाव आता है, और जब तनाव आता है तो देखिए ब्लड प्रेशर की जो समस्या है वो तो होती ही है ना
1: जी। और कुछ और कारण भी होते हैं, जैसे कि हाई बीपी की ओर संकेत देते हैं, जैसे कमजोरी और थकान।

0: महसूस होना, है ना, और सांस लेने में परेशानी, दिल की धड़कन तेज होना, बेचैनी होना आदि।
1: जी, ये सारे लक्षण होते हैं। अगर आपको ऐसे कुछ लक्षण हैं तो आप थोड़े से सचेत हो सकते हैं, है ना
0: जी।
1: तो बहनों, यदि आप अपने खान पान और अपनी आदतों में थोड़ा सा बदलाव लाएं तो आप जो ब्लड प्रेशर की समस्या है, जो उच्च रक्तचाप की समस्या है, आप उसको नियंत्रित कर सकती हैं।
0: जी बिल्कुल। हाई बीपी में नमक का इस्तेमाल बहनों थोड़ा कम करें, अपने खाने में हरी सब्जियां, फल आदि शामिल करें। पालक, टमाटर, गाजर, सेब, संतरा भी सभी चीज़ें हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, तो इसका इस्तेमाल, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना काफ़ी अच्छा रहता है
1: जी
0: सेहत के
1: बिल्कुल।
0: लिए।
1: और सबसे बड़ी बात तो है कि आप घर का बना खाना ही प्रेफर करें, वही खाएं। जंक फूड से जितना हो उतनी दूरी बनाएं, उतना परहेज़ करें तो बहुत अच्छा है। और अपने जब भी आप खाना बनाएं तो देखिए उसमें नमक और तेल की मात्रा ज़्यादा ना हो। आप ये सब चीज़ें घर में बड़ी आसानी से कर सकती है। इसके साथ ही हर्षा, देखिए पानी पीना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है ना, तो ये स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा है, साथ ही हमारी त्वचा के लिए भी बहुत अच्छा होता है ना।
0: जी बिल्कुल। और इसके साथ ही बहनों, थोड़ा सा सुधार हमें अपनी जीवन शैली में भी लाना होगा। जैसे रोज़ व्यायाम करें, सुबह शाम टहलें और योगा करें, हल्का व्यायाम करें, इससे क्या है, हमारी सेहत अच्छी रहेगी।
1: जी बिल्कुल। और तनाव से दूरी तो हम कहती हैं बहनों की दूर रहे, और अगर आप खुश रहेंगी तो देखिए आप तंदुरुस्त रहेगी, स्वस्थ भी रहेगी। इसलिए तनाव को टाटा बाय बाय कीजिए और
0: जी।
1: खुशी को अपने जीवन में लाए। छोटे छोटे पलों में खुश होना सीखे कि कैसे आप खुशियाँ बटोर सकती है, क्योंकि देखिए बड़ी खुशियाँ तो हमें कभी कभार मिलती है, लेकिन जो छोटी खुशियाँ होती है ना वो हर रोज़ हमें अपने जीवन में मिलती है, तो इसलिए छोटी खुशियों में खुश होना सीखें।
0: आपने ये बिल्कुल सही कहा है। और ये खुशियाँ हम महसूस नहीं कर पाते हैं, वो क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान रहता है हमारे भविष्य पे, है ना। तो इसकी वजह से जो ये छोटी छोटी अभी जो हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ होती है ना, वो हम भूल जाते हैं, उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल।
0: और इसी के साथ बहनों, 7-8 घंटे की नींद लेना भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। और बहनों, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें।
1: जी बहनों, देखिए हाई ब्लड प्रेशर होना अपने आप में एक समस्या है, लेकिन सही समय पर ध्यान देने से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। और स्वस्थ खान पान, नियमित अगर हम व्यायाम करते हैं और अगर अच्छी जीवन शैली को हम अपनाते हैं ना, तो हम लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं और तंदुरुस्त रह सकते हैं।
0: जी बिल्कुल। तो प्रोमिला, क्यों ना बहनों से अभी और भी हम बातें करेंगे, तो गीत सुन लेते हैं।
1: जी

0: बहनों, जिंदगी एक रंगमंच है जहां हर कोई अपनी भूमिका निभाता है। हमारी बहनें अपनी काम और घर के बीच एक अद्भुत संतुलन बनाती है जो उनकी मेहनत, लगन व समझदारी का परिणाम होता है।
1: और ये संतुलन बनाने के लिए उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है प्रोमिला, और इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और सकारात्मक दृष्टिकोण इन्हें सफल बनाता भी है। यदि हमारी बहनें कुछ बातों का ध्यान रखें तो वे अपने कार्यों में आसानी से संतुलन बना सकती है।
0: जी बिल्कुल। जैसे देखिए बहनों, हर दिन के हिसाब से आप अपनी प्राथमिकताएं तय करें कि कौन सा काम ज़्यादा ज़रूरी है और कौन सा काम इतना ज़रूरी नहीं है। जो ज़रूरी काम है आप उन्हें पहले कर लें, और जो गैर ज़रूरी है उसे आप अगले दिन पर भी टाल सकते हैं।
1: जी, सबसे ज़रूरी अपने मन में ये अपराध बोध ना आने दें कि आज आपने कुछ काम नहीं किए, बल्कि ये मान कर चलें कि आप जो भी काम करें वो पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ करें, और इन सब के लिए समय सारणी भी बनाएं।
0: जी, और कोशिश करें कि आप जो भी काम करें वो सही समय पर करें। देखिए, अगर आप सही समय पर काम करते हैं ना, तो आपके काम भी जल्दी हो जाते हैं और आप पे जो काम का दबाव है वो दबाव भी कम हो जाता है। और आपको जब काम आप रूटीन में कर रहे हैं तो देखिए थकावट जो है वो भी कम महसूस होती है
1: जी
0: ना?
1: बिल्कुल, जब पहले से ही पता होगा कि हमें क्या काम करना है तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हमारा समय भी जो है इससे बच जाता है। और हमें पता है कि हमारी बहनें सुपर वुमेन की तरह घर में और घर के बाहर काम करती हैं, लेकिन सुपर वुमेन को भी समय समय पर मदद की ज़रूरत तो पड़ती ही है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसलिए अपने देखिए, जो हम जॉब करते हैं, जो हमारा कार्यस्थल है, वहाँ तो हम अपने कामों को हमें अकेले ही करना पड़ता है, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना पड़ता है। लेकिन जो घर के काम है

0: वहाँ अपने कामों का जो दायित्व है वो दूसरे व्यक्तियों पर भी डाल सकते हैं।
1: जी जी
0: यानी कि कहने का मतलब है कि आप घर के सभी सदस्यों को कहें कि वो आपके कामों में मदद करें और अपने कामों का बंटवारा कर ले, ताकि आप पे भी काम का बोझ ना हो और काम भी आसानी से हो जाए।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि बहनों घर तो सभी का ही है, सिर्फ घर की जो लेडी है उसी का ही नहीं है, घर सभी का है। तो सभी में अगर काम बांट दिए जाएं तो उनको भी काम के बारे में पता लगेगा और साथ में आपको भी थोड़ी राहत तो मिलेगी।
0: जी बिल्कुल, और आपको अगर ये लगता है ना कि आप घर की जिम्मेदारी खुद लेने में अगर लेती है तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा या फिर आप बेहतर

0: आप अपने स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ कर सकती है, है ना। तो इसलिए अपनी सीमाओं को पहचानिए कि आपकी सीमा कहाँ तक है, आप कितना काम कर सकते हैं, तो आप उतना ही काम कीजिए जिससे कि आपको थकावट भी ना हो और ना ही आपके स्वास्थ्य पर उसका असर पड़े।
1: जी बिल्कुल। और जो जिस समय में आपने दूसरे को काम दिया है, होता है या फिर जो बांटा होता है, इससे आपका समय बचता है, और जो समय बचता है ना बहनों, उसमें आपको थोड़ा आराम भी कर लेना चाहिए जिससे आपकी सेहत पे ज़्यादा असर भी नहीं पड़ेगा। और काम तो सभी के जीवन में होते हैं और अगर हम करते भी हैं, लेकिन कई बार इन्हीं कामों की वजह से हम अपने आप को अनदेखा करना शुरू कर देते हैं, और जब हमारे रोज़ की दिनचर्या एक जैसी रहती है तो उसमें कोई परिवर्तन होता नहीं है, तो अक्सर हम थके थके से रहते हैं, चिड़चिड़े से रहने लग जाते हैं ना?
0: जी बिल्कुल। और देखिए, जब हमें चिड़चिड़ापन आता है ना, तो गुस्सा आना लाजमी है, और कहीं ना कहीं ये गुस्सा हमारे अपनों पे, हमारे बच्चों पे, अपने परिवार के सदस्यों पे निकल जाता है ना। और जब हम गुस्से में रहते हैं तो देखिए सामने वाला भी गुस्से में आ ही जाता है, कई बार इस तरह से बहुत बातें बहुत आगे तक भी बढ़ जाती है। तो ऐसे में बहनों आपको सिर्फ इतना सा करना है कि अपनी व्यस्त दिनचर्या में अपने लिए थोड़ा सा समय निकालें, और वे समय सिर्फ आप अपने ऊपर लगाएं।
1: जी, अपनी पसंद का कोई भी काम करें, दोस्तों के साथ समय बिताएं और तनाव मुक्त हो जाएं। देखिए बहनों, हम मानते हैं कि काम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर काम में संतुलन बनाए रखना ये हमारा दायित्व भी होता है।
0: जी बिल्कुल। और अपने परिवार की खुशी के लिए हमें ये सारी चीज़ें करनी भी पड़ती हैं।
1: जी।

0: मैनू आज के समय में तकनीक बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। पहले लोग केवल घड़ी का उपयोग समय देखने के लिए करते थे, लेकिन अब घड़ियां भी स्मार्ट हो गई हैं। इन्हें स्मार्ट वॉच कहा जाता है और स्मार्ट वॉच एक ऐसी डिजिटल घड़ी है जो केवल समय नहीं बताती बल्कि मोबाइल की तरह कई काम भी करती है।
1: जी, ये हमारे स्वास्थ्य, हमारी पढ़ाई, खेल और रोज़मर्रा के कामों में हमारी बहुत मदद करती है। देखिए, जो स्मार्ट वॉच होती है ना, वो हम ये कहें कि एक कंप्यूटर की तरह काम करती है,
0: जी
1: जिसमें सेंसर, ब्लूटूथ और स्मार्टफोन ऐप के माध्यम से बहुत सारी हमें चीज़ें मिलती है, बहुत सारी फैसिलिटी है हमें देती है। ये ब्लूटूथ से फ़ोन में जुड़कर नोटिफिकेशंस, कॉल और हेल्थ, जैसे हृदय गति हमारी कितनी है, हम कितने कदम आज
0: जी
1: चले
0: जी
1: हैं, ये सारी चीज़ें हमें बताती है। जितना वर्कआउट हम करते हैं, इन सब की जानकारी हमें स्मार्ट वॉच के थ्रू मिलती रहती है।
0: जी बिल्कुल। स्मार्ट वॉच के काम करने का तरीका अधिकांश स्मार्ट वॉच स्मार्टफोन से ब्लूटूथ के ज़रिए जुड़ती है, जिससे फ़ोन की कॉल, मैसेजेस और नोटिफिकेशन घड़ी पर दिखते हैं।
1: जी, और इसमें लगे सेंसर हमारे हृदय गति, हमारी ऑक्सीजन लेवल कितना है, हमारे हम जो चलते हैं, हमारे कदमों को ट्रैक ही बहुत आसानी से कर सकता है।
0: जी, और घड़ी के अंदर एक छोटा कंप्यूटर प्रोसेसर होता है जो ऐप्स चलाने और डेटा प्रोसेस करने में मदद करता है।
1: और स्मार्ट जो वॉच है, उसको फोन से कनेक्ट करके आप एक विशेष ऐप की आवश्यकता होती है जो डेटा को स्टोर और उसका विश्लेषण करता है। यानी कि अगर आपको कोई फोन आ रहा है

0: है तो आपने अपने स्मार्ट वॉच अगर अपने फोन से कनेक्ट की है तो आपके स्मार्ट वॉच में आपको पता लग जाएगा कि कौन व्यक्ति आपको इस समय कॉल कर रहा है।
1: जी बिल्कुल, कुछ स्मार्ट वॉच में बिल्ट इन जीपीएस होता है जो दौड़ने या चलने के दौरान आपकी लोकेशन और दूरी को ट्रैक कर सकता है।
0: जी, तो हर्षा बहनों को बताते हैं कि आप स्मार्ट वॉच का इस्तेमाल कैसे कर सकते
1: जी
0: हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो अपनी स्मार्ट वॉच का ऐप फोन में प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करें, फोन और वॉच दोनों को आप ब्लूटूथ आप ऑन कर दें।
1: जी बिल्कुल, फिर ऐप खोलें और बिन डिवाइस पर क्लिक करके घड़ी को स्कैन और कनेक्ट करें। ऐप सेटिंग्स में जाकर व्हाट्सएप, एसएमएस और कॉल्स की अनुमति जो भी आपको चाहिए उनकी आप इसमें जो है अनुमति आपको देनी होगी बहनों।
0: जी, और देखिए जो अपनी हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस है, जो लोग बहुत सतर्क रहते हैं,
1: जी
0: जैसे सुबह शाम वो चलने जाते हैं, सैर करने जाते हैं, तो कईयों ने टारगेट लिखा रखा होता है कि हमने 10,000 कदम चलने हैं,
1: जी
0: छः
1: जी
0: हज़ार कदम चलने हैं, तो आप वैसे गिनती नहीं कर सकते हैं उसकी, है ना। लेकिन अगर आपके हाथ में स्मार्ट वॉच है तो आप उसमें ये सारी जो फैसिलिटी है वो आपको मिल सकती है कि आप कितने कदम चले हो, कितनी आपकी कैलोरी बर्न हुई है, ये सब जानकारी स्मार्ट वॉच आप को आसानी से दे सकती है।
1: जी बिल्कुल, स्मार्ट वॉच ब्लूटूथ सेंसर और स्मार्टफोन के साथ तालमेल बिठाकर डेटा ट्रैकिंग और सूचनाएं प्रदान करती हैं, जिससे फ़ोन को बार बार जेब से नहीं निकालना होता है। जैसे होता है ना, कई बार फ़ोन आ रहा है तो हमें बार बार फ़ोन निकालना पड़ता है, तो इससे इसकी वजह से आपको जो है बार बार फ़ोन अपने पॉकेट से बाहर नहीं निकालना पड़ता।
0: जी, तो देखिए स्मार्ट वॉच के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो फायदा हमने बता ही दिया कि
1: जी
0: ये
1: जी
0: ट्रैक भी करती है ना, दूसरा ये भी है कि जितने भी आपके मैसेजेस आते हैं, कॉल आते हैं, ये सब आप अपनी कलाई पर इसके मैसेज देख सकते हैं जब
1: जी
0: आपने
1: जी
0: स्मार्ट वॉच पहनी है तो।
1: और नेविगेशन का ऑप्शन भी इसमें होता है प्रोमिला, जिसमें इससे क्या होता है कि आप चलते या ड्राइविंग करते समय भी आप दिशा निर्देश आसानी से ट्रैक कर सकते हैं।
0: जी, और देखिए स्मार्ट वॉच की मदद से आप म्यूज़िक कंट्रोल बिल्कुल बहुत आसानी से कर सकते हैं, और घड़ियों में जो
1: जो इसमें जो कुछ घड़ियों में जो होता है कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट की सुविधा भी होती है।
0: जी बिल्कुल, और इस अगर ये सुविधा आपके पास है, आपकी वॉच में है, तो देखिए आपको बहुत आसानी इस
1: जी
0: चीज़
1: जी
0: से
1: जी
0: मिलती है ना।
1: और जैसे स्टाइल की बात की जाए, कस्टमाइजेशन की बात की जाए, तो इसके स्ट्रैप्स और डायल जो भी है आप अपनी पसंद से इसे बदल भी सकते
0: जी
1: हैं।
0: बिल्कुल, अगर आपको कलर पसंद नहीं है तो
1: जी
0: अपने,
1: जी
0: आजकल तो है ना कि बहनें सूट के साथ मैचिंग स्ट्रैप्स
1: जी जी
0: भी
1: जी
0: लगाती है, तो आप ये सब कुछ लगा सकते हैं और स्मार्ट वॉच का फ़ायदा उठा सकते हैं।

0: बहनों, गर्मियों में ठंडी ठंडी चीज़ें खाने का मन होता है ना?
1: जी बिल्कुल।
0: जैसे कि दही खा ली, लस्सी खा ली, चटनी है ना। और जब चटनी की बात हो और हम पुदीने का जिक्र ना करें तो ये तो देखिए सही नहीं होगा।
1: जी, सिर्फ पुदीना सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है प्रोमिला। इसमें ठंडक देने वाले एंटीऑक्सीडेंट और औषधीय गुण भी होते हैं।
0: जी बहनों, गर्मियों में पुदीने का सेवन बहुत फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है और ये एक बेहतर ठंडी जड़ी बूटी भी है जो शरीर को आंतरिक शीतलता, ताजगी और ऊर्जा प्रदान करती है।
1: जी, और बहनों देखिए, पुदीने के बहुत से फ़ायदे भी होते हैं, जैसे कि पेट की समस्याओं को ये दूर करता है, पाचन तंत्र की मांसपेशियों को आराम देता है, जिससे गैस, सूजन और अपच की जो समस्याएं होती है ना, उससे भी ये राहत देता है।
0: जी बिल्कुल। और देखिए, पुदीना जो है वो हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है।
1: जी जी।
0: इसमें विटामिन ए, सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है ना, उसको बढ़ाते हैं।
1: जी, पुदीने में एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं। इसका सेवन करने से मुंह के बैक्टीरिया नष्ट होते हैं और सांसें तरोताजा रहती है।
0: जी, और पुदीने की खुशबू से मानसिक शांति मिलती है जो दिन भर की थकान और तनाव को दूर करने में सहायक होते हैं।
1: जी, अगर सिर दर्द की बात करें तो ये सिर दर्द में भी राहत देता है। पुदीने का तेल या पत्तों की खुशबू सिर दर्द और तनाव को कम करने में मदद करता है।
0: जी, और देखिए, अगर हम त्वचा के लिए कहें तो त्वचा के लिए भी पुदीना बहुत ज़रूरी है और लाभदायक भी है ना।
1: जी,
0: अगर आपके चेहरे पे मुहासे हो गए हैं तो आप क्या कीजिए कि पुदीने का थोड़ा सा पेस्ट बना के उस जगह पे लगा लीजिए। तो पुदीना एक तो ठंडक भी देता है, साथ ही साथ जो मुहासे होते हैं उनको कम करने में भी मदद करता है।
1: जी, जैसे कि अभी हमने बात की कि सिर दर्द की, वैसे ही मानसिक शांति भी जो है ना, इससे मिलती है। जो दिन भर की थकान होती है और तनाव जो होता है वो भी इससे दूर होता है।
0: जी, और पुदीना एक, हम ये बोले कि प्राकृतिक ड्रिंक की तरह भी काम करता है ना। जैसे गर्मी बहुत होती है तो आप पुदीने को मिक्सी में उसका जूस बना लीजिए, पानी डाल के उसमें नींबू थोड़ी मिश्री डाल दीजिए, तो गर्मी में आप वो पीते हैं तो एक बहुत अच्छा वो तरल पदार्थ होता है, पेय पदार्थ होता है जिसको हम गर्मी में पीते हैं।
1: जी, और अभी कुछ देर पहले आपने बात ही की थी चटनी की, तो गर्मियों में पुदीने की चटनी जो है वो शायद हर घर में ही बनती होगी क्योंकि खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है और जो है हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है।
0: अगर

0: सेहत की बात की ना हर्षा, तो साथ में मैं बहनों को ये भी बता दूं कि अगर आप सुबह सुबह पुदीने की ताज़ी पत्तियां 4-5 तोड़ के खाती हैं ना, तो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, पाचन तंत्र के लिए भी और आपकी त्वचा के लिए भी बहुत ज़रूरी है अगर आप कुछ ऐसा करती हैं तो।
1: और पुदीने की चाय भी बना सकते हैं, सुबह जैसे चाय बना रहे हो तो आप अगर उसमें कुछ जो पत्तियां हैं वो पुदीने की डाल दें तो इसकी चाय भी बहुत अच्छी होती है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है।
0: जी बिल्कुल, और ये चाय जो है ना आपको तरोताज़ा भी रखती है।
1: जी जी जी
0: तो कभी आपको अगर थकावट ज़्यादा लग रही है तो तब भी आप इसकी चाय पी सकते हैं, तो क्योंकि एकदम से एनर्जी आपको आती है, ऊर्जा एक आपको मिलती है इससे।
1: जी पुदीना जो है सांस और बंद नाक की समस्या में भी मैंने राहत प्रदान करता है।
0: जी, और देखिए आजकल गर्मियों का मौसम है तो हम सैलेड, खीरा वगैरह, चलो ये
1: जी
0: तो हर
1: जी
0: मौसम में खाते हैं, लेकिन जो खीरा वगैरह, मूली, ये सारी चीज़ें खाते हैं, तो अगर आप इसके ऊपर पुदीना डालें, या फिर आप ये कर सकती है कि पुदीने को आप सुखा कर रखें,
1: जी
0: इसका
1: बिल्कुल
0: पाउडर बना लें, तो जब पुदीने का सीज़न नहीं है आप उस सीज़न में भी इसका फ़ायदा उठा सकती है।
1: और इसे जो है आप जैसे आपने कहा ना कि स्टोर करके रख सकती हैं, तो बहनों अगर आपने पुदीना सुखा के रख दिया है तो आप बाद में भी कभी चटनी भी बना सकती हैं, और इससे जो है परांठा जब बनाते हैं तो उसमें भी आप इसको डाल सकती है, उसके परांठे भी बहुत अच्छे बनते
0: जी,
1: हैं।
0: और दही तो देखिए हर घर में होती है,
1: जी
0: तो हमारी बहनें रायता बनाती है, तो रायते में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकती है,
1: जी
0: इससे
1: बिल्कुल
0: स्वाद भी बढ़ता है और सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है।
1: जी।

0: महिला सम्मेलन, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। समाचार अगले कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। पहले अर्थात 1 बजे हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार। कीजिए बस कुछ ही पलों का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर श्री मोदी स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
2: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, AI, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुस जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को उचित नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक चलेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से CNG की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी IGL ने CNG की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया।

किया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। टेनिस में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने इटालियन ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। 7वीं वरीयता प्राप्त एलिना ने फाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। आज इटली के यानिक सिनर का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूट से होगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रूली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पर्यटन की बात हो या संस्कृति की, हर मुसाफिर की जो आवाज बनता है, जुड़िए उस आवाज से जो हिमालय की गूंज जैसी है। आकाशवाणी FM शिमला, शुभवाणी लाभवाणी, ये है जन जन की वाणी, आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी FM शिमला का प्रसारण आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब पेश है म्यूजिक मस्ती। जी हाँ दोस्तों, म्यूजिक मस्ती के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो दोस्तों वॉल्यूम बढ़ाइए, अपने मूड को फुल ऑन कीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है म्यूजिक का ऐसा सफर जहाँ रुकना मना है, झूमना, बस झूमना ही जरूरी है।

0: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
1: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
0: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
1: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
3: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
1: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: म्यूजिक मस्ती आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला से। दोस्तों, अब वक्त है कुछ एक्टिवेट करने का खुद को, क्योंकि आने वाला है एक ऐसा गाना जो दिल नहीं सीधे पैरों को नचाता है। जी हाँ, रौनक रंग और रिदम से भरपूर ये गीत है फिल्म क्वीन का। जी हाँ, सुपरहिट डांस नंबर है ये लंदन ठुमकता। ढोल की थाप, पंजाबी तड़का है और मस्ती का ऐसा आलम कि हर कोई खुद को थिरकने से रोक नहीं पाएगा।

म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम में अब रंगों की बरसात नहीं बल्कि होने वाली है मस्ती की बौछार। तैयार हो जाइए इस अगले गाने पर झूमने के लिए जिसने रंगों के साथ साथ एक डांस फेस्टिवल बना दिया है। ये जवानी है दीवानी फिल्म का ये सुपरहिट नगमा बलम पिचकारी, जहां हर बीट पर दिल उछलता है और हर सुर पर थिरकते हैं पैर। देखें जरा।

0: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है, वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
1: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: म्यूजिक मस्ती आप आकाशवाणी FM शिमला से सुन रहे हैं।

0: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
1: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
0: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
1: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: म्यूजिक मस्ती में अब है अगले नंबर की बारी, जो हमने लिया है फ्रॉम द मूवी रॉय।

0: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
1: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
2: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
3: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: फिर से स्वागत म्यूजिक मस्ती में।

0: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
1: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
2: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
3: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी FM शिमला का प्रसारण आप सुन रहे हैं और चल रहा है म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम।

0: म्यूजिक मस्ती अभी आप सुन रहे थे।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।
2: आकाशवाणी FM शिमला का प्रसारण आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 2 बजे हैं, लीजिए अब पेश है सबरंग। इस कार्यक्रम का आगाज एजेंट विनोद फिल्म के इस नगमे के साथ, श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाजें, आइए सुनिए।

ताली, वरना अपना नाम नहीं है बन्ने खां भोपाली। मुन्ने मियां बधाई बनो खूब होनहार, दोनों जहां की नेमतें हो आप पे निसार। हाँ, बचपन हो खुशगवार, जवानी सदा बहार, अल्लाह करे ये दिन यूं ही

0: सबरंग कार्यक्रम आप आकाशवाणी एफएम शिमला से सुन रहे थे।
1: शिमला की वादियों से आपके दिलों तक आ गया है आपका अपना भरोसेमंद साथी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी एफएम शिमला। खबरें, संगीत, संस्कृति और मनोरंजन का बेमिसाल

पर्यटन की बात हो या संस्कृति की, हर मुसाफिर की जो आवाज बनता है, जुड़िए उस आवाज से जो हिमालय की गूंज जैसी है। आकाशवाणी FM शिमला, शुभवाणी लाभवाणी, ये है जन जन की वाणी, आकाशवाणी।

0: आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ आप बने हुए हैं।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में आपको आकाशवाणी केंद्र दिल्ली लेकर चलेंगे दोपहर समाचारों के लिए, प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बताया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
2: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है।
3: मैं एक बिजनेस काउंसिल की सोच के साथ काम करता हूँ, जहाँ लोगों और मीटिंग्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। हर मीटिंग हमारे लिए आगे बढ़ने का एक नया कदम होती है। उनके स्वीडन आने से हमें बेहद खुशी और गर्व है। वे जिन क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं उनकी जल्द घोषणा होने की उम्मीद है। इससे कई उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि इस आर्थिक सहयोग से हमें बेहतर और मजबूत परिणाम देखने को मिलेंगे।
2: इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए संयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, एआई, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए। ये समझौते रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया और विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति में बाधा से विश्व व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता प्रकट की। श्री मोदी और रॉब येटन ने कहा कि हॉर्मुज की खाड़ी से होकर जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही होनी चाहिए और इसे नियंत्रित करने का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नहीं है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस संघर्ष पर भी चर्चा की। वे यूक्रेन समस्या का समाधान बातचीत और राजनयिक प्रयासों से किए जाने पर सहमत हुए। बातचीत के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप जारी किया। इनमें सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, यांत्रिक मेधा और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र के में सहयोग भी शामिल है। दोनों नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए भी साझा रोडमैप जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया।

0: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत के स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
1: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने यह बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। कुछ दिन पहले ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक जहाज पर हमला हुआ था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
2: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
1: श्री अमित शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इनक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन भी किया। वे गांधीनगर निगम के विकास कार्यों का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह गांधीनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड मधुर डेयरी के नवनिर्मित 5,00,000 लीटर क्षमता वाले संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। श्री शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से CNG की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 80.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रुपए और गुरुग्राम में 85.12 रुपए हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी CNG की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की गई थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार महिला स्व सहायता समूहों और स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार स्वयं इन ऋणों की गारंटर बनेगी। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा

0: पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि इबोला का संकट COVID-19 जैसी महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस भी मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। इस बीच पर्वत रानी के नाम से मशहूर लाखपा शेरपा ने भी एवरेस्ट पर लगातार 11वीं बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली नेपाली महिला होने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से डोमिनिका के कलिनागो समुदाय को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मार्गरीटा ने डोमिनिका के कलिनागो क्षेत्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत डोमिनिका के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर आधारित अपनी मैत्री को और प्रगाढ़ कर रहा है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू की स्थिति रह सकती है। मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन भीषण गर्मी की चपेट में है। कल खंडवा और नौगांव में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के 15 शहरों में पारा 43 डिग्री या उससे अधिक रहा। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तेज लू चलने की संभावना है और तापमान 44 डिग्री के पार जा सकता है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। साथ ही दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहने और शरीर को हाइड्रेट रखने की अपील भी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। आज कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। और अब खेल खबरें। IPL क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इधर दिल्ली में शाम 7:30 से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और

फ्रेंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब पेश है शिखरों की स्वर कार्यक्रम। जी हां दोस्तों, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं वीरेंद्र शर्मा। ढोल नगाड़ों की थाप हो या हारमोनियम की मधुरतान, प्रत्येक लोक सुर पहाड़ों का प्यार और संस्कृति का आभार जताता है। दुनिया भर के पहाड़ी प्रांतों के पर्वतीय की होती होगी अपनी पहचान, मगर हिमाचल की सुबहों में जो अपनापन है वो सीधे आत्मा का स्पर्श करता है। यहाँ के हिमशिखर ऊंचे ही नहीं, दिलों की तरह विशाल भी हैं। यहाँ बहती नदियाँ केवल पानी नहीं, लोक गाथाओं और सांस्कृतिक मर्यादाओं को भी साथ लेकर निकलती है। यहाँ के पहाड़ सिखाते हैं कि ऊंचाई पर पहुंचकर भी विनम्र कैसे रहा जाता है। वृक्षों की तरह अडिग रहना, नदियों सा बहते रहना और बादलों की तरह सुकून बनकर हर दिल पर छा जाना, यही तो है शिखरों के स्वरों की खूबसूरती। आगाज कार्यक्रम का इस लोकगीत के साथ। आवाज है कुलराज किशोर भारद्वाज की।

पहाड़ी प्रदेश हिमाचल में सड़कों का दृश्य बेहद मनमोहक रहता है। कल्पना कीजिए उन सोनी सोनी सड़कों की, जहां एक ओर बर्फ से ढकी चोटियां मुस्कुराती हैं तो दूसरी ओर घाटियों में बहती हवा एक मीठा सा गीत गुनगुनाती हैं। ये सड़कें सिर्फ रास्ते नहीं हैं, ये वो धागे हैं जो गांवों को शहर से और दिल को प्रकृति से जोड़ते हैं।

लोक गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम शिखरों के स्वर आप आकाशवाणी एफएम शिमला से सुन रहे हैं। दोस्तों, ढोल नगाड़ों की थाप पर जब लोक गीतों की तान उठती है तो लगता है जैसे पहाड़ भी झूम उठे हों और हर मोड़ पर संगीत खुद मुस्कुराने लगा हो। ये लोक गीत सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि स्वयं महसूस करने के लिए हैं, जहाँ नखरे भी संगीत बन जाते हैं और सादगी भी सौंदर्य। अगला लोकगीत आइए सुनते हैं।

आकाशवाणी एफएम केंद्र शिमला से आप सुन रहे हैं शिखरों के स्वर कार्यक्रम। दोस्तों, भागती जिंदगी से दूर एक आयाम ऐसा भी है जो प्रकृति के उन रूपों को दिल से जीता है जो अक्सर भुला दिए जाते हैं। कल्पना कीजिए, सुबह की पहली किरणें पहाड़ों को छू रही हो, भेड़ बकरियों की मधुर आवाज, हवा की सरसराहट और लोकगीतों की धीमी धीमी दान, ये सब मिलकर एक ऐसा सुर रचते हैं जो विरलों को ही नसीब होता है। जहाँ की हर पगडंडी एक कहानी सुनाती है, हर बांसुरी की धुन में पहाड़ों का संगीत बसता है। इन चरवाहों की मुस्कान सिखाती है कि ये सुरीला सुकून बड़े शहरों की चकाचौंध में नहीं बल्कि प्रकृति के करीब सरल जीवन शैली में छिपा होता है। शेर सिंह जरियाल की आवाज़ में शिखरों के स्वर कार्यक्रम का अगला लोकगीत।

कार्यक्रम शिखरों के स्वर का आखिरी और अगला नगमा समर्पित है उस पवित्र भावनात्मक संसार को, जहां एक ओर माँ का अटूट स्नेह है और दूसरी ओर बेटी के सपनों की कोमल सी उड़ान। और जब इसी भावनात्मक रंग में प्रेम और आशिकी की हल्की सी खुशबू जुड़ जाती है, तो लोकगीत सिर्फ गीत नहीं रहते, दिल की कहानी बन जाते हैं वो। नियामत हुसैन को आइए सुनते हैं आखिरी लोकगीत में।

0: इसी लोकगीत के साथ कार्यक्रम शिखरों के स्वर में आज के लिए बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण। हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
1: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ ही एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार मोबाइल न्यूज ऑन एयर और रेडियो की

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश के 51 शहरी निकायों में मतदान ठीक इसी समय शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है। दोपहर 1 बजे तक की जानकारी के अनुसार शहरी निकायों में करीब 49% मतदान दर्ज किया गया है। धर्मशाला, मंडी, पालमपुर और सोलन नगर निगमों के साथ प्रदेश की 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के लिए मतदान हो रहा है। प्रदेश भर में 449 वार्डों में से 10 वार्डों में पार्षद निर्विरोध चुने जा चुके हैं और 439 वार्डों में मतदान करवाया जा रहा है। इन सीटों पर 1147 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। भाजपा और कांग्रेस के अलावा बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं। नगर परिषद और नगर पंचायतों की मतगणना आज शाम तक पूरी हो जाएगी, जबकि नगर निगमों के चुनावी नतीजे 31 मई को घोषित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार दोपहर 1 बजे तक नगर परिषदों और नगर पंचायतों में हमीरपुर ज़िले में सबसे ज़्यादा 69% से अधिक मतदान दर्ज किया गया, जबकि सिरमौर ज़िले में सबसे कम 18% मतदान हुआ है। प्रदेश में शहरी निकायों में मतदान को लेकर इस बार बुजुर्ग मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला है। कई स्थानों पर 100 वर्ष की आयु के बुजुर्ग भी मतदान के लिए पोलिंग स्टेशन पहुंचे। शिमला जिले की चिड़गांव नगर पंचायत में 100 वर्ष से अधिक उम्र की कौलदासी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ठियोग वार्ड में भी 102 वर्षीय विमला देवी सूद ने मतदान किया। पिछली बार शहरी निकाय चुनावों में प्रदेश में करीब 73% मतदान दर्ज किया गया था। सिरमौर ज़िले में भी नगर परिषद नाहन, पांवटा साहिब और नगर पंचायत राजगढ़ का मतदान शांतिपूर्ण रहा। नाहन से कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने इन चुनावों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को भारी जनसमर्थन मिला है।
1: लोगों में उत्साह है इस लोकतंत्र के महापर्व की। पहले तो मैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और जितने भी प्रत्याशी मैदान में उनकी उनको सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि पिछले दिनों में प्रचार के दौरान नाहन नगर परिषद की प्रबुद्ध जनता का आशीर्वाद और स्नेह मिला, तो इसमें विश्वास नहीं पूरी उम्मीद है कि आज शाम को जो है नगर परिषद नाहन तो आने वाले 5 साल की दिशा और दशा तय करेगी। उसमें कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों को भारी समर्थन मिल रहा है।
0: मंडी ज़िले में नगर निगम के 14 वार्डों सहित 4 नगर परिषदों और 2 नगर पंचायतों में दोपहर 1 बजे तक कुल 52.46% मतदान दर्ज किया गया। इस अवधि में नगर निगम मंडी में करीब 50% मतदान हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की पूरी टीम चुनाव प्रक्रिया के सफल संचालन में निरंतर जुटी हुई है। राज्यसभा सांसद व प्रदेश भाजपा महासचिव डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा देशवासियों से आर्थिक राष्ट्रवाद और विवेकपूर्ण उपभोग के आह्वान ने राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक नई चेतना जागृत की है। एक बयान में उन्होंने कहा कि सोने के सीमित उपयोग और ईंधन संरक्षण से देश का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा और आत्मनिर्भर भारत को अभूतपूर्व गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का ये दूरदर्शी कदम वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 31 मई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। ये सुझाव नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के माध्यम से भी दिए जा सकते हैं। आप 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक से भी सीधे प्रधानमंत्री को सुझाव भेज सकते हैं। सुझाव 29 मई तक स्वीकार किए जाएंगे। थलसेना अग्निवीर भर्ती 2025-26 के तहत आयोजित अग्निवीर क्लर्क और स्टोरकीपर की भर्ती का फाइनल परिणाम घोषित कर दिया गया है। ये भर्ती परीक्षा हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना जिले के युवाओं के लिए आयोजित की गई थी। थलसेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के निदेशक कर्नल श्रीधर

0: राजन ने बताया कि उम्मीदवार ये परिणाम सेना की वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर देख सकते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सायं 6 बजे। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। लीजिए अब सुनिए सामयिक चर्चा। विषय है भारत में एआई संचालित वित्तीय समावेशन। वाचक है पूनम शर्मा।
0: भारत की वित्तीय समावेशन यात्रा एक रूपांतरकारी बदलाव के दौर से गुजर रही है, जो एक मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संयोजन से प्रेरित है। बुनियादी बैंकिंग पहुंच का विस्तार करने के प्रयास के रूप में जो शुरू हुआ, वह एक प्रौद्योगिकी आधारित इकोसिस्टम के रूप में विकसित हो चुका है, जो व्यापक स्तर पर बुद्धिमत्तापूर्ण, समावेशी और वास्तविक समय की वित्तीय सेवाएं प्रदान करने पर केंद्रित है। विशाल डिजिटल फुटप्रिंट, उन्नत एनालिटिक्स और सहमति आधारित डेटा साझाकरण ढांचे का लाभ उठाते हुए दक्षता बढ़ाने, आउटरीच का विस्तार करने और अधिक व्यक्तिगत वित्तीय समाधानों को सक्षम करने के जरिए एआई वित्तीय सेवाओं को डिजाइन और वितरित करने के तरीके को बदल रहा है। वित्तीय समावेशन मुख्य रूप से निर्बल वर्गों और निम्न आय समूहों जैसे कमजोर समूहों के लिए समय पर पर्याप्त और किफायती ऋण के साथ वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है। भारत में ये एक नीतिगत लक्ष्य से डिजिटल फर्स्ट वास्तविकता में बदल गया है। पिछले एक दशक में अंतः पारस्परिक डिजिटल प्लेटफॉर्मों के एक समूह ने वित्तीय पहुंच को नीतिगत उद्देश्य से एक परिमाण योग्य प्रौद्योगिकी संचालित वास्तविकता में बदल दिया है। ये परिवर्तन पहचान, सत्यापन, निर्बाध भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ वितरण को सक्षम करने वाली मूलभूत प्रणालियों पर आधारित है। ये प्रणालियां सुनिश्चित करती हैं कि वित्तीय सेवाएं सभी भौगोलिक क्षेत्रों में सुलभ, किफायती और कुशलतापूर्वक उपलब्ध हों। साथ में वे एक एकीकृत इकोसिस्टम की आधारशिला का निर्माण करते हैं, जो अंतिम मील कनेक्टिविटी और भविष्य के नवाचारों की सहायता करता है। JAM सार्वभौमिक बैंक खातों, बायोमेट्रिक पहचान और मोबाइल कनेक्टिविटी का एक मूलभूत संयोजन है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को एक विशिष्ट वित्तीय पहचान और राज्य से सीधा संबंध प्रदान करना है, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि भौगोलिक दूरी अब वित्तीय पहुंच में बाधा नहीं है। UPI एक वास्तविक समय भुगतान प्रणाली है, जो मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी भी दो बैंक खातों के बीच तत्काल धन हस्तांतरण में सक्षम बनाती है। इसका उद्देश्य छोटे व्यापारियों और व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं दोनों के लिए निम्न लागत, अंतर संचालित और सुरक्षित अनुभव प्रदान करके डिजिटल भुगतान का लोकतंत्रीकरण करना है। DBT प्रणाली के तहत सरकारी सब्सिडी और कल्याणकारी लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किए जाते हैं। इसका प्राथमिक लक्ष्य बिचौलियों को हटाकर पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना है, जिससे सामाजिक कल्याण के वितरण में राजस्व रिसाव और विलंब को समाप्त किया जा सके। वित्तीय सेवाओं में AI के एकीकरण को डिजिटल समाधानों के समर्थन, नियामक नवाचार, संस्थागत पहल और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों से सहायता प्राप्त होती है। इन प्रयासों को जोखिम प्रबंधन और उपभोक्ता संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि ये सुनिश्चित किया गया है कि प्रौद्योगिकी समावेशी बनी रहे। ULI ऋण प्रोसेसिंग में सहायता करने के लिए प्रमाणीकरण सेवाओं, भूमि रिकॉर्ड, सैटेलाइट सर्विस और अन्य वित्तीय और गैर वित्तीय डेटासेट सहित कई डेटा स्रोतों तक डिजिटल पहुंच को सक्षम बनाता है और भारत की वित्तीय समावेशन यात्रा सुविधा बढ़ाने से लेकर व्यापक स्तर पर बुद्धिमत्तापूर्ण AI संचालित वित्तीय सशक्तिकरण को सक्षम करने तक पहुंच का विस्तार कर रही है। उन्नत एनालिटिक्स, वैकल्पिक डेटा और मजबूत DPI का लाभ उठाने के जरिए अब फोकस गहन ऋण पैठ, बेहतर जोखिम प्रबंधन और मजबूत उपभोक्ता संरक्षण की ओर बढ़ रहा है। अकाउंट एग्रीगेटर जैसे फ्रेमवर्क द्वारा समर्थित नियामकों, वित्तीय संस्थानों और फिनटेक के बीच सहयोगात्मक प्रयासों से जुड़ा विकसित इकोसिस्टम एक अधिक पारदर्शी, कुशल और समावेशी वित्तीय प्रणाली को बढ़ावा दे रहा है। जैसे जैसे भारत अपने विकसित भारत 2047 विजन की ओर आगे बढ़ रहा है, AI के

0: नेतृत्व वाला वित्तीय समावेशन सतत आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है, जिससे देश एक लचीला भविष्य के लिए तैयार वित्तीय ढांचा बनाने में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित होगा।
1: सामयिक चर्चा, अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।
3: आकाशवाणी FM केंद्र शिमला का प्रसारण आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए एक बार फिर से चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में, इस बार कुछ पुरानी फिल्मी तराने लेकर। महल फिल्म का नगमा है, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें।

कार्यक्रम में अगला नगमा आपको सुनवा रहे हैं संगम फिल्म से, मुकेश की आवाज है, शैलेंद्र की शब्द रचना, धुन तैयार की है शंकर जयकिशन।

आवाजें लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथी। जावेद अख्तर की शब्द रचना, तर्ज तैयार की है शिवहरी।

आकाशवाणी एफएम केंद्र शिमला का प्रसारण आप सुन रहे हैं और फिल्म संगीत चल रहा है। अब इस कार्यक्रम का आखिरी नगमा आनंद फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं हम। गीत लिखा है योगेश ने और सलील चौधरी की तर्ज है, आवाज़ मुकेश की।

0: इसी के साथ फिल्म संगीत में फिलहाल के लिए इतना ही।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। सुनते रहिए।

0: मुस्कुराते रहिए 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला,
1: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप आकाशवाणी एफएम केंद्र शिमला का प्रसारण सुन रहे हैं। 3:30 हुए हैं। ये वक्त है युवा दोस्तों के पसंदीदा कार्यक्रम का, नाम है युववाणी। आइए सुने कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला का लोकप्रिय कार्यक्रम युववाणी और मैं हूं आपकी अपनी दोस्त सोनिया। और आज हम बात करेंगे युवाओं के सपनों, संघर्ष और सफलता की। दोस्तों, युवा सिर्फ उम्र का नाम नहीं होता, युवा एक सोच है, कुछ कर गुजरने का जुनून है। आज का युवा आसमान छूना चाहता है, लेकिन रास्ते में डर, असफलता और लोगों की बातें कई बार उसे रोक देती हैं। लेकिन याद रखिए, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वही लोग अक्सर मंजिल तक पहुंचते हैं। और इसी खूबसूरत सोच के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

दोस्तों, क्या शानदार गीत था, दिल में जोश भर देने वाला। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में कई बार ऐसा समय आता है जब लगता है सब ख़त्म हो गया, लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो मुश्किल समय में खुद को संभाल ले। नीरज चोपड़ा ने भी संघर्ष देखा लेकिन हार नहीं मानी। तो आइए इसी के साथ सुनते हैं अगला गीत।

दोस्तों, आज का युवा सोशल मीडिया में बहुत जुड़ा है। ये सीखने का मंच भी है और समय बर्बाद करने का भी। अगर मोबाइल आपका समय खा रहा है तो सोचिए, क्या आप अपने सपनों से दूर होते जा रहे हैं? सोशल मीडिया पर लोग अपनी सफलता दिखाते हैं, अपना संघर्ष नहीं। इसलिए खुद की तुलना किसी और से मत कीजिए। हर इंसान की कहानी अलग होती है। भीड़ हमेशा आसान रास्ते पर चलती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि भीड़ सही रास्ते पर चलती है। अपना रास्ता खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो आइए इसी के साथ सुनते हैं अगला गीत।

दोस्तों, हम बड़े हो जाते हैं, लेकिन हमारे माता पिता का संघर्ष कभी छोटा नहीं होता। कई बार हम गुस्से में उनसे बहस कर लेते हैं, लेकिन वही लोग हमारी खुशी के लिए पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं। अगर आज आप अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके माता पिता की दुआएं आपके साथ हैं। माँ बाप की एक दुआ जिंदगी बना देगी। खुद रोएंगे, लेकिन आपको हंसा देंगे। कभी भूलकर भी माँ बाप को मत रुलाना। एक छोटी सी गलती पूरा जीवन सजा देगी। तो आइए इसी के साथ सुनते हैं अगला गीत।

दोस्तों, असफलता बुरी नहीं होती, हार मान लेना बुरा होता है। आज जिन लोगों को हम सफल देखते हैं, उन्होंने भी कई रातें रोकर बिताई हैं। अमिताभ बच्चन को आवाज़ के लिए रिजेक्ट किया गया था, शाहरुख खान के बिना फिल्मी बैकग्राउंड से सफलता हासिल की। इसलिए अगर ज़िंदगी में कभी हार मिले तो खुद से कहना, ये वक्त भी गुजर जाएगा। मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूँ। कल अपनों की तलाश में था, आज अपनी तलाश में हूँ। तो आइए इसी के साथ सुनते हैं अगला गीत।

दोस्तों, देश का भविष्य युवा के हाथ में होता है। अगर युवा सही दिशा में मेहनत करे तो देश दुनिया में सबसे आगे जा सकता है। आज ज़रूरत है अच्छी सोच, ईमानदारी की और एकता की। दोस्तों, सपने देखिए लेकिन उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी रखिए। हर दिन थोड़ा बेहतर बनाइए, क्योंकि छोटी छोटी खुशियाँ ही बड़ी सफलता बनाती है। तो आइए इसी के साथ सुनते हैं अगला गीत।

दोस्तों, इसी खूबसूरत सोच और गीतों के साथ अब मुझे इजाज़त दें। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त सोनिया और आप सुन रहे थे आकाशवाणी FM शिमला का कार्यक्रम युववाणी। फिर मिलेंगे नई सोच और नई बातों के साथ। नमस्कार।

0: युवा दोस्तों के लिए अभी आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम युववाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण।
1: शिमला की वादियों से आपके दिलों तक आ गया है आपका अपना भरोसेमंद साथी 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी एफएम शिमला। खबरें, संगीत, संस्कृति और मनोरंजन का बेमिसाल

0: पर्यटन की बात हो या संस्कृति की, हर मुसाफिर की जो आवाज बनता है, जुड़िए उस आवाज से जो हिमालय की गूंज जैसी है। आकाशवाणी FM शिमला, शुभवाणी, लाभवाणी, ये है जन जन की वाणी, आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी FM केंद्र शिमला का प्रसारण आप सुन रहे हैं 103.7 MHz पर। यह समय है फिल्म संगीत का और साथ ही साथ आप आसपास के शहर शिमला और पूरे प्रदेश हिमाचल की कुछ खास घटनाओं से तवारुफ आपका करवाएंगे। फिल्म संगीत साथ में चलता रहेगा। आगाज कार्यक्रम का करते हैं इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई।

आकाशवाणी एफएम केंद्र शिमला का प्रसारण आप सुन रहे हैं 103.7 MHz पर। और खेल जगत की ओर अब रुख करते हैं। पहले आपको क्रिकेट जगत की ओर ले चलते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 19वें सीज़न का रोमांच अब अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। आज सुपर संडे के खास मौके पर धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में सीजन का 61वां मैच खेला जा रहा है। इस बेहद अहम मुकाबले में मेज़बान पंजाब किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से इस बीच शुरू भी हो चुका है। इसकी ताज़ा अपडेट आपको दें तो मैच शुरू हो चुका है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर इसमें बैटिंग कर रहा है, जबकि पंजाब किंग्स टॉस जीतकर बॉलिंग करने का उसने फैसला लिया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने पहली बैटिंग करते हुए बना लिए हैं 83 रन। एक विकेट के नुकसान पर 7.1 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। बैथल का विकेट 11 रन के उनके व्यक्तिगत स्कोर पर गिर चुका है। विराट कोहली 31 रन और डी पड्डीकल 37 रन बनाकर इस बीच खरीज पर हैं। साथ ही साथ आपको बताएं, आज शाम को 7:30 पर दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स की टक्कर अरुण जेटली स्टेडियम में होगी। ये दोनों ही मुकाबले टॉप फोर की रेस के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं, इसलिए चारों ही टीमें जीत दर्ज कर प्लेऑफ के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करने के इरादे से खेल मैदान पर उतर रही हैं।

दोस्तों, चलते चलते मौसम का भी जिक्र कार्यक्रम में कर लेते हैं। इन दिनों प्रदेश के कई क्षेत्रों में गर्मी का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण दिन के तापमान में बढ़ोतरी महसूस की जा रही है। ऐसे मौसम में हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता तो रहती ही है। अधिक से अधिक पानी पिए, खुद को हाइड्रेट रखें और बाहर निकलते समय सिर को ढक कर भी रखें। हल्के सूती और आरामदायक कपड़ों का प्रयोग करें तथा धूप में अधिक से समय में अनावश्यक रूप से जाने से बचें। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि गर्मी का प्रभाव उन पर ज्यादा जल्दी पड़ सकता है। हिमाचल की यह खूबसूरत धरती हमें प्रकृति की गोद में जीवन का आनंद देती है, लेकिन बदलते मौसम में थोड़ी सी सावधानी हमारी भी बन जाती है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति हम सुरक्षित रहें और ध्यान जरूर दें, अपना भी और साथ में आसपास के परिवेश में भी, क्योंकि 21 मई तक तो प्रदेश के मौसम में साफ रहने की ही संभावना व्यक्त की जा रही है। तो ख्याल रखिए अपना, और इस कार्यक्रम में गीत की तरफ आपको लेकर चलते हैं।

खूबसूरत फिल्मी तराने के साथ फिल्म संगीत में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आज का पूरा सफर आपने तय किया वीरेंद्र शर्मा के साथ। अब मुझे इजाजत, आप बने रहें आकाशवाणी FM शिमला के साथ, अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। हिमाचली बोलियों में सबसे पहले सुनिए सिरमौरी कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी शिमला के साथ साथ

यो गीतों और बातों के कार्यक्रम दे तू सो भी सिर मोरी कार्यक्रम सुनने वालों का आकाशवाणी केंद्र शिमला दा स्वागत हो सो। तो इतलो तू सो भी साथी आओ मनोज आजाद बात करदा विश्व हाइपरटेंशन दिवस के बारे दे। साथी तू सो भी साथी बात करदा जू जैव विविधता ऐसे जरूरी के यो सो। साथी तू सो भी साथी बात करदा कुछ खबरें के बारे दे और तू सब भी सिरमौरी कार्यक्रम सुनने वाले कोई से सुनाऊं बे कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया सिरमौरी लोकगीत। तो सबसे आगे तू सब भी साथी बातचीत कर दे कुछ समाचार के बारे दे जो हिमाचल प्रदेश दा ऐसे 51 शहरी निकाय दा मतदान ऐसे शांतिपूर्वक एतलो संपन्न हो रुआ जो एतलो का मतदान दा से 101 बाजे जाऊँ 49% मतदान दर्ज हो रुआ जो यो वही ऐसे बुजुर्ग मतदाताओं दा ज़्यादा जोश देखने को भेटता लगा के थी 100 सालों से ज़्यादा आयु के लोग से अपने वोट दें दे पोलिंग स्टेशन के पहुँच दे लगे। जिंदे शिमला जिले के चिड़गांव नगर पंचायत 100 सालों से अधिक आयु की कौल दा सीए अपना वोट दिया। साथ ही शिमला जिला के ठियोगवाड़ो दा भी 102 सालों वर्षीय बिमला देवी सूद से अपना वोट दिया। जू जिला सिरमौर दा भी नगर परिषद नाहन पांवटा साहिब और नगर पंचायत राजगढ़ का मतदान भी से इतलो शांतिपूर्वक सफल हुआ। तो अपनी बातचीत तो तू सब भी साथी जारी रोली तो इंदे इंदे साथी तुए सब जुड़े सुनो एक बहुत ही बढ़िया सिरमौरी लोकगीत।

तो तू है सब सुनाए भी चंद्रमोहन ठाकुर की आवाज़ दा है सुख दुख और ताना रोबाना है एक बहुत ही बढ़िया सिरमौरी लोकगीत। तो अब तू साथी अपनी बातचीत जारी थूँ बे अब तू साथी बातचीत कर बे विश्व हाइपर टेंशन दिवस के बारे दे। तो जैसे तू सब भी कोई पता है कि गीत और बातों क्यों कार्यक्रम दे हमें बिच्चो दी बातचीत भी करो। तो अब बातचीत कर बे एक ही ऐसी बीमारी ऐसे विषय के बारे दे जो हमारे शरीर के सुले सुले नुकसान पहुंचाओ। और कई बार तो देखने को बैठो जे ज़्यादातर आदमी को इंदे का पता भी नहीं होता। तो इंदे को ना हो ऐसे उच्च रक्तताप या अंग्रेजी भाषा दो हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन भी बोलो जो जो हर साल हो ऐसे 17 मई की तारीख दो विश्व हाइपरटेंशन दिवस मनाए जाओ। जो एतलो सो जो यो दिवस मनाने का लक्ष्य से भद्दे लोग यो बीमारी के प्रति जागरूक करना सो जो एतलो की भाग दौड़ भरी जिंदगी दे लोग ना तो अपने खान पान का ध्यान थो दे लोगों के तनाव तो भी इतना ज़्यादा रहा बढ़े कि पहले के ज़माने दे तो ऐसी बीमारी सिर्फ बूढ़े लोगों दी देखने को बैठो थी। लेकिन एवे ऐसा ज़माना आया जइयों बीमारी की चपेटों दे से युवा भी आए लगे और तभी तो इंदे की जानकारी होना से बहुत ज़रूरी हो सो। जो हाइपर टेंशन है से एक ऐसी बीमारी हो सो जब हमारे शरीर दा बढ़ने वाले खूनों का दबाव से सामान्य से ज़्यादा देखने को बैठला। जो खूनों का सामान्य रक्तचाप है से 120/80 माना जाओ जे ऐसा रक्तचाप लगातार 140/90 या इंदे से ज़्यादा देखने को बैठला तो इन देखे से ब्लड प्रेशर या हमें आम बोलचाल की भाषा तो जैसे बोला भी एज ए बी पी रुआ बॉडी।

यूँ हाइपरटेंशन के कारण से शरीर का काफ़ी नुकसान है, ऐसो को जिंदे का प्रभाव से हृदय, मस्तिष्क और हमारी गुर्दे या हमारी आँखों का भी देखने के बैठ सको। जो यूँ उच्च रक्तचाप है से साइलेंट किलर के नाव से भी जाना जाओ। जिंदे का मतलब से ऐसी बीमारी हो सो जो आदमी सुले सुले ख़त्म करो, क्योंकि इंदे की शुरुआत लक्षण से आदमी कोई पता ही नहीं लगते। सालों सालों जाओ आदमी कोई पता ही नहीं होता कि तीनिए ऐसी बीमारी भी हो सो तीन दी, क्योंकि जे ऐसी बीमारी शरीर दिए कि भाई बड़े बीमारी नहीं होते, आदमी छोटी मोटी बीमारी है से नज़रअंदाज करो। जिंदे के कारण तीन ही एक ही बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ो, बल्कि एक ही आदमी दे इंदे के लक्षण से देखने के बैठ जैसो कोसी के शिरो हत लागो या कोसी के चक्कर आओ, जो शरीर दी थकान महसूस हो, एक आदमी की सांस फूलो या एक आदमी के देखने को बैठो जे आदमी घबराहट महसूस करो, एको के छाती दी दर्द हो या एक आदमी के आँखी कोई से कभी कभी धुंधलो धुंधलो देखियो, लेकिन इन्हीं सब भी लक्षण लो इंदे का पहचान से बड़ी मुश्किल सो। इंदे की पहचान करने का सही तरीका से रक्तचाप के जांच करना ही सो। तो एबे सवाल है जसो जे यो बीमारी के होने के कारण का हो सको, तो हमें ऐसा बोल सको जे ऐसो एक आदमी की ज़्यादा ही खजल जिंदगी जीने का तरीका हुआ, या एक आदमी ज़्यादा ही खरो खाओ, एक आदमी ज़्यादा ही तोड़ियों दी चीज़ों खाओ, या कुणिए ज़्यादा ही धूम्रपान या सुरों का सेवन करो, एक आदमी सुतनों के टाइम कम दियो, एक आदमी अपने शरीर कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार हुआ जितके उदय उबे बेजनों के भी सासे हुआ पड़े होंगे। साथ ही इंदे के अलावा से कोसी के ज़्यादा ही मोटापा या कोसी दी शुगर की बीमारी हो या कोसी के परिवार आगे से पुंडे ऐसी बीमारी हो, तो इंदे की वजह से भी यो बीमारी बढ़ने का खतरा ऐसे ज़्यादा हो सको, क्योंकि एतलो की दुनिया दे लोग इतने व्यस्त सो जिंदे के कारण से अपने शरीर का ध्यान से दे नहीं सक दे। जो एतलो ऐसे आदमी रात रात भरे मोबाइल पांडे या कंप्यूटर पांडे और निंदे रुओ, साथ ही बाहर का खाना खाए और अपने शरीर के थोड़ा भी कष्ट ना देने की वजह से आदमी अपने ठाँव दे पड़ो पड़े होंगे रू, और जो आगे आदमी के बीमारी का कारण से बन सको। जो ऐसी बीमारी से बड़ी खतरनाक बीमारी सो, क्योंकि यो बीमारी के कारण से आदमी दे हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक या किडनी फेल होने के साथ भी आँखों की रोशनी की कमज़ोर हो सको। लेकिन बढ़िया बात है जो सोजे थोड़ी सी भी सावधानी अपनायो, यो जीवन तरीका सुधारियो या यो बीमारी से बचनों की ताइए आमो खान पान का ध्यान थोड़ा पड़ला, खाने दे नमक की मात्रा कम करनी पड़ली, हरी सब्जियाँ खानी पड़ली, फलावल खाने पड़ली, साथ ही पौष्टिक भोजन का सेवन करना पड़ला। जो ज़्यादा तोड़ियोंदी चीज़ है या मसाले वाली चीज़ है से भी कम करनी पड़ली, रोज़ अपने शरीर के व्यायाम करो, कसरत भी जरूरी हो सो, कम से कम रोज़ आधा घंटा हांडियो जाना पड़ लो, साथ ही आदमी योग कर सको, जो तनाव ऐसे कम करना पड़ला, क्योंकि एतलो हर उम्र के लोगों का ऐसे मानसिक तनाव देखने के बैठता लगा, क्योंकि एतलो आदमी हर छोटी छोटी बातों से दिलो एक आदमी ज़्यादा ही गुस्सा करो जो कि शरीर कैसे हानिकारक हो सो। हमें सब जुड़े एक बढ़िया सोच अपनायो, अपना टाइम से बढ़िया जगह व्यतीत करो, अपना शरीर बचाए सको। इंदे के साथ साथ नियमित जांच भी से बहुत जरूरी हो सो, क्योंकि कई बार इशू हो जाए जितिए लोग डॉक्टर को ही जाओ तितिए बीमारी से बड़ा बड़े बन जाओ, जिंदे का इलाज तो वह बड़ा मुश्किल हो जाओ। जे टाइमो टाइमो गशी आदमी अपने शरीर की जांच कराला तो यो बीमारी का पता ऐसे आसान हो जाओ। खासकर ए जब एक कोसी आदमी की आयु 30 साल हो जाओ तो इंदे के बाद सब भी आदमी के रक्तचाप की जांच कराना से बहुत जरूरी हो सो। जो विश्व रक्तचाप दिवस या हाइपरटेंशन दिवस का मुख्य उद्देश्य से ऐसा ही हो सो जब भाद्य लोग अपनी सेहत की ताइए जागरूक से हुए, साथ ही टाइमो गशी अपने शरीर की जांच करा ले, क्योंकि ऐसा ही जीवन से सबसे बड़ा धन हो सो। जे आदमी का शरीर और स्वास्थ्य ठीक होला तब तो इसे भाद्य काम कर सको।

तो एबे आओ एति बोल्नु चाहूँबा जे जो यो बिमारी से डर्नक जरूरत थिने, बल्कि यो बिमारी का सामना समझदारी साथी करना पड़ला। जोड़ी भी इंदेशी आगे मुझे बात थी करे तिने का ध्यान थोड़ा पड़ला। तो एतला आमे सब ये जरूरत सो स्वस्थ जीवन तरीके अपनाने के साथी इंदे के प्रति ओकी लोगों के जागरूक करने के जरूरत सो साथी सो बिशी जरूरी टाइम टाइम दे अपने शरीर की जांच करने से सो बिशी बड़ी जरूरत सो। तुम साथी अपने बातचीत तो जारी थोबे, इंदे साथी तुम्हें सब बेजुने सुनो एक बहुत ही बढ़िया सिरमौरी लोगी।

का निर्माण कर, क्योंकि जुइयों धरती घासिया से जीवन का संतुलन से तब बनस को जे एजे भाद्दे यो धरती घासी एक साथी बने रोले जे हमें अपने आसपास देखो तो हमें पाओ जे हमारे आसपास ऐसे बाते बाते के पेड़ फूल पक्षी और जीव जंतु देखियो एको जांगड़ा दे रुओ एको पानी दे रुओ एको गणे देर उड़ो, क्योंकि यो प्रकृति का शिये से सब बिखे अपना अलग अलग काम था दे और ऐसा ही कारणों सो जे यो धरती का शिये से जीवन जीवन संभव रहा है। तो तू सब भी साथी आओ जो बोलना चाहूँगा जे जय विविधता से हमारे जीवन के बहुत जरूरी हो सो, क्योंकि इंदेशो ये अमुख है खानों के भी बैठो, क्योंकि जय विविधता का संतुलन बिगड़ जाला तो खानों की भी कमी हो सको, जय विविधता शो ये अमुख है पीणो जुगो पानी भी बैठो साथी खाण जुगो नाज भी बैठो। यो जय विविधता के कारण ही पेड़ पौधे शुद्ध हवा भी दियो जिंदे के कारण आमुखे सांस लौणोखे ऑक्सीजन भेटो। जो यो धरती का शिये से सब कुछ बहुत जरूरी हो सो, जैसो जे जांगल चौकी जाले तो धरती का शी से बारिश न होंगी, जे बारिश न होले तो नदिया नाले से भाद्य सूख जाले, जे ऐसे भाद्य नदी नाले सूख जाले तो आम सब भी खे ना पेड़ों के पानी भेटते ना आम फसलें उगाणों के पानी भेट लो ना ही खाणों के आम फसल भेट ले, तब यो जय विविधता का ऐसे बना रहना बहुत जरूरी हो सो। तो इंदे के अलावा कोई दवाइया भी से पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों से भेटो, जो आयुर्वेद दाए से कई प्रकार की बीमारियों का इलाज भी प्राकृतिक चीज़ों से वो थिया, जे हम प्राकृतिक चीज़ों ही खत्म करवे तो आने वाले भविष्य के ऐसी दवाइयाँ बचाए थोड़ा बड़ा मुश्किल हो सो। जो जैव विविधता ऐसे खेती करने के भी बहुत जरूरी हो सो, क्योंकि मधुमक्खी से खेचो से फूलों का रस इकट्ठा करो, जैव विविधता साथ ही फसलों के उत्पादन में भी मदद करो, जो गोयने दे उड़ने वाले पक्षी ऐसे खेचो दे जोड़े भी हानिकारक कीड़े मकोड़े खाए ऐस दे से अपने आप एक संतुलन बनाता रहो। लेकिन जो दुख की बात से ऐसे सो जे जो एतलो जे विविधता से खतरे के निशान दे सो, क्योंकि एतलो जनसंख्या का बढ़ना जंगलों का कटना प्रदूषण का बढ़ना से यो प्रकृति के नुकसानदायक सिद्ध होने लगा, क्योंकि इन्हीं सब भी कारणों की वजह से कई जानवर साथी पशु पक्षी भी विलुप्त होने लगे। जो जे ऐसने ये वातावरण ऐसा से माहौल रोला तो आने वाले समय दाए जो आने वाली पीढ़ी उस से तिनी एक ही पशु पक्षी की या जानवरों की फोटो से किताबों का शी देखने के बैठ सको, क्योंकि तिनी जाए जे रोंदी ने जो जलवायु परिवर्तन से भी एक बहुत बड़ा कारण सो जिंदगी वजह से जैव विविधता से परिवर्तन देखने को बैठता लगा, क्योंकि एतलो ऐसे मौसम बिन मौसम बरसता लगता, कभी है ज़्यादा ही गर्मी पड़ो कभी ज़्यादा ही शोड़ो पड़ो, कभी के थी ज़्यादा ही बारिश हो कभी के थी ज़्यादा ही सूखो पड़ो कभी के थी ज़्यादा ही बाढ़ देखने को बैठो, जो कि एक जैव विविधता के चिंता का कारण सो। तो ऐसे सवाल है जासो जैव विविधता से कैसे बचा सको, सभी आगे तो यूँ जैव विविधता बचाने की तय हम सब जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लाने पड़ रहे, क्योंकि जो पेड़ पौधे ऐसे सिर्फ पर्यावरण के बचाना है और बल्कि पेड़ पौधे से अनेक जीवों के घर भी बसाओ। दूसरा तरीका से ऐसा सोचे प्राकृतिक संसाधनों का से कम उपयोग करना पड़ला और फालतू का उपयोग अशी से रोक लानी पड़ ले। तो ऐसे बात से तुम सज्जारित हो बेइंदे साथी तुम्हें सब बजुने सुनो एक बहुत ही बढ़िया सिरमौरी लोकगीत।

तो तुए सभ्य सुनाए भी ब्रह्म दत्त और साथी की आवाज़ दा बहुत ही बढ़िया सिरमौरी लोकगीत। तो तुओ सभ्य साथी एवं बातचीत करवे जय जय विविधता से जरूरी के यसो। तो जैसो तुओ सभ्य को ईसो जाने रही लो जय एजे जय विविधता असो का है। मानो कि ए जो शब्द से सुन नखे से अलग असो, लेकिन इन्हें का मतलब से बहुत आसान है। जे आसान शब्द तो देखी तो हमारे आसपास जोड़े भी पेड़ पौधे पशु पक्षी जानवर कीड़े मकोड़े जीव जंतु से बाध्य जुड़े मिले जैव विविधता।

नमस्कार जी, कार्यक्रम महाशून्य तुम बद जनरा आ तुम्हारा दोस्त तुम्हारा साथी संजय पांडे तुम्हारा खूब स्वागत करूँ। बुध शुक्र त्वारे चंदेश हफ्ते हमें जो तुम दो मिल सकूँ। एक थोड़े से बात तुम दो एर को नहीं थी, ये देखो आज ते थी त्वार भी हो प्रतिपदा जो देश सुना हिचकू अमावस्या एक बसो दे देश आज वट सावित्री व्रत जस रे या जिनी रे करवा चौथ व्रत जो नहीं कर दी जनाने से ऐसा व्रत कर सको वट सावित्री शनिश्चरी ही जो था शनिश्वरूप थी या अमावस्या को होवे ऐसे ही मिनाई जो है मिशो जिठो जा तो तुम्हें ऐ कर सको।

वाह जी वाह, हाय हाय ज़माना सिंगिया, बड़े थारे नाटे भी हमें शुणे एवं कें खास खास जी खबरें तुम्हारे तई को प्रदेशों दे जो शहर निकायो ते ते बोटो आद ची मजे तई क पौड़ियों जी दोपहर एक ही बजे तई क 49% मतदान या मोटो पौड़ियों प्रदेशों दे धर्मशाला मंडी पालमपुर सोलन नगर निगमों साथे 25 नगर परिषद तोई 22 नगर पंचायत दी बोटो पड़ी जी प्रदेशों दे 449 वार्ड मजे दोष वार्ड पार्षद जो है निर्विरोध अजय जी नगर परिषद नगर पंचायत वरी मतगणना आज फ्री तई पूरी जानियो नगर निगम चुनाव रे नतीजे कत्यो मोईक जी घोषित होने खास करियो इंदे बुजुर्ग मछे खास उत्साह दिखाया जी कोई जगह दे शोए बशोदो जादरे बुजुर्ग मछे भी वोट दे शिमले जिले रे चिड़गांव रे नगर पंचायत दे शोए बशोदो जादी उम्र आए कोड़ी दासे वोट दे दूजी जीओ ठियोगो रे वार्ड रे 102 बशोरी बिमला देवी सुदे भी अपने वोट दे छी। अगली खबर सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रे कोतियो मोईक आकाशवाणी दो मन की बात कार्यक्रम रो पांक अपने विचार रखने हो ए मासिक रेडियो जो कार्यक्रम हो तेरी 124 कोड़ी ओसो जी तुम्हें एक तक अपने विचार सुझाव रख सको एना टोल फ्री नंबर सो 1800117800 या दूजी भी तो एंगेन एना थो नरेंद्र मोदी ऐप या माय गो ओपन फोरम गेम भी अपने विचार सुझाव रख सको तुम्हें केर चाहो दिशो दो केर उन चाहिए एंगे तुम अपने विचार दे सको या एर कोरे 1922 गए 1922 गैर मिस्ड कॉल दे साथी जो SMS तुम्हें आना तेंगे लिंक गैरा अपना विचार सुझाव दे सको ए 29 मई तई क स्वीकार उन्हें अगली खबर हो थल सेना अग्निवीर भर्ती 2025-26 की जो परीक्षा इम्तिहान थिया तेरा रिजल्ट आगुआ इम्तिहान अग्निवीर का क्लर्क स्टोर किपरोड़ी भर्ती को थिया ए भर्ती रा इम्तिहान हमीरपुर बिलासपुर तई उन्ने जिले रे छोटर तई हुआ थिया थल सेना भर्ती मतलब आर्मी री भर्ती रा कार्यालय हमीरपुर रे निदेशक कर्नल श्रीधर राज ने ए बोलोजे ए उम्मीदवार अपने परिणाम मतलब रिजल्ट सेना रे जो वेबसाइट सो joinindiaarmy.nic.no गेरा देखी सको एत तो कि खास खास खबर जी एवं एक बात मारे शास्त्र बोलो हर एक वनस्पति औषधि हो वनस्पति मतलब खौड़ बिल्कुल जी ऐ रे ऐ धरती गया कि चीज नहीं देना कि काम नहीं आते हाँ ऐ अलग बात हो जाए चलो मारा बुद्धे या हम मारे समझ नहीं आते जो हर एक हमें औषधि वनस्पति समझ सकूँ पर रसायन माड़ी चीज़ नहीं रसायन और आयुर्वेद रा मिश्र नहीं पा काम धंधा चालो ही जो

बिल्कुल जी अलगे बे घुमकुए नाटे भी हमें शुणी एबे एक तकनीकों के बात करनी जो आज ही जो बिके बुली जब खूब गांव क्या गयो AI आर्टिफिशियल तकनीक मतलब कृत्रिम बुद्धिमता। एबे तो ये समझाऊ से रुजे कृत्रिम बुद्धिमता मतलब मशीन एरे जो मछो जेरु सोचो। बिल्कुल जी ठीक हो जरूर हमें सोचू तिर तेस मशीन ने सोचनू और जरूर हमें करूँ तिर तेसरे करनो इन्हें लाभ किए आने का। देखो जरे मछोरे स्पीड हो काम को तेन दो ज़्यादा स्पीड दो काम करो ए आर्टिफिशियल तकनीक ठीक हो। सेकेंड ओदी कोई डाटा री जानकारी इकट्ठे कर सको। बिल्कुल जी सेकेंड ओदी जिन्हें हम करने के बिगड़ टाइम लगो या समझो जो कोई देश देशों का पूर्व तिन्होंने से किए मिनटों दूसरे कुट करनो का मशीने बिने किए गड़बड़ करियो स्टीक काम करो मतलब हम मछ दी गड़बड़ सको उन्हीं से सो मशीन रा काम बिल्कुल ठीक होना क्योंकि AI रा काम ही रहा और बिने खड़ियो भी 24 घंटे काम कर सको AI तकनीक और माछ पूरा खड़ो एक मारा धंधा हो दायरा हो 6-7 घंटे बोरी काम क्यों तो पूरा खड़ो माछ जेथा माछ नहीं डे सकता तेते एडे सको काम कर सको। क्या चीज़ अंतरिक्ष अंतरिक्ष तुम्हारा रोबोट है सको तिंदु काओ केरो इन्हें पता लग सको या कोई जगह दे खतरनाक जगह हो जो तू बमती हो माछ नहीं रख दे बम डिफ्यूज एयर रोबोट AI रोबोट कर सको। समुद्र इतने समुद्र हद गहरी जानकारी तेरे तीन नहीं डे होंगे ते तक डे सको जानकारी स्रोत इकट्ठे कर सको मतलब अरे आज ही जो किए चीज़ नहीं आते जो नहीं कर सकते हर चीज़ कर सको पर घाटा का घाटा इंदा आड़ा ऐसा ही कर सको हम तेड़ी जानकारी दे सको जो इंदा हमें डाटा डाल सकूँ मतलब जो इंदा डाटा बड़ा दो ना सब कुछ बुरा दो हमें सही डाल सकूँ।

बिल्कुल जी, ये भी सुना मैं रेणु भारद्वाज और तिन्होंने आवाज़ अदाज दा बड़ा बढ़िया लोकगीत नाटे पे। हाँ मैं अभी तो ही बोलूँ अब ड्यून ड्यून दे एक गल बात है, अरे जरूर बस लगो या बे कहीं शुरू हुआ नहीं बरखा होली तो प्राकृतिक बोली तो इंगे खेती सके अरे कौन नहीं गो गाँव रो गाँव चारा गोबर कोटो क्यू ऐ रे स्प्रे करने। बिल्कुल जी ऐ रे स्प्रे करने और पास्टी भी मजबूत भी ग्रुप करो और जोकड़ा रंग भी थोड़ा फसले दा और तुम्हारे सिवा देता ऐ गोले बात तो संग है अपने दोस्तों तुम मुझे जाजत बंदे सुनने आए तुम थोड़े के मेरी जी राम राम।

अभी आप सुन रहे थे महास्वी कार्यक्रम आकाशवाणी शिमला से। लीजिए पेश है किनोरी कार्यक्रम।

विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पंग मनेस मदे जो खास त्यारो पंग मनेमो मकसद जो हाई ब्लड प्रेशर या दोग हाथीनू ना ब्लड प्रेशर बॉडी नीच निमा देरंग मीनू जागरूक लाला लोलो जुपंग कामलानो वक्तु देन दोक जुपंग शेष जु टोदू धामलानो तो मदे वैसी जु द्यारोपंग जो ओमस्ता सापमई निश हजार गाम्या मोनेने विश्व उच्च रक्तचाप लीग रिंगो दुनियो देन पनीजो गा राष्ट्रीय उच्च रक्तचाप समाजो रंग संगठनों नु इत खास हिस्सा दू मदे दोम्या जुपंग निश हजार टुक म्या सदे बोशंग तांगेस 36 मई म्या मोनेमु फैसला लाला निश हजार टुक म्योक्षनिपी तोरोस्तंग सदे बोशंग विश्व स्वास्थ्य संगठन रंग चिकित्सा दोक समोनु माजो जुगो एके हाचीस जुपंग साल्यो दू मदे वाइसी जुद्यारोपंग मोनेमु खास मकसद दुनियो देन इत अरबोजली बॉडी मियोनु जो ब्लड प्रेशर दू मदे दोक जो इरेन ख्यांता इ जोरियो बातंग तो मदे जोर्ज इरेता नेमली मान्यो भाई कि आऊं जुटो तो आमा इरेता दोक ब्लड प्रेशर जांच लानोली मालानो मदे हदेसी जुद्यारो म्या मीनू जागरूक लानो तो मदे जो द्यारो म्या किशा से किनु मीनू लोलो जुसु जांच लानिक श्याम दे आई मो किमो चई पेरानुली जू टोदिस तो खुन कशानु बोसे मिक श्याम दे जो तादोक जू बारे किनोनु रिंग तक भाई कि जू टोदिस किशा हाले बोसे शु वैसे जो ओम सादो खुन खौ कुमो छापंग गाटो लानिक श्याम दे गाटो दोक छा शिशे दोक जुपंग काम लानिक श्या दोग जू स्कैन ता कशानु दोग जू ब्लड प्रेशर दोग कम हाचो बातंग मदे दंसी दो इदी जागो मातोशीस ते मास निजा मिनट या निजो से मिनट संग व्यायाम योग लन्निक मदे जूरंग एके गुई लायो माजो किशानु युन्नोली होताई जरूरी तो मदे बाईसी दो खातना जोरी लांतो दोमीपंग बीपी या दोग ब्लड प्रेशर दोग बदे तोई मदे हदेसी किशानु मो जीवनु कुमो किशानु योग परंग ध्यानु दोक इत कशानु जीवनु हिस्सा लल्लन दंसी ऐसा ची निद्रंग उन उन जुपंग गाटो लानिक्स्या मदे बाईसी दोक आई नशा ता कतई माला निक्स्या दोगी किशा निरोगी हाजिशु मदे बाईसी दो आशा लंत किनो से की ली मो जू जीवनों को मो जो टोदन दोच तो कुवार क्यों नहीं मोतांगेस योग व्यायाम देश के लंतीच मरे मानिया भाई से पछता भाई से तो क जो बातंग दुं युम्सी कशा तो खुन सांदा गो पनाली शते श्रीमती देचन युम्नेगी जी स्लांशी जो कि थों किनो रंचीज़

वातंगतोमदे विशेषज्ञ असली हुजू बातंगुदेन आनु अध्ययन लानोमदे दोगजू हासली खेसी हाचमो ठ बातंगीस हाचोदू जुली दोक आनेगो अध्ययन कुमु लानो दंगसी जुली रिमो बाई की जानेकंग लाला जू सिष्टि पंग चालेमो तांगेस भगवानीस जू हालिंगा किसानु मिलुकु जीवन लान लान हजेस तो कुन बातंगो निमा तांगमा सृष्टि हाले चाले तो रिंगो बाई से विशेषज्ञ रिंगो दु बाई कि पनी जो जू फीस दी जू हालिंगा जू जोड़ी गोता जुगो नुकुमो खेंता बातंग मारंचुमो बजे टाइम बशीत इतरंग आयदु बातंग मारंचिमिक टेक्चा जोड़ियो नुकुमोता आनुई बातंग लोनो पायाशीत मदे आईदोक आईदूस्या मारंचो टेक्चा मनरिंगजोता आंग युमे हजेस रिंगो आंग आपा हजेस रिंगो हजू बातंगो दोखुन छोंगमी पंगलोदोन्यो देरंग बनरिंगजोली आनु आमा बोमानु बातंगो नु रंचमु म्योमदे दंसी विशेषज्ञ स्पायशीत बाई कि जाने कंग ओम्स बसोता हुन किसानु मदे हाथु निमाली युम दो मदे मनरिंगजो नु महुन निशिनु कुमो दोखुन ख्यांता वाल दो खुशी स दो नीमो पचो मदे मेसंग मेसंग दो खुन जुगो दो खुन जुजोड़ कोमो हुन दो मदे किमचु कोमो हुन बातंगो हुन हाचिरी हाचिर जुस दो आनेगो खेची हाचमो पचो मदे बाईस ख्यांता मन रिंग्स दिता आनेनु ख्यांता जांगचु मेटंग शोठेठे आयदु किमो बबनीस मदे देरंग दो छोंगमी पंगली बाई सुनचनी श्या मदे जुगोनु मो हुन गोयनी पंग हुन ऐसा सोमजे जे दामकिस जीवनु बितेमिक मानिया बाईसे ख्यांता हुन इत कशानु हुन फाइलोचु कहावत दीदु बाई मो बन बनु रा दोक राचु राचु रिंगमा दो इचू रंग बराबर निसिंगो आई हुन आयदु मन बनी सृंग शीत इचूर श्या राचू रंग बराबर निसरिंगो मानिया दे दोग बाई सी काचता कशा हुन जू जाने कंगो दोक हला दोक कशा सुखी लानते जू तांगेस किसानु दोक हुन निशी जोड़ियो नु कोमो दाम ताल में लानो जरूरी तो मरे ठूलन्ना हुन निशी नु ब्यासंगो खेची खेची निस मरे हालिंगाना इत हुन गिथो लानस्या कलाकार निस इत्स्या इंजीनियर निमा निशीनु कामंग खेची तो मरे निशीनु इतरंग आयदु ग्यामिक देन या दोखुन ब्यासोनु दोक कशानु ध्यानो ताता हुन ने थालान या ने थालानिन मालोलो निशीनु दो इतरंग आयदु ब्यासोनु तारीफ लान्निक्स्या मरे इबरंग हुन किमचुकोमो ठतली बातंगो हुन लोशिमा मदे हुन किमचुकोमो हुन एके निमो निपीता कशा हुन लोशिमी खाची दी हाचित मदे देरंग दो खुन किसानु ख्यांता इत्स्या हुन अरोशंग तांग तांग निमा आयदु स्या चुरकंग निमिस्या मदे जोता दोक इतरंग आयदु कामोनु एके हाचिस लान्निक देरंग गतिक तोक या गठुलान तक हाचिस बातंगोनु नेश्यन्निक मदे दोगी किशा मो किमचु हुन स्वरक रंग बराबर लाइशो मदे कास्ता बाईसे दोक हुन किशा से किली इतरंग आयदु हुन कामीगोनु मातोतो वाली दाम जिंदगी पंग शते मदे तो बाईसे जु बातंगो युमसी तुरुकसु खास खास खबर सारली किनो रंचिचनियो बाईसे प्रदेशो निशनिजो सहित शहरी निकायोनु मतदान दोक दाम किस हाची शिष्ट मदे लाए ईद बजे संगजु जानकारियो शहरों ते माज निशनिजाओ स्वस्गुई फीसदी मतदान दोक दर्ज हाची सरिंगो प्रदेशो दो हुन शहरी निकायों नु मतदानु ख्या ख्या तोलिंग बुजुर्गों नु मतदाता गो हुन उन्माजो वाली खुशी देगेरिंगो टिक्चा जागानु ता इतरा बोशुंगु बुजुर्गों से मतदान लाइशीद शिमला जिलो चिड़गांव नगर पंचायतो इतरा बोशुंगुच दी बोदी उमर से कोलदासी जीस आनेनु मतु अधिकारु प्रयोग लान लान दंगसी थियोग वाड़ो स्या इराव निश बोशुंगु बिमला देवी सू जीस आनेस मतदान लाइशीद
बाईसी सिरमौर जिलौली नगर परिषद ना

पाउंटा साहिब रंग नगर पंचायत राजगढ़ ले मतदान वाली धमकी साजी सिद्धियों हदंगी मंडी जिलौली नगर निगमो सप वाड़ो रंग एके प नगर परिषदों रंग निश पंचायतों नु लाए निष्पजेस्तंग एको निशनिजो सोनिश दशमलव प रंग टुक फीसदी मतदान हाचिस रिंगो दवाई से आई खबर तो थल सेना अग्निवीर भर्ती निश हजार निजो गा रंग निजो टुकसु तहत हाचिस जो अग्निवीर क्लर्क रंग स्टोर कीपरु जो भर्तीयु परिणाम घोषित लाला रिंगो जो भर्ती परीक्षा हमीरपुर बिलासपुर रंग उनाजिरो युवाओं तांगेस आयोजित लांशी तोज थल सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर सु निदेशक कर्नल श्रीधर राजन जी स्लोशीर की उम्मीदवारों नु जो परिणाम सेना वेबसाइट ज्वाइन इंडियन आर्मी .in.ic.dn ली ख्यामो सकेतो रिंगो दवाई से जुता तो केत रुकसु खास खास खबर सार पछताते माँ बेरंग बेरंग किशा गोपनाश्यति रंचिच बाई से जुगी थंग।

किनोरी कार्यक्रम अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है लोकगीत। आइए पहले सुनते हैं अर्जुन गोपाल के गाए इस लोकगीत को।

0: लोकगीत अभी आपने सुने। हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं, कृपया हमारी अगली घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिमला। अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आप डीटीएच सेवा, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और आकाशवाणी एफएम शिमला से भी सुन रहे हैं।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अभी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश के 51 शहरी निकायों में मतदान आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। आज नगर निगम धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी सहित 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों में वोट डाले गए। मतदान प्रक्रिया पूरा होने के साथ ही 1147 उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में बंद हो गया है। नगर परिषद और नगर पंचायतों के लिए डाले गए मतों की गिनती जारी है और देर रात तक सभी नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा नगर निगमों के चुनाव नतीजे 31 मई को घोषित किए जाएंगे। भाजपा और कांग्रेस के अलावा बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार सिरमौर ज़िले में शहरी निकायों के चुनाव के लिए कुल 67.24% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। नगर परिषद नाहन में 67.39%, पांवटा साहिब में 65.87%, जबकि नगर पंचायत राजगढ़ में करीब 78% मतदान दर्ज किया गया। शिमला ज़िले में नगर परिषद व नगर पंचायतों के चुनाव में 77% से अधिक मतदान हुआ है। हमीरपुर ज़िले के नगर परिषद सुजानपुर में 77.88%, जबकि नगर पंचायत भोटा में 83% से अधिक मतदाताओं ने वोट डाले। प्रदेश में शहरी निकायों में मतदान को लेकर इस बार बुजुर्ग मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला है। कई स्थानों पर 100 वर्ष की आयु के बुजुर्ग भी मतदान के लिए पोलिंग स्टेशन पहुंचे। शिमला ज़िले की चिड़गांव नगर पंचायत में 100 वर्ष से अधिक उम्र की कौलदासी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ठियोग वार्ड में भी 102 वर्षीय विमला देवी सूद ने

0: मतदान किया। पिछली बार शहरी निकाय चुनावों में प्रदेश में करीब 73% मतदान दर्ज किया गया था। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिले में सराज विधानसभा क्षेत्र के गाड़ा गुसैनी और बगड़ा थाच में पार्टी समर्थित जिला परिषद सदस्य के पक्ष में प्रचार किया। उन्होंने दावा किया कि सराज विधानसभा क्षेत्र के सभी जिला परिषद वार्डों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की जीत होगी। कांग्रेस सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का 3.5 वर्ष का कार्यकाल निराशाजनक रहा है और इस अवधि में केवल संस्थानों को बंद करने का काम किया गया है।
1: आने वाले समय में एक साल के बाद जब चुनाव होगा विधानसभा का, तो हिमाचल प्रदेश में सरकार भाजपा की बनेगी और प्रचंड बहुमत के साथ, और ऐसा बहुमत होगा अब की बार भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में शायद आज से पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि 3.5 वर्ष का वर्तमान कांग्रेस पार्टी की सरकार का कार्यकाल ऐसा बीता है चारों तरफ तबाही ही तबाही, बर्बादी ही बर्बादी। एक तरफ से आपदा के कारण बर्बादी हुई और उसके बाद रही सही कसर जो है वो सरकार ने। आप कल्पना करिए जिस सरकार को सिर्फ 3.5 वर्ष का कार्यकाल बीतने के बावजूद भी एक ही काम पड़ा है कि काम बंद कैसे किया जा सके। हिमाचल प्रदेश में लगभग 2200 संस्थान बंद कर दिए अभी तक, और अभी तक भी वो सूची बन रही है।
0: प्रदेश भाजपा ने कहा है कि राज्य में महंगाई बेलगाम हो चुकी है, लेकिन सरकार पूरी तरह मूकदर्शक बनी हुई है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता व विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि राज्य में सीमेंट के दाम हर महीने बढ़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार जनता को राहत देने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की कमजोरी और निष्क्रियता के कारण आज सीमेंट कंपनियां मनमानी कर रही हैं, जिससे गरीब, मध्यम वर्ग, किसान और आपदा प्रभावितों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा है कि राज्य सरकार ने सभी गारंटियों को पूरा कर दिया है। एक संयुक्त बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पुरानी पेंशन योजना, युवाओं के स्वरोजगार के लिए राजीव गांधी स्टार्टअप योजना, किसानों के कल्याण के लिए किसान आयोग के गठन सहित हर वर्ग के लिए कार्य किए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि सरकारी क्षेत्र में ही पिछले 3 वर्षों में 23,000 से अधिक युवाओं को नौकरी दी गई है और हजारों पद भरने की प्रक्रिया जारी है। शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के CBSE संबद्ध 156 नए विद्यालयों में कला, विज्ञान और वाणिज्य तीनों संकाय शुरू करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में शिक्षा विभाग से मांगी गई रिपोर्ट में सामने आया था कि 156 विद्यालयों में से 18 विद्यालयों में तीनों संकाय उपलब्ध नहीं हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग को इन CBSE स्कूलों में आवश्यक शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचार आप हमारे हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों से भी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है बिलासपुरी कार्यक्रम।

सभिनी सुनण जो बलवान ठाकुर नमस्कार, राम राम। तव्हां मरा संझर छह महीने छह मिंट जहिड़ा समय हुआसीं बिलासपुर कार्यक्रम आहे। तारा दिन बुधवार कॾहिं शुक्रवार दिन त अॼु आहे अॼु बिलासपुर कार्यक्रम लई ने कार्यक्रम च हीअ असां ॻाल्हिबात कराए सोगी सोगी जा लोकगीत बि ॾिसणो आहे, नविता जी ख़बर बि लॻाए ॻाल्हिबात अहां जे सियाज लॻाइणी कि देखा गर्मी अहिड़ा में न आयण और इन दिन जी असां जंगलनि च काफ़ी ज़्यादा गिरी घटना जी देखण जी आई आहे। त इस विषय ॻाल्हि करणी पई हा जे अपने जंगल से अॻे ते बचाइणे और अॻु लॻी आओ त कीअं असीं हा रोकणी। सोगी सोगी हा ॻाल्हि करणी कि रक्तदान जी असीं महादान हुआ त सभिनी जो जे रक्तदान करणु चाहींदा। ख़बर असीं बि लॻाणी आहे पर कार्यक्रम जी शुरूआति हा लोकगीत सोगी करणी त पहिरीं

लोक त्यां सुण करें लेरुराम संख्यान कने करल्या राणारी आवाज गल्ला करनी की रक्त जान जैसे सभी ते बड़ा दान जैसे मन्ने जा और समाज जिसो महादान यानी सर्वश्रेष्ठ दान दा दर्जा जैसे प्राप्त आ। देखा अज आ रहे साइंस विज्ञान ने जो चिकित्सा क्षेत्र च काफ़ी ज़्यादा तरक्की की रही, पर इसके बावजूद भी विज्ञानिक डॉक्टर अज तक जो है कृत्रिम रक्त जैसे नहीं बनाई सके, यानी मानव रक्त का जैसे कोई विकल्प नहीं आ कने सिर्फ जे ऐसे मानव रक्तदाता देश मिली सका इसो जे ऐसे लैब च नहीं बनाई सकते, दवाई साइए कि फैक्ट्री च नहीं बनी सकता आ। यानी कोई रक्तदान करगा ता ही जे ऐसे किसी मरीजा जो माणु जो जैसे खून चढ़ना। और हर साल जे ऐसे 14 जून जो विश्व रक्तदाता दिवस भी मनाया जा कने इसरे माध्यम से जे ऐसे आम जनमानस जे ऐसे रक्तदान के प्रति जागरूक किया जा कने से जे रक्तदाता है रक्तदान कराएं तिना प्रति एक धन्यवाद भाव आभार भी जी ऐसे समाज प्रति प्रकट जी ऐसे करा। रक्तदान करने देखा मारा बड़ा महत्व आ, एक माणु है रक्तदान करगा अगर कोई तो एक साथ 3 जिंदगी जैसे बचाई सका, एक यूनिट खून ब्लड से जी ऐसे लाल रक्त कोशिका प्लेटलेट्स कने प्लाज्मा ये तीनों अलग अलग करने जाए तीनों मरीजों चढ़ाया जा और इस जो 3 मरीज है ठीक हुए 3 जिंदगियां जो इसे बचाइया। और देखा आपातकालीन स्थितियां हुई इस बड़ा मददगार हुआ, कई बार सड़क दुर्घटना

ना हुई कोई और दुर्घटना होंगी रही फिर किसी मरीजा की जो ऐसे बड़िया सर्जरियाँ हुई या फिर कोई प्राकृतिक आपदाएं हुई तो तिना के दौरान जो ऐसे जो रक्तदाते खून की तरह सही जो ऐसे कम वा क्योंकि उस वक्त जो है जिंदगी रहा एक एक मिनट एक एक सैकेंड जो ऐसे जरूरी हुआ तो जो खून कहीं दान की तरह होगा तो असं तिना मरीजों जो ऐसे चढ़ी हाँ। इस तो अलावा कुछ जो मरीज हुए ऐसे बड़ी गंभीर बीमारियां ने जो जिक्र हुआ तीन थैलीसीमिया हुई या हीमोफीलिया हुई या एनीमिया कैंसर आदि बीमारियां हुई हैं तिना जो निरंतर जो ऐसे खून की जरूरत पौंदी रही तो तिना की जरूरत भी जो ऐसे रक्तदान के माध्यम से जो ऐसे पूरी हुई। रक्तदान जो ऐसे 18 से 65 साल वाली आयु के बीच कोई भी माणू जनाना जो ऐसे कर सकता है यह भी स्वस्थ जो ऐसे होना चाहता। और तीसरा जरा वजन ऐसे 45 किलो तो ज़्यादा हो और जोड़े पुरुष से हर 3 महीनों जो ऐसे रक्तदान कर सकता है और जनाना जी स्वस्थ से 4 महीने जैसे नियमित रूप से रक्तदान जो ऐसे कर सकता है। और इससे देखा मरीजा जो समाज तो लाभ है आ पर जो रक्तदान कर रहे हैं तिना जो भी जो ऐसे काफ़ी ज़्यादा जैसे लाभ हुआ तिना जो ऐसे स्वास्थ्य ठीक रहे हैं जो तिना हृदय स्वास्थ्य आ तीसरा सुधार हुआ क्योंकि इससे जो ऐसे खून जो गाढ़ापन ऐसे घट हुआ कने हार्ट अटैक का खतरा जैसे 88% तक जो ऐसे घट हुई है। खून देने ते 48 घंटे के अंदर जो ऐसे जो नवी रक्त कोशिकाएं से बनी हुई हैं तो इससे शरीर जो ऐसे कमजोरी नहीं आती है। और अगर किसी का वजन जो ऐसे नियंत्रण से नहीं आता हो ज़्यादा वजन हो तो एक बार रक्तदान करने पर जो ऐसे 600 से लेने 800 तक कैलोरी जो ऐसे बर्न हुई और जोड़ा वजन ऐसे नियंत्रण च रहे और जो रक्तदान करा तो उस वक्त उसका जो ऐसे पूरा हेल्थ चेकअप हुआ और जोड़े जरूरी टेस्ट है चाहे बीपी आ एच बी आ एच आई वी हेपेटाइटिस सारी बीमारियां परीक्षण हुई तो एक मुफ्त हेल्थ चेक जो चेकअप असें भी तिना जो जैसे मिली हाँ। और सोगी सोगी जी ऐसे एक सामुदायिक भावना पैदा हुई समाज सेवा की भावना नर सेवा की प्रेरणा जैसे मिलाई और समाजा इस जैसे एक एकता संदेश जैसे जहाँ उन्हें सभी से बड़ा लाभ जो ऐसे माणु जो मानसिक आत्म संतुष्टि मानसिक स्वस्थ जो इससे बेहतर हुआ जो रक्तदाता तीसरे मना च जैसे संतुष्टि अनुभव हुआ और जो शरीर च खुशी और हारमोन जैसे ज़्यादा बधाएं और बोलें कि संतोष कने संतुष्टि से बड़ा कोई धन नहीं आ तो जोड़े भी स्वस्थ माणु हैं तिना जो जो ऐसे जरूर जो है रक्तदान जो ऐसे करना चाहता ताकि तेरा अपना भी स्वास्थ्य ठीक रहो और जोड़ा तिना जरूरती मरीजा जो तिना भी जो ऐसे वक्ता वक्ता जो ऐसे खून मिलता रहो। ये गलबात थी जी नवी ताज़ी खबरें इसे भी लगानी है। पहली खबरी मारा कि प्रदेश सारे 51 शहरी निकाय खातर जी ऐसे अज मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुई है। मंडी धर्मशाला पालमपुर कने सोलन नगर निगम सोगी सोगी जी ऐसे प्रदेश सारी 25 नगर परिषदा कने 22 नगर पंचायतों के खातर जी ऐसे अज चुनाव होया। इस इन सभी कुल मिलाई ने 449 वार्ड थे और इन जी ऐसे 10 वार्ड खातर पार्षद पहले जी ऐसे निर्विरोध चुने जाएगी रहे और शेष 449 वार्ड खातर जी ऐसे अज मतदान जैसे होया। और इन सीटा खातर जी ऐसे कुल 1147 उम्मीदवार जी चुनाव लड़ी करें। नगर परिषदा कने नगर पंचायतों की खातर जैसे मतगणना शुरू हुई और अज शामी तक जी ऐसे पूरी हो जानी जबकि जोड़े 4 नगर निगम तिना नतीजे जी ऐसे 31 मई जो घोषित जैसे किए जाने। ये खबर थी महाराज। चलद चलद ऐसे लोग गीत हाँ एक होर लगाना तो सुनाए लोग गीत।

बिलासपुरी कार्यक्रम अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे लाहौली कार्यक्रम।

जुले नमस्ते इनी हिंचिपा छाई दो थे गर्जे पई प्रोग्राम दो गीस तंजन आंगमो आकाशवाणी शिमला ची इनी छाई दो तिमरिल नांग यंपो स्वागत लिखत थनगी फ्यास खब उन्टे हेज लो नंग थजु छाई कचांग डंडा रमेश परसुसु थजी एपो इस्तेमाल लीजी तरक्की लिचू नांग सुसु एपो इस्तेमाल मलीजी जिंदगी रो ग्यप तो लुशील मिश थजु गुनशीचु चला खा हिजलो नंग समय टाइम थन गि फैस समय का सही उपयोग हिश

टाइम खुक्शीश नांग मते पा जो छुई खुक्शीश छाई छाई दो डंडा बराबर समय तेज वह फरक गुई पढ़ाई की येज लो नंग थजू बक की इस्तेमाल लिख चुमगी सुमी समय सम्मान लिख चीज थजू मीरो टाइम मांग सम्मान लिख द चीज नंग सु सु समय रो व्यर्थ एल दे द चीज थजू मी खोची पछताई लिख चीज थनशे छाई बसल तेजी समस्या खा हेज लो नंग वक्त की बर्बादी मोबाइल फोन सोशल मीडिया रो खर मई दो घंटा घंटा वीडियो कंचूज खर लेन लिखचुंगी खम्स मई आलसी के जीजो थी चीज थे छाई दाल तो एरी आदत के थी चू नंग एरी कीमती वक्त थे छाई नुआ एल थी चू खची बार हिंग जी ते चुमकी सिर्फ गाई मिनट फोन दो क्योर खे व थजू गाई मिनट खाना यूस तिको घंटा ती क्या थी चीज हिंग जो पता क्या मैं मईश खासकर नचुमा शर्मा जी लोकचिपा बेते जो रोज टाइम समय की सही नंग एपो इस्तेमाल लिखचा छटक यूं शीश क्योंकि दाक्षम नीश वक्त नुई नुई लेन लिखचा मेहनत लिखचा नंग राय भविष्य की बोंठे मेहनत लिखचुंगी ऐश अगर थे भक्त रो एपो दिशा रो एल दे बोंठे इस्तेमाल ली नंग रजत सु टाइम रो छाई तो लोई केमेश द समय की एपो ली जी उपयोग लिखचा मतलब थेनामेश की छाई वक्त सिर्फ लेन लिख कजो थी चुज बल्कि खर लेन टिक्या नंग इंजी टाइम दो लिखचा नंग लेन रुकचा रो लोचुज छाई लेन दो एपो ली जी समय नंग यम्पो बटाई लिखचा छठी गुंशीश जैसे लुकचुम की बक्ता लुकचुज शुनचुम की टाइम ससा बुचुज टबर यम्पो फेरे जोमेन की टाइम ससा ससा नंग राय जुक्स रो स्वस्थ बुचाई बुठे ससा वक्त बुचुज सुमी थे छाई लेन टाइम दो लिखचा छठीश ताल दो अनुशासन नंग टाइम की एपो नंग बेहतर उपयोग लिखचुम की पता रमेश दंगपो शेख की सफल की चुमी छाई जिस समय की असल कीमत पता लिखशीश व नुनांग ताल जी सफल कीश महात्मा गांधी स्वामी विवेकानंद थे छाई जी समय की एपो इस्तेमाल लीजी मेहनत लिखशीश एरी युल की बोंठे समाज की बोंठे एपो लेन लिखशीश थनसुंग शेमी जी बिल्कुल टाइम मता टाइम मई थे ना लोचिन छो असल दो टाइम त छाई की कचांग तेई तेईश मगर थजू बोंठे एपो ती योजना गुंशीश अगर हिंग जी नरो चिफितो इपचास्तो की प्लानिंग दुरे ली जिबो नंग होशित में लोई के मेश नंग लेन साई टाइम दुरे खोमचुश सिर्फ लोकचा नंग खमोटी लेन लिखचा बोंठे के जी इस्तेमाल लिखचुमेश बल्कि राय टबर जी बोंठे ताल जी अम्पो जोमेन फ्यामेन बोंठे रे टाइम वंचा होशित में गुंशीश थनसुंग की लेन साई की बार दो नाना हिंग टबर रोकची वही के ले लीजिए एरी अमा हुआ आपते ते नंग य तो जी अम्पो बिताई लिखी चु वक्त एरी मीचे रो नोई खुशहाल लिखचीश समय हिंग जो हर दिन नुई अवसर दचीश हेर नरो शेंशी नुई शुरुआत लिखचुंगी अगर या हिंग मांगची हर गलती तिकिया नंग हिन हिन नंग व थजू गलती रोकची सीख थिंचे जी सुधार लिखचा ठुपचियन छो एपो एपो आदत छाई एरी जीवन रो बेहतर लिखचीश सोचाई ली नंग मीचे क्युकची तीयश एरंग जो एपो ली जी शिंडा दर जी मेहनत लिखच गुंशीश थजुकची एरी ररे चुबक्त एरी भविष्य बेहतर कैमेश एली चुबक्त नंग आची लोची चुफ्यस तब शिला मेमेश थे फ्यास सिंह जो हित पूछे गुंशीश द थे लपचा नंग यम्पो थे फ्यास क्या खोम गए थे द ललती हिंगते दौलत राम की ललती चिट्टा तेरा चोला।

रथंगी समाचार हिंकते प्रदेश की 51 तिजी युल रो मतदान एपोलीजी खर बार दो मई दो के येश थनगरो एक बजास तो की जानकारी रोकची तिजी युल की करीब 49% मतदान दर्ज लिखशियेश धर्मशाला मंडी पालमपुर नांगसोलन की नगर निगम यम्पो प्रदेश की 25 नगर परिषद नांग 22 नगर पंचायत जोरो मतदान लिखचेश प्रदेश जो 449 वार्ड मांगची चुई वार्ड रो पर

विरोध चुनाई लिखी हेजनांग 439 वार्ड रो मतदान लिखचेश थे सीट रो 1139 मी जी वोट बोंठे शेंशा रो चुनाई लिखशीश। नगर परिषद नांग नगर पंचायत की वोट की गिनती थन फितोस तो पूरा क्या मेश लुता दरुंग नगर निगम की चुनाव की पता 31 मई रो पता के मेश। यूल निर्वाचन आयोग की अनुसार नरो 1 बजास तो निरा 1 बजास तो नगर परिषद नांग नगर पंचायत रो हमीरपुर जिला रो छाई बसल नोई 69% मतदान दर्ज के येश। सिरमौर जिला रो छाई बसल छुई 18% के येश। प्रदेश रो शहरी निकायो रो मतदान रो शांगटे शांगजी जी वोट दचा गुआंगछी गुआन लुछा सुसु जगह रो लोग या केई शांगटे जी वोट दचा पोलिंग स्टेशन लेपची गुआ लुछा। शिमला जिला की चिड़गांव नगर पंचायत रो लोग या संग नोई उमर की कोलदासी जी थन इंजी वोट देता। ठियोग वार्ड रो रे 102 उमर की विमल देवी जी टे वोट देता। दुरित रो शहरी निकाय चुनाव रो प्रदेश रो करीब 73% वोट दर्ज लिखशीश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई रविवार दो आकाशवाणी रोकची मन की बात कार्यक्रम दो इंजी फ्यस फेमिश थे लया की रेडियो कार्यक्रम की 134 कड़ी है। हिंची पर छाई टोल फ्री नंबर 1800-1178-00 रो कार्यक्रम रो राई फ्यस बुचा बोंटे थे नंबर दो शोकचा बोंटे है। दरुंग सुझाव नरेंद्र मोदी ऐप या माई गोव ओपन फॉरम जो रो शोकचा ठुपची है। इन्हीं हिंची पर जी 1922 रो रे मिस कॉल या SMS रो राई सु लिंक रो सीधा प्रधानमंत्री रो राय फैस शोकचा ठुपचीश। इन्हीं जी सुझाव 29 मई यास्तो शोकचा ठुपचीश। थल सेना अग्निवीर भर्ती 2025-26 की तहत लिखित सु अग्निवीर क्लर्क नांग स्टोर कीपर की भर्ती की फाइनल परिणाम घोषित लिखशीश थे भर्ती की इम्तियान हमीरपुर बिलासपुर नांग ऊना जिला रो युवा जीबोंठे लिखशीश। थल सेना भर्ती हमीरपुर की निर्देशक कर्नल श्रीधर राजन जी लोशीश की थे इम्तिहान की परिणाम सेनाई वेबसाइट joinindiaarmy.nic.ro कंचा खुकशीर दथे नांग यंपो थनगी समाचार ख्या खूम गते दथे प्रोग्राम की आखिर लला हिन कते पालमो नांग साथी थिरची स्वांगलोता धरती।

0: अभी आप सुन रहे थे लाहौली कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi arrived in Gothenburg, Sweden this evening on the third leg of his five-nation tour after concluding his visit to the Netherlands. He was received at the airport by the Swedish Prime Minister Ulf Kristersson.

0: sleeper service between Bengaluru and Mumbai is expected to begin soon. Highlighting railway infrastructure growth, the minister said Karnataka currently operates 12 pairs of Vande Bharat trains. He added that bullet train corridors connecting Bengaluru with Hyderabad and Chennai have also been approved. The new Keralam government led by Congress leader V.D. Satheesan will be sworn in tomorrow in Thiruvananthapuram. Congress had announced Satheesan as the next chief minister of Keralam on the 14th of this month, putting an end to the high drama and suspense that lasted for 10 days. The Congress-led United Democratic Front secured a more than two-thirds majority in the Keralam Assembly elections. However, the alliance was unable to decide its chief ministerial phase due to lobbying by different camps and protests by workers at the ground level. In the United Arab Emirates, a drone strike triggered a fire outside the Baraka nuclear power plant in Abu Dhabi today. According to the Abu Dhabi Media Office, the blaze broke out in an external electrical generator located outside the plant's perimeter. Authorities said that there were no injuries and no impact on radiological safety levels. In Russia, four persons were killed, including an Indian worker, in the largest Ukrainian drone attack on Moscow and nearby regions in more than a year. Moscow Mayor Sergei Sobyanin said at least 12 people were injured in the overnight strikes, while Russian authorities claimed that 81 drones targeting Moscow were intercepted. In badminton, India's Shreyansi Valishetty clinched the silver medal in the women's singles at the Baoji China Masters in China today. She went down to local favourite An Chi-yeon in straight sets 14-21, 6-21 in the summit clash of the Super 100 event at the Baoji City Gymnasium. In IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru have set a target of 223 runs for Punjab Kings in Dharmashala, chasing the target Punjab Kings 185 for 6 in 18.1 overs when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.
1: XOT 107 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM शिमला केंद्र। 7:10 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है किसान बागवान भाई बहनों के लिए कृषि जगत कार्यक्रम।
2: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान एवं बागवान भाइयों और बहनों को हमारा
3: नमस्कार।
2: किसान साथियों, कृषि जगत के आज के इस अंक में मैं हूं रामकुमार शर्मा।
3: और मैं हूं अरविंद वर्मा।
2: अरविंद जी, कैसे हाल है आपके?
3: शर्मा जी, मेरे हालचाल बिल्कुल ठीक हैं और आशा करते हैं कि हमारे किसान बागवान भाई बहन भी बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे।
2: किसान साथियों, जैसे कि आजकल दिन के समय बहुत गर्मी है, तो हम आपसे यही आग्रह करेंगे, जो अपना खेती बाड़ी का कार्य है आप सुबह और शाम के समय सुचारू रूप से करें, ताकि आप रोग रहित रह सके।
3: जी
2: किसान साथियों, आज हमारा काम की बातों के अंतर्गत जो जानकारी का विषय है वो है दुधारू पशुओं के लिए संतुलित आहार व उनका स्वास्थ्य प्रबंधन। लेकिन अपने विषय की ओर जाने से पहले क्यों ना हम आपको जो हमारा आज का कृषिगत कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा के बारे में बता दें।
3: जैसा कि शर्मा जी आपने बता ही दिया कि काम की बातों के अंतर्गत हमारा आज का चर्चा का विषय रहेगा दुधारू पशुओं में संतुलित आहार व उनका स्वास्थ्य प्रबंधन। इसके अलावा मनोरंजन होगा लोकगीतों के माध्यम से और सुनवाई जाएगी जानकारी पूर्ण बातचीत। तो करते हैं कार्यक्रम का आगाज और शुरुआत करते हैं काम की बातों से।
2: किसान भाइयों, अपने पशुओं को हम दाने व चारे के रूप में जो खाने को देते हैं उसमें बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जो पशु के लिए अति आवश्यक होते हैं। ऐसे पदार्थों को हम पोषक तत्व कहते हैं। इन पोषक तत्वों से पशु के शरीर की सभी क्रियाएं सामान्य रूप से चलती है, क्योंकि पोषक तत्व पशु के शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और शरीर की कोशिकाओं में होने वाली टूट फूट को ठीक करते हैं। इन पोषक तत्वों से ही पशु शरीर को शक्ति मिलती है।
3: तो किसान भाई बहनों, संतुलित आहार की बात करें तो पशुओं को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल, विटामिन और खनिज लवणों, पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि इन पोषक तत्वों की पशु के शरीर में कमी हो जाए तो पशु के शरीर की क्रियाएं सामान्य रूप से नहीं चल पाती, पशु के शरीर का विकास रुक जाता है और पशु से मिलने वाले उत्पादन की मात्रा भी कम हो जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की। किसान भाई बहनों, प्रोटीन का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्वों से होता है। इसमें गंधक और फास्फोरस भी पाया जाता है। प्रोटीन से

0: पशु शरीर के तंतुओं की वृद्धि, नई कोशिकाओं का निर्माण, टूटी फूटी कोशिकाओं का पुनर्जन्म और मुरम्मत होती है। प्रोटीन से पशु शरीर में पाचक रस, हार्मोन्स और एंजाइम्स का निर्माण होता है। ऑक्सीजन शोषित करने में सहायता मिलती है। शरीर आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा प्राप्त होती है और शरीर की रचना और वृद्धि होती है।
1: जी किसान साथियों, अब प्रोटीन अभाव के दुष्परिणामों के बारे में आपको बता दें, यदि पशु शरीर को प्रोटीन की उचित आपूर्ति न हो तो शरीर की रचना वृद्धि रुक जाती है और पशु के उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए पशु को प्रोटीन की उचित आपूर्ति के लिए आवश्यक और संतुलित आहार अवश्य देना चाहिए। अब कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक तत्वों से होता है। कार्बोहाइड्रेट से पशु का शरीर गर्म रहता है और अपना कार्य अच्छी प्रकार से करता है। प्रोटीन की क्षय कम होती है और कार्बोहाइड्रेट्स यकृत व मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर फिर रक्त में मिल जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, आलू, गन्ना, गुड़, चीनी में भरपूर मात्रा में पाया जाता है।
0: किसान भाई बहनों, कार्बोहाइड्रेट्स अभाव के दुष्परिणामों की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स की कमी में पशुओं के शरीर में कमजोरी आ जाती है। पशु के शरीर की क्रियाएं चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा नहीं मिल पाती और पशु का उत्पादन कम हो जाता है। इसलिए पशुओं में कार्बोहाइड्रेट्स की उचित आपूर्ति के लिए पशुओं का उचित मात्रा में हरा चारा और दाना खिलाना चाहिए। खून में ग्लूकोज का स्तर कम होने पर पशुओं में कीटोशिश नामक बीमारी भी हो जाती है।
1: अब किसान साथियों, वसा की बात करें तो वसा का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से होता है। वसा से पशु शरीर को शक्ति व गर्मी मिलती है और शरीर की वृद्ध, विकास एवं स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। वसा त्वचा व प्रजनन के लिए आवश्यक है, जो भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। विटामिन ए, डी और ई वसा में घुलकर शरीर को प्राप्त होते हैं। ये पशु शरीर को सर्दी से बचाती है और शरीर को सुडौल बनाती है।
0: किसान भाई बहनों, वसा के अभाव से वसा में घुलनशील विटामिन शरीर को नहीं मिल पाते, जिससे शरीर में विटामिन की कमी से अनेक विकार हो जाते हैं। पशु का शरीर कमजोर और दुबला हो जाता है, शरीर के बाल भी गिर जाते हैं। इसलिए पशुओं को वसा वाला भोजन उपलब्ध करवाना चाहिए।
1: जी किसान साथियों, जल की संरचना हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से होती है। पानी पशु शरीर के लिए सबसे आवश्यक तत्व है। पानी भोजन पचाने, शरीर में बनने वाले दूषित पदार्थों को बाहर निकालने, शरीर में बनने वाली असंख्य कोशिकाओं के निर्माण और शरीर के तंतु को मुलायम और लचीला बनाए रखने में सहायक होती है। पशु के शरीर को पानी सीधे पीने के अतिरिक्त दानों और चारों से मिलता है।
0: किसान भाई बहनों, पशु के शरीर में पानी की कमी से रक्त प्रवाह प्रभावित होता है, जिससे शरीर की कमी से पाचन क्रिया भी प्रभावित होती है और पशु को कब्ज हो जाती है। पशु सुस्त हो जाता है, शरीर में बनने वाले गंदे तत्व बाहर नहीं निकल पाते, जो पशु के शरीर में बहुत बुरे प्रभाव डालते हैं। इसलिए पशु को उचित मात्रा में पानी पिलाना चाहिए, हरा चारा खिलाना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर नॉर्मल सेलाइन घोल खून की नस में चढ़वाना चाहिए।
1: अब किसान साथियों, विटामिन की बात करें तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन आदि मूल तत्वों से निर्मित जटिल यौगिक है। ये प्राकृतिक रूप से अनेक पदार्थों से मिलते हैं, साथ ही कृत्रिम रूप से इन्हें प्रयोगशालाओं में भी तैयार किया जाता है। किसान साथियों, पशु शरीर के लिए विटामिन बहुत ही आवश्यक होते हैं। इनकी उपस्थिति से शरीर निरोग एवं स्वस्थ रहता है, इसलिए इन्हें जीवन तत्व भी कहते हैं। सभी जीवों में जीवित क्रियाओं को संतुलित बनाए रखने के लिए इनका भोजन में होना बहुत ही आवश्यक होता है। प्राकृतिक रूप से विटामिन्स हरे चारे में उपलब्ध होते हैं या पशु इन्हें पेट में बनाते हैं। यद्यपि इनकी आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है, परंतु इनकी कमी से पशुओं में अनेक बीमारियां हो जाती है।
0: सबसे पहले बात करेंगे विटामिन ए की। किसान भाई बहनों, इस विटामिन का पशु पोषण में विशेष महत्व है। ये आमतौर पर हरी सब्जियों और चारों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस विटामिन से पशु के शरीर की वृद्धि होती है और विकास ठीक प्रकार से हो पाता है। पशु की पाचन क्रिया भी ठीक रहती है। पशु की हड्डियों के निर्माण में और रोगों से बचाने में इसका विशेष महत्व है। आंखों की रोशनी और प्रजनन क्षमता को बनाए रखना इस विटामिन का मुख्य कार्य है।

0: अब किसान साथियों आपको विटामिन ए के अभाव के दुष्परिणाम के बारे में बताएं तो विटामिन ए की कमी से पशुओं में शरीर का विकास रुक जाता है, जननांग व पाचन तंत्र ठीक प्रकार से कार्य नहीं करते और त्वचा के अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, पशु में गर्भपात हो जाता है और पशुओं से दूध कम मिलता है। पशुओं में विटामिन की कमी से बच्चे भी अंधे पैदा होते हैं। पशु के हरे चारे में विटामिन ए पाया जाता है, इसलिए विटामिन ए की कमी से बचाने के लिए पशुओं को उचित मात्रा में हरा चारा खिलाना चाहिए और अधिक आवश्यकता पड़ने पर विटामिन ए के इंजेक्शन व विटामिन ए युक्त पाउडर पशुओं को खिलाना बहुत ही आवश्यक होता है।
1: बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। किसान भाई बहनों, ये एक सामूहिक विटामिन है जिसमें B1, B2, B3, B6 और B12 आदि विटामिन होते हैं। ये विटामिन पानी में घुलनशील होता है और पशु आहार का आवश्यक तत्व है। इस विटामिन से पशुओं की पाचन क्रिया ठीक रहती है, मांसपेशियां मजबूत रहती है और पशु स्वस्थ रहता है।
0: अब किसान साथियों आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव के दुष्परिणामों के बारे में बताएं तो इस विटामिन की कमी से पशु का पाचन खराब हो जाता है, पशु कमजोर रहता है और त्वचा खुश्क व रुखी हो जाती है, दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है व प्रजनन क्षमता भी इसके अभाव के कारण कम हो जाती है।
1: किसान भाई बहनों, बात करते हैं विटामिन सी की। पशुओं में इसका निर्माण स्वयं हरी घास खिलाने से होता है। इस विटामिन से पशु शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है। विटामिन सी की कमी से दांत और हड्डियों के अनेक रोग होते हैं, पशुओं के जोड़ों में सूजन और कैल्शियम की कमी हो जाती है, शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है।
0: अब किसान साथियों विटामिन डी की बात करें तो इस विटामिन को एंटी रिकेटिक विटामिन भी कहते हैं। ये विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। ये विटामिन शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के उचित उपयोग के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। हड्डियों एवं दांत की उचित विकास के लिए पशु आहार में विटामिन डी की उचित मात्रा होना बहुत ही आवश्यक होता है। अब इसके दुष्परिणामों की बात करें, विटामिन डी की कमी के कारण सूखा रोग जिसे रिकेट्स कहते हैं हो जाता है, पशुओं की दूध उत्पादन क्षमता कम हो जाती है और पशु कमजोर हो जाते हैं, पशुओं में मिल्क फीवर रोग उभरने की संभावना बढ़ जाती है, हड्डियों के जोड़ों में सूजन आ जाती है और विटामिन डी कमी को पूरा करने के लिए पशुओं को हरा चारा व संतुलित आहार देना चाहिए। इसकी कमी को पूरा करने के लिए विटामिन ए व डी 3 भी इंजेक्शन के रूप में दिया जा सकता है। तो किसान साथियों ये तो हमने आपको जानकारी दी दुधारू पशुओं के लिए संतुलित आहार व उनका स्वस्थ प्रबंधन इस विषय पर। अब निश्चय ही आपको इंतजार होगा मनोरंजन का। आइए आप और हम मिलकर सुन लेते हैं कृतिका तनवर की आवाज में ये लोकगीत।

0: किसान बागवान भाई बहन अभी सुन रहे थे लोकगीत। किसान भाई बहनों, अब हम आपको जानकारी पूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण सुनवाने जा रहे हैं। विषय रहेगा फसल विविधीकरण। जानकारी पूर्ण बातचीत में भाग ले रहे हैं डॉक्टर मधु पटियाल और जानकारी हासिल करेंगे हरि कृष्ण शर्मा। तो आइए मिलकर सुनते हैं ये जानकारी पूर्ण बातचीत।
1: किसान भाइयों, देखिए बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर मधु पटियाल जी आए हैं। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है।
2: धन्यवाद हरि जी।
1: डॉक्टर साहब, आज हम अपने किसान और बागवान भाई बहनों के लिए आपसे जानना चाहेंगे कि फसल विविधीकरण जो है वो क्या है।
2: जी हरि जी, आपने एक ये बहुत ही अच्छा टॉपिक जो हमने चूज किया है वो है कि फसल विविधीकरण। तो जैसे कि हम सुन पा रहे हैं, विविधीकरण मतलब विविधता। तो अगर हम सामान्य रूप में फसल में जो विविधता लाने का प्रयास करते हैं या हम इसको परिभाषित करें, तो फसल विविधीकरण का ये मतलब है कि हम एक खेत में अलग अलग फसलें लगाएं या अलग अलग फसल चक्र अपनाएं, या फिर जैसे किसान भाई पारंपरिक फसलें लगाते हैं उनके साथ वो नई फसलें अपनी या नई फसल प्रणाली को अपने खेत में लगाएं।
1: जी।
2: अगर हम सामान्य रूप में फसल विविधीकरण को जाने, तो इसका तात्पर्य ये रहता है कि हम नई फसल प्रणालियों को कृषि उत्पादन या कृषि से जो आय है उसको बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें।
1: जी जी डॉक्टर साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि फसल विविधीकरण की जो है आवश्यकता वो हमारे किसान और बागवानों के लिए क्यों पड़ी।
2: ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जब भी हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम उसको क्यों कर रहे हैं। प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन जी को में उन्होंने नई नई किस्में लाई गेहूं की, और जिससे कृषि की पैदावार में वृद्धि हुई और जो भारत है वो उसमें में हमारे देश में भुखमरी जो है वो कम हुई। तो जब भी हम इसकी हरित क्रांति की बात करते हैं तो इसमें दूसरा पहलू एक और भी रहता है कि पैदावार तो बढ़ी लेकिन किसानों ने क्या करना शुरू कर दिया कि गेहूं एक ही खेत में हर साल हर बार गेहूं ही लगाना या धान ही लगाना शुरू कर दिया।
1: जी, जी।
2: जिसके कारण क्या हुआ कि मिट्टी जो है वो हमारी उपजाऊ शक्ति खत्म होती चली गई, और साथ में जल जो है वातावरण भी दूषित होते गए।
1: डॉक्टर साहब बिल्कुल सही है, मेरे जहन में भी एक ये प्रश्न आया है कि कई बार देखा गया कि हमारा जो किसान है बागवान है वो बार बार एक ही फसल को उसी खेत में लगाता है, तो जो उसकी उपजाऊ शक्ति है वो क्षण

0: हो जाती है, यानी कि काफी कम हो जाती है। तो ऐसा हमारे किसान भाइयों को नहीं करना चाहिए। और इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं?
1: जी देखिए, अगर आप मिट्टी सेम ही एक ही जगह में एक ही फसल लगाएंगे तो जो पैदावार कम होगी, क्योंकि बार बार वो ही न्यूट्रिएंट फसल जो पौधा है वो उसको लेगा, वो ही
0: जी
1: फसल। अगर हम जो दालें हैं वो लगाएंगे तो उससे नाइट्रोजन मिलेगा
0: जी
1: जो मिट्टी को, और जो किसान भाई को अगली फसल के लिए कम नाइट्रोजन देना पड़ेगा, इससे क्या होगा कि उनकी आय बढ़ेगी किसान भाइयों
0: जी
1: की।
0: जी डॉक्टर साहब, यहाँ ये भी प्रश्न पैदा होता है कि जैसे इस साल किसी खेत में गेहूं लगाया है, तो कितने सालों के बाद वो रिपीट करना चाहिए, यानी कितने सालों के बाद दोबारा ही उसी खेत में गेहूं या जौ की फसल लगाई जाती है?
1: जी आप ये चीज देख सकते हैं कि आप कैसे गेहूं लगा रहे हैं, मतलब गेहूं के साथ आप अगर जो जैसे मैं बोल रही हूँ दालें हैं, राजमा हैं या
0: जी
1: कुछ और फसल लगाते हैं, तो वो एक साल या सेम में चल सकता है, अगले साल भी उस चीज को लगा सकते हैं।
0: जी
1: लेकिन जैसे इस साल आपने गेहूं लगाया, अगली फसल आप अगर दालों की ले रहे हैं वो भी ठीक है,
0: जी
1: लेकिन आप एक साल गेहूं लगा रहे हैं अगले साल भी गेहूं लगा रहे हैं, तो 2-3 साल तक तो ठीक रहेगा, लेकिन धीरे धीरे उस मिट्टी की संरचना भी चेंज होगी और
0: जी
1: उसके न्यूट्रिशन और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो संरचना है वो भी चेंज हो जाएगी।
0: जी जी डॉक्टर साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि फसल विविधीकरण जो है उसके कितने प्रकार माने गए हैं?
1: जी फसल विविधीकरण मोस्टली जब हम कहते हैं तो 2 प्रकार से हम कर सकते हैं, किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: जी वो कौन
1: जैसे
0: कौन
1: कि हम
0: से?
1: अभी बात कर रहे हैं कि एक फसल लगाए उसके साथ कोई और मिश्रित फसलें,
0: मिश्रित,
1: जो
0: जैसे गेहूं के साथ चना भी लगाते हैं हमारे
1: बिल्कुल
0: किसान भाई, और कई बार गेहूं के साथ जौ की फसल भी लगाई जाती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल हाँ, इस तरह से इसको मिश्रित फसलें बोलते हैं, या फिर हम क्रॉप रोटेशन बोलते हैं, गेहूं लगाया उसके बाद आप सोयाबीन लगा दो अगले
0: जी
1: सीजन पे, तो ये क्रॉप रोटेशन है। इसको हम जो हॉरिजॉन्टल विविधीकरण बोलते हैं, मतलब क्षेत्रीय विविधीकरण।
0: जी
1: लेकिन एक और विविधीकरण का पहलू है जिसको हम बोलेंगे वर्टिकल विविधीकरण। तो इसमें क्या होता है कि आप फसलें तो लगा रहे हैं, लेकिन फसलों के साथ साथ आप जो उच्च मूल्य वाली जिसकी ज्यादा मांग बढ़ती है उन औद्योगिकरण को शामिल करते हैं, मतलब फसल लगाई है लेकिन उसके साथ साथ आपने जो और जैसे हॉर्टिकल्चर है, वेजिटेबल्स है, ये भी लगाए साथ में ताकि विविधता आ जाए। अगर आपकी जैसे अभी आपने हाल ही में देखा कि वर्षा नहीं हो रही थी
0: जी
1: तो
0: जी
1: लोग गेहूं नहीं नहीं लगा
0: नहीं
1: पाए
0: लगा
1: या
0: पाए
1: गेहूं नहीं हुई, तो उन्होंने अगर जौ लगाया होता तो शायद उनको कुछ मिल जाता, क्योंकि जौ जो है वो जलवायु से बहुत ही अच्छी लचीली फसल है। तो किसान भाई उस तरह से अपनी खेत में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं विविधीकरण की।
0: जी। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो फसल विविधीकरण है इसके लाभ जो है क्या क्या है?
1: जी हरी जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जब भी आप कुछ लगाना चाहेंगे तो पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपको उससे फायदा होगा या नहीं होगा।
0: जी
1: किसान भाई हमेशा ही यही सोचता है।
0: बिल्कुल, फायदे के लिए ही वो इस तरह की जो तकनीकें जो है वो अपनाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही। तो जैसे हम बार बार कहते हैं हर टॉपिक में ये बोलते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मतलब हमारी जो है जलवायु चेंज हो रही है, उसमें अगर हम एक ही फसल लगाते रहेंगे तो हो सकता है कि वो फसल कामयाब ना हो,
0: जी
1: इसलिए हमें 2 या 3 अलग अलग फसलें लगाएं जो कि जलवायु लचीली फसलें हों। जैसे गेहूं की बात कर रहे थे तो जौ भी लगा सकते हैं, या
0: जी
1: फिर दालें लगा लो, राजमा लगा दो, चने लगा दो, उस तरह
0: जी
1: से वो जलवायु से जो भी परिवर्तन आएगा, और जो भी जैसे हम कहते हैं कि आजकल जो बीमारियां हैं, अलग अलग बीमारियां आ रही हैं, कीड़े अलग अलग आ रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए भी ये फसल विविधीकरण बहुत ही लाभदायक होता है।
0: डॉक्टर साहब, मेरे जहन में एक प्रश्न आ रहा है कि हमारे गांव में एक अक्सर ये धारणा रहती है, हमारा किसान ये कहता है कि एक फसल जो है वो हल्की लेनी चाहिए, एक फसल जो है वो भारी लेनी चाहिए। तो हमारे किसान भाई करते क्या कि कई बार आलू की फसल में गेहूं लगाते हैं, तो वो कहाँ तक उचित है?
1: जी ये आपने बहुत ही अच्छा नोटिस किया है जो किसान भाइयों के खेतों में, क्योंकि हमेशा हम यही बोलते हैं कि आप न्यूट्रिशन को देख के अपनी फसलें लगाएं, खेत में कितना न्यूट्रिशन यूज हो रहा है और कितना जा रहा है। जैसे कि अगर आप आलू ही लगाते रहेंगे तो वो उनकी रूट्स और गेहूं की रूट्स ऊपर ऊपर रहती हैं, तो ऊपर के जो भी न्यूट्रिशन है वो उसको ले लेंगे,
0: जी
1: लेकिन हमें डीप रूटेड और शैलो रूटेड, जैसे गेहूं थोड़ा सा नीचे होता है, वेजिटेबल्स थोड़ी सी ऊपर होती है, तो इन चीजों का मिश्रण करके ही लगाना चाहिए ताकि कुछ जमीन के को भी जाए, जैसे पल्सेस है उसको भी लगाएं तो जो जमीन को जो नाइट्रोजन मिलेगा
0: जी
1: और साथ साथ में जो पौधों को कम नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी, तो इस तरह से किसान भाई चेंज कर सकते हैं उन चीजों को।
0: जी डॉक्टर साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि फसल विविधीकरण कैसे बढ़ाई जा सकती है, जो हमारा किसान है वो इसको कैसे बढ़ाएगा?
1: जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं हरी जी की, पल्सेस की बात करें, आप आलू की बात कर रहे हैं,
0: जी
1: आप जौ की बात कर रहे हैं, ये

0: सारी फसलें हैं जो खासकर अब हम मोटे अनाजों की भी बात करते हैं,
1: जी
0: लगता है कि ये जलवायु लचीली फसलें हैं, इस तरह इनको लगाने से आपको जो न्यूट्रिशन जो है वो किसान भाइयों को कम देना पड़ेगा, कम इरिगेशन देनी पड़ेगी, इन फसलों को लगा के वो फसल विविधीकरण बढ़ा सकते हैं।
1: जी
0: साथ साथ में इनमें जो है कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो किसान भाइयों की जो खाद्यान्न थाली होती है वो इन न्यूट्रिशन से भर जाए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जो ये मोटे
1: जी
0: अनाज होते हैं, तो इस तरह से किसान भाई कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि मैं आपसे बात कर रही थी कि किसान भाई बागवानी की फसलें या फिर सुगंधित पौधों को भी अपना के जो
1: जी
0: है वो विविधीकरण ला सकते हैं। और कभी-कभी हम देखते हैं कि किसान भाई के जो किनारे हैं, खेतों के किनारे जो होते हैं उसमें वो चारा संबंधित
1: जी
0: फसलें भी लगा सकते हैं ताकि वो हॉर्टिकल्चर का अच्छा उनको फीड दे सकें, जो पशुधन उन्होंने रखा तो उसको अच्छे से न्यूट्रिएंट दे सकें।
1: जी जी डॉक्टर साहब, हमने ऐसा भी देखा कि कई बार जब मक्की की फसल हमारा किसान भाई लगाता तो मक्की के साथ कई दालें जो है उसमें, जैसे राजमा है, माह है या और भी कई चीज़ें मिश्रित रूप में लगाते हैं, तो वो कहाँ तक उचित है और ये विविधीकरण के लिए उसका क्या लाभ है?
0: जी ये तो किसान भाई हमेशा ही लगाते हैं, और आपने बहुत अच्छे से भी पूछा कि क्यों लगाते हैं, क्या फायदा है। जैसे कि हम देखते हैं कि जब हम दालें लगा रहे हैं तो जो मिट्टी में जो पोषक तत्व है, खासकर नाइट्रोजन मिट्टी को जा रहा है,
1: जी
0: और साथ साथ में जो आपने मक्का लगाया है तो उसमें वो नाइट्रोजन जो है मक्का यूज़ कर रहा है, तो मक्के को जो हमने नाइट्रोजन देना होता है वो कम उसको देना पड़ता है,
1: जी
0: तो इससे हमारी सॉइल भी इनरिच्ड होती है नाइट्रोजन से और किसानों को बार बार नाइट्रोजन देने की जरूरत नहीं रहती। उसके अलावा जो अगर पल्सेस हम लगा रहे हैं तो पल्सेस में आप जैसे है कि उनको लकड़ियां लगाते हैं उनको ऊपर चढ़ने के लिए, बेलों को ऊपर चढ़ने के
1: जी
0: लिए, तो
1: जी जी
0: अगर वो मक्का के साथ लगा रहे हैं तो मक्के में ही वो चढ़ जाते हैं, तो किसान भाइयों के जो स्रोत है जो वो काम कर रहे हैं वो भी उनकी आसानी से काम हो जाता है, तो इस तरह से किसान भाई बहुत अच्छे से विविधीकरण अपना सकते हैं।
1: जी जी डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो फसल विविधीकरण है इसकी जो संभावित चुनौतियां हैं हमारे किसान भाइयों को जिसका मुकाबला करना पड़ता है, वो कौन कौन सी रहती है?
0: जी सबसे पहले तो चुनौती जो हम बात कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है या वर्षा नहीं हो रही है, तो
1: जी
0: जब वर्षा नहीं होगी तो आपको दो तीन फसलें लगाने, उस तरह से आपको नियोजन करना पड़ेगा कि आप कौन सी फसलें लगाएं। ये सबसे ज़्यादा किसान भाइयों को रहता है कि हम कौन सी फसलें लगाएं और कौन सी किस्में लगाएं, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वो लगाते हैं और जब वो हार्वेस्टिंग करते हैं खासकर
1: जी
0: उस टाइम वो हार्वेस्टिंग कोई पहले पक रहा है कोई लेट पक रहा है तो उनको बहुत दिक्कत होती है,
1: जी
0: तो
1: जी
0: किसान भाइयों को वो विविधीकरण में वो बहुत बड़ी चुनौती है कि ऐसी फसलें या ऐसी प्रजातियां लगाएं जो इकट्ठे पकें और इकट्ठे वो न्यूट्रिशन भी एक जैसे समानता न्यूट्रिशन वो ले।
1: यानी कि जो भी फसलें लगाए वो एक साथ खेतों में तैयार हो। कई बार
0: बिल्कुल
1: जैसे कि हमने आपसे पहले भी कहा कि कई बार भाथु की फसल भी जो है वो हमारे किसान भाई खेतों में मक्की के साथ लगाते हैं, तो मक्की जल्दी तैयार हो जाती है और वो कई बार भाथु जो लगाते हैं वो देरी से तैयार होता है। डॉक्टर मधु पटियाल जी, आज आपने हमारे किसान और बागवान भाई बहनों के लिए बहुत ही बढ़िया जानकारी दी फसल विविधीकरण क्यों और कैसे के बारे में। इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद हरी जी।
1: किसान भाइयों, अभी आपने सुना ये जानकारीपूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण, जिसका विषय था फसल विविधीकरण। और इस विषय पर हमें ज्यादा जानकारी दे रहे थे डॉक्टर मधु पटियाल और उनसे जानकारी हासिल कर रहे थे हरिकृष्ण शर्मा। किसान साथियों, अब निश्चय ही आपको पुनः इंतजार होगा मनोरंजन का,
2: तो आइए मिलकर सुनते हैं संतराम शर्मा और डॉक्टर हुकुम शर्मा की आवाज में ये लोकगीत।

अभी किसान बागवान भाई बहन सुन रहे थे कृषि जगत कार्यक्रम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM शिमला केंद्र। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: किसान साथियों, अभी आपने सुना ये लोकगीत। अब किसान भाइयों, हमारे कार्यक्रम का समय भी समापन की ओर है। क्यों ना हम आपको जो हमारा अगले दिन प्रसारित होने वाला कृषि जगत कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा के बारे में जानकारी दे दें।
1: कल हमारा काम की बातों के अंतर्गत चर्चा का विषय रहेगा शिमला मिर्च की संरक्षित खेती। मनोरंजन होगा लोकगीतों के माध्यम से और सुनवाई जाएगी जानकारीपूर्ण बातचीत।
0: किसान भाइयों, इसी के साथ साथ घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कार्यक्रम समाप्ति का। सभी किसान एवं बागवान भाइयों से अनुमति चाहेंगे।
1: नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिमला। अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आप डीटीएच सेवा, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और आकाशवाणी एफएम शिमला से भी सुन रहे हैं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के 51 शहरी निकायों में मतदान शांतिपूर्वक संपन्न, 69% से अधिक मतदाताओं ने डाले वोट। नगर परिषद व नगर पंचायतों के लिए मतगणना जारी, नगर निगम चुनावों के परिणाम 31 मई को होंगे घोषित। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार के 3.5 वर्ष के कार्यकाल को बताया निराशाजनक, राष्ट्रपति 25 मई को प्रदान करेंगी वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार, 131 विभूतियां होंगी सम्मानित। और भाजपा का आरोप, महंगाई रोकने में विफल रही प्रदेश कांग्रेस सरकार। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 51 शहरी निकायों में मतदान आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। चुनाव प्रक्रिया के दौरान नगर निगम धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी सहित 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों में वोट डाले गए। इन चुनावों के लिए 69% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। हमीरपुर ज़िले में सबसे अधिक 78%, जबकि सोलन ज़िला में सबसे कम 64% मतदान हुआ। नगर परिषद और नगर पंचायतों के लिए डाले गए मतों की गिनती जारी है और देर रात तक सभी नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा नगर निगमों के चुनाव नतीजे 31 मई को घोषित किए जाएंगे। भाजपा और कांग्रेस के अलावा बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं। प्रदेश में हुए नगर निगम चुनाव में मंडी और पालमपुर में सबसे अधिक करीब 69% मतदान दर्ज किया गया। इसी तरह धर्मशाला में करीब 60%, जबकि सोलन में 58% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ऊना ज़िले के 6 शहरी निकायों में करीब 78% मतदान दर्ज किया गया। बिलासपुर ज़िले में करीब 73%, शिमला ज़िले में 77.36%, जबकि सिरमौर ज़िले में कुल 67.24% मतदाताओं ने वोट डाले। चंबा ज़िले में 68% से अधिक, कांगड़ा ज़िले में 74% से अधिक, कुल्लू में करीब 68% और मंडी ज़िले में 73% से अधिक वोट डाले गए। प्रदेश में शहरी निकायों में मतदान को लेकर इस बार बुजुर्ग मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला है। कई स्थानों पर 100 वर्ष की आयु के बुजुर्ग भी मतदान के लिए पोलिंग स्टेशन पहुंचे। शिमला ज़िले की चिड़गांव नगर पंचायत में 100 वर्ष से अधिक उम्र की कौलदासी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ठियोग वार्ड में भी 102 वर्षीय विमला देवी सूद ने मतदान किया। पिछली बार शहरी निकाय चुनावों में प्रदेश में करीब 73% मतदान दर्ज किया गया था। पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाताओं में भी मतदान के प्रति उत्साह देखा गया। सिरमौर ज़िले में भी नगर परिषद नाहन, पांवटा साहिब और नगर पंचायत राजगढ़ का मतदान शांतिपूर्ण रहा। नाहन से कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने इन चुनावों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को भारी जनसमर्थन मिला है।
1: लोगों में उत्साह है इस लोकतंत्र के महापर्व

0: कि पहले तो मैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और जितने भी प्रत्याशी मैदान में उनकी उनको सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि पिछले दिनों में प्रचार के दौरान नाहन नगर परिषद की प्रबुद्ध जनता का आशीर्वाद और स्नेह मिला, तो इसमें विश्वास हनी थी नहीं, पूरी उम्मीद है कि आज शाम को जो है नगर परिषद नाहन तो आने वाले 5 साल की दिशा और दशा तय करेगी। उसमें कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों को भारी समर्थन मिल रहा है।
1: शिमला ज़िले में रोहडू की दलगांव पंचायत में चुनाव चिन्हों के आबंटन में नियमों की अनदेखी पर जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त अनुपम कश्यप ने सहायक निर्वाचन अधिकारी रजनीश चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस मामले में जांच के दौरान पाया गया कि चुनाव चिन्हों का आबंटन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पंचायत चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाने में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा है कि राज्य सरकार ने सभी गारंटियों को पूरा कर दिया है। एक संयुक्त बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पुरानी पेंशन योजना, युवाओं के स्वरोजगार के लिए राजीव गांधी स्टार्टअप योजना, किसानों के कल्याण के लिए किसान आयोग के गठन सहित हर वर्ग के लिए कार्य किए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि सरकारी क्षेत्र में ही पिछले 3 वर्षों में 23,000 से अधिक युवाओं को नौकरी दी गई है और हजारों पद भरने की प्रक्रिया जारी है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, xhandle@AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी ज़िले में सराज विधानसभा क्षेत्र के गाड़ा गुसैनी और बगड़ा थाच में पार्टी समर्थित जिला परिषद सदस्य के पक्ष में प्रचार किया। उन्होंने दावा किया कि सराज विधानसभा क्षेत्र के सभी जिला परिषद वार्डों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की जीत होगी। कांग्रेस सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का 3.5 वर्ष का कार्यकाल निराशाजनक रहा है और इस अवधि में केवल संस्थानों को बंद करने का काम किया गया है।
2: आने वाले समय में 1 साल के बाद जब चुनाव होगा विधानसभा का, तो हिमाचल प्रदेश में सरकार भाजपा की बनेगी और प्रचंड बहुमत के साथ, और ऐसा बहुमत होगा अब की बार भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में शायद आज से पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि 3.5 वर्ष का वर्तमान कांग्रेस पार्टी की सरकार का कार्यकाल ऐसा बीता है, चारों तरफ तबाही ही तबाही, बर्बादी ही बर्बादी। एक तरफ से आपदा के कारण बर्बादी हुई और उसके बाद रही सही कसर जो है वो सरकार ने। आप कल्पना करिए, जिस सरकार को सिर्फ 3.5 वर्ष का कार्यकाल बीतने के बावजूद भी एक ही काम पड़ा है कि काम बंद कैसे किया जा सके। हिमाचल प्रदेश में लगभग 2200 संस्थान बंद कर दिए अभी तक, और अभी तक भी वो सूची बन रही है।
1: राज्यसभा सांसद व प्रदेश भाजपा महासचिव डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा देशवासियों से आर्थिक राष्ट्रवाद और विवेकपूर्ण उपभोग के आह्वान ने राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक नई चेतना जागृत की है। एक बयान में उन्होंने कहा कि सोने के सीमित उपयोग और ईंधन संरक्षण से देश का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा और आत्मनिर्भर भारत को अभूतपूर्व गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का ये दूरदर्शी कदम वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 मई को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नागरिक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मान दिया जाएगा। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान व इंजीनियरिंग, जनसेवा सहित व्यापार और उद्योग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। प्रदेश भाजपा ने कहा है कि राज्य में महंगाई बेलगाम हो चुकी है, लेकिन सरकार पूरी तरह मूकदर्शक बनी हुई है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता व विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि राज्य में सीमेंट के दाम हर महीने बढ़ रहे

0: हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार जनता को राहत देने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की कमजोरी और निष्क्रियता के कारण आज सीमेंट कंपनियां मनमानी कर रही हैं, जिससे गरीब, मध्यम वर्ग, किसान और आपदा प्रभावितों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 31 मई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। ये सुझाव नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के माध्यम से भी दिए जा सकते हैं। आप 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक से भी सीधे प्रधानमंत्री को सुझाव भेज सकते हैं। सुझाव 29 मई तक स्वीकार किए जाएंगे। शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के CBSE संबद्ध 156 नए विद्यालयों में कला, विज्ञान और वाणिज्य तीनों संकाय शुरू करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में शिक्षा विभाग से मांगी गई रिपोर्ट में सामने आया था कि 156 विद्यालयों में से 18 विद्यालयों में तीनों संकाय उपलब्ध नहीं हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग को इन CBSE स्कूलों में आवश्यक शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की उपलब्धता निश्चित बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। थल सेना अग्निवीर भर्ती 2025-26 के तहत आयोजित अग्निवीर क्लर्क और स्टोरकीपर की भर्ती का फाइनल परिणाम घोषित कर दिया गया है। ये भर्ती परीक्षा हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना जिले के युवाओं के लिए आयोजित की गई थी। थलसेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के निदेशक कर्नल श्रीधर राजन ने बताया कि उम्मीदवार ये परिणाम सेना की वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर देख सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 51 शहरी निकायों में मतदान शांतिपूर्वक संपन्न, 69% से अधिक मतदाताओं ने डाले वोट। नगर परिषद व नगर पंचायतों के लिए मतगणना जारी, नगर निगम चुनावों के परिणाम 31 मई को होंगे घोषित। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार के 3.5 वर्ष के कार्यकाल को बताया निराशाजनक। राष्ट्रपति 25 मई को प्रदान करेंगी वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार, 131 विभूतियां होंगी सम्मानित। और भाजपा का आरोप, महंगाई रोकने में विफल रही प्रदेश कांग्रेस सरकार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार आप हमारे हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों से भी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं देशकान।

0: देश गान अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: अगर आप जन जन तक पहुंचना चाहते हैं और अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं तो आकाशवाणी पर सस्ते दामों में अपना विज्ञापन प्रसारित करवाएं।
2: थोड़ा सा प्रयास आपके सपनों को पूरा कर सकता है। आकाशवाणी के माध्यम से आप न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश में अपने व्यवसाय का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी। आकाशवाणी
2: नियमों शर्ते लागू।
3: तू है तो हर दर्द सुकून सा लगता है, तेरे बिना ये दिल वीरान सा लगता है। तुम्हारे प्यार ने हमें ऐसे बदला है कि हर खुशी में अब तुम्हारा नाम सा लगता है। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपका रेडियो मेरम दीपक शर्मा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना अपने परिवार का, समाज व पर्यावरण का बखूबी ख्याल रख रहे होंगे। प्रोग्राम की पहली पेशकश चोरी चोरी फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन की धुन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

तेरा नाम लूँ तो हर दर्द मिट जाता है, उनका चेहरा देखूँ तो दिल मुस्कुराता है। मोहब्बत उनसे है इस कदर, हर लम्हा बस उन्हीं का साथ ही दिल चाहता है।

तुम्हारी मुस्कान ही हमारी पहचान बन गई, तू मिली तो हमारी दुनिया आसान बन गई। अब तो बस एक ही ख्वाहिश है हमारी, वो साथ रहे ये जिंदगी मेहरबान बन गई।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम भूले बिसर गीत। तो प्रोग्राम की अगली पेशकश चलती का नाम गाड़ी फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज़, मजरूह के बोल, एस टी बर्मन की धुन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: वो थी हम

के दिल धक धक धक धड़के, दोनों ने देखा मुड़ मुड़ के, वाह वाह वाह। हम थे वो थी और हमार रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गए।

खींचा आ हा हा घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा मैंने खींचा आ हा हा हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना याने याने याने प्यार हो गया।

0: प्रोग्राम की आखिरी पेशकश नवरंग फिल्म से महेंद्र कपूर आशा भोसले की आवाज़ से।
1: देख चंद्रमा आधा है, रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी आधी न।

0: करनी है खुदा से एक गुजारिश, उनके प्यार के सिवा कोई बंदगी ना मिले, हर जन्म में साथी हो उनके जैसा, या फिर जिंदगी ही ना मिले।
1: जो नहीं।
0: फिल्म से गीत की पहली पेशकश, ये सिलसिला है प्यार का फिल्म से।

0: 139.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम शिमला केंद्र। 8:45 होने को हैं। समाचार संध्या का प्रसारण अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। 9 बजे आप सुनेंगे News@9।
1: मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वलीशेट्टी ने बाऊजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की 2 दिन की यात्रा के बाद 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप्स, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसर तलाशने की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग लैंडवेटर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने उनका स्वागत किया। विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश ग्राइपन लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट भी किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा, जिसे दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री यूरोपियन संघ के शीर्ष उद्योगपति और सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक में भी शामिल होंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व श्री मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर विदाई दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक, जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी। उनकी यात्रा में यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पल था, जब लाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चोल युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा। ये भारत की विरासत और सभ्यता का अनमोल अध्याय है। यात्रा के अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए। इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप, क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पसर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग। शुश्रुष शर्मा, आकाशवाणी, द हेग, नीदरलैंड्स।
1: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा

0: चुनाव में दो तिहाई से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था।
1: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के दो दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधुर डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है।
2: एनआईडी एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान। जब एनआईडी की स्थापना हुई तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
0: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
3: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
4: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितवांग को गिरफ्तार किया है। थान सितवांग एनसीबी और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024 के एक एनसीबी मामले में मुख्य आरोपी है, जिसमें 14 किलोग्राम मेथमफेटामीन और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी। वर्ष 2025 के एनसीबी मामले में भी ऐजोल में 49 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामीन जब्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित चार लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानी ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबूधाबी स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबूधाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के केरलम में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे चार दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले तीन से चार दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वली शेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं।

अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित चार लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम शिमला केंद्र। अब इसके 15 मिनट हो चुके हैं और ये वक्त है प्रोग्राम आप प्रोग्राम एक फिल्म से का। इस प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ आपका एडमिरम दीपक शर्मा। दोस्तों आज हम बात करेंगे 1972 में ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्मित पारिवारिक कथा आधारित हास्य हिंदी भाषा की फिल्म बावर्ची के बारे में। जैसे कि हमने आपको बताया फिल्म का निर्माण किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने और इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे राजेश खन्ना, जय भादुरी, असरानी, ए के हंगल और दुर्गा खोटे। फिल्म की कहानी की बात करें तो आरंभिक दृश्यों के बाद इसमें खाना पकाने की थीम का प्रभावशाली उपयोग किया गया है। फिल्म अमिताभ बच्चन के साथ शुरू होती है जो कि एक अजीब स्थिर लाल पर्दे के सामने क्रेडिट्स की घोषणा करते हैं और फिर कहानी के विभिन्न पात्रों का परिचय देते हैं। सबसे पहले व्यंग्यात्मक रूप से शांति निवास नाम के घर में रहने वाले कलह प्रिय शर्मा परिवार के वो सदस्य होते हैं। घर में अंतहीन कलह के कारण परिवार अपने नौकरों को नहीं रख पाता, जो बदले में और ज़्यादा विवाद और बहस का कारण बनता है। परिवार को बुजुर्ग असंतुष्ट पितामह शिवनाथ शर्मा यानी दादू जी, जिसकी भूमिका हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने निभाई है, उसने नियंत्रित करते हैं, जो हमेशा अपने बेटों अपनी बहुओं सुबह की एक अच्छी चाय की कमी के बारे में शिकायत करते रहते हैं। अपने चिड़चिड़े स्वभाव के बावजूद वो घर में एकमात्र व्यक्ति हैं जो कृष्णा शर्मा यानी जय भादुरी की भलाई के बारे में सोचते हैं, जो उनके स्वर्गीय दूसरे बेटे और बहू की अनाथ बेटी हैं जिनकी कई साल पहले एक कार दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। एकांत प्रिय कृष्णा हर किसी के इशारों पर नाचती हैं, फिर भी उसका स्वभाव सुखद और खुशनुमा होता है, जिसके कारण वह बिना अपनी सुविधा का ख्याल किए मुस्कुराते हुए सभी की सेवा करती रहती है। आगे कहानी में क्या क्या होता है बताएंगे इस गीत के बाद। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

जो तुम बात कर रहे हैं फिल्म बावर्ची की कहानी के बारे में, तो घर में दादू जी के पहले बेटे रामनाथ, उनकी पत्नी सीता और उनकी बेटी मीता भी हैं। और रामनाथ एक परेशान क्लर्क है जिनका पारिवारिक जीवन उनके काम को प्रभावित करता रहता है। वो अपनी परेशानियों से निपटने के लिए संभवतः अपनी पत्नी और बेटी से निपटने में मदद के लिए भी शराब पीते हैं। हालांकि ये वास्तव में उनके साथ व्यवहार करने में उन्हें अधिक सुखद बनाता है। सीता अपने गठिया की शिकायत करती रहती है जो उन्हें विभिन्न घरेलू कामों में मदद करने में असमर्थ बनाता है, जबकि मीता बस आलसी है, केवल नृत्य पाठों और पार्टी में जाने के लिए बिस्तर से उठती है। दादू जी के तीसरे बेटे काशीनाथ एक अभिमानी स्कूल शिक्षक होते हैं जो अपनी पत्नी शोभा और अपने छोटे बेटे पिंटू के साथ घर में रहते हैं। परिवार का आखिरी सदस्य दादू जी का चौथा बेटा विश्वनाथ शर्मा है जो फिल्मों का संगीत निर्देशक होता है, जैसा कि कृष्णा सटीक ढंग से कहती है। अंग्रेजी गानों की नकल करता है, उसमें हिंदी गीत जोड़ता है, उन्हें रिकॉर्ड करता है और फिल्म के अंतिम दो पात्र गुरुजी पेंटल यानी मीता के नृत्य शिक्षक और अरुण हैं जो कृष्णा के ट्यूटर और प्रेमी भी है। परिवार के झगड़े उनकी स्वार्थपरता पर आधारित होती है, उनमें से कोई भी नए नौकरों की तलाश की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। इसी दुखी घर में रघुनंदन उर्फ रघु यानी राजेश खन्ना प्रवेश करता है जो एक दिन बस दरवाजे पर प्रकट हो जाता है, उनका नया रसोईया बनने की पेश करता है। रघु हर किसी की प्रार्थनाओं का जवाब लगता है क्योंकि वो कम वेतन पर जोर देता है, अद्भुत भोजन पकाता है, दार्शनिक गायक संगीतकार और नृत्य प्रशिक्षक के रूप में भी प्रतिभाएँ रखता है। वो देवताओं का उपहार लाता है। हालांकि रघु को दादू जी के बिस्तर के नीचे जंजीर से बंधे बड़े बक्से में अस्वस्थ रुचि लगती है। इस बड़े बक्से में परिवार के जेवर होते हैं और क्षेत्र में एक चोर की रिपोर्ट्स जुड़ जाने से रघु का आगमन थोड़ा सा संदिग्ध भी लगता है। हालांकि रघु की खाना पकाने की जो अनूठी क्षमता है उसके वजह से जो है परिवार के लिए अनिवार्य सदस्य बन जाता है। इसी समय रघु कृष्णा को पढ़ाता भी है, उसकी प्रतिभाओं को सामने लाता है और परिवार के सदस्यों के बीच गलतफहमी को दूर करने, संदिग्ध कराने में मदद करता है। दादू जी नहीं मान सकते कि रघु वास्तव में देवता द्वारा भेजा गया एक उद्धारक है। इसी बीच रघु अच्छी तरह जानता है कि कृष्णा अरुण से प्यार करती है, लेकिन शर्मा कृष्णा का अरुण के साथ मिलन के सख्त खिलाफ है। अरुण भी कृष्णा से प्यार करता है लेकिन कृष्णा के रिश्तेदारों के सामने अलाचार है। इस सब उलझन के बीच रघु अचानक घर से गायब हो जाता है, जबकि शर्मा परिवार ये जानकर स्तब्ध रह जाते हैं कि जेवर का बक्सा भी गायब है। दादू जी विश्वनाथ और शर्मा परिवार के दो और दो जोड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता। इसी समय अरुण आता है। लोग पहले से घटनाओं के मोड़ और लड़के के आगमन से क्रोधित होते हैं, लेकिन जब वो उन्हें जेवर का बक्सा दिखाता है तो उन्हें झटका लगता है। वो बताता है कि उसने रघु को बक्से के साथ संदिग्ध हालत में देखा और जब उसने रघु से बक्से के बारे में पूछा तो रघु ने भागने की कोशिश की, जबकि उसने रघु को रोकने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसे पीटा भी था, लेकिन रघु जेवर का बक्सा फेंककर भागने में कामयाब हो गया। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम से स्तब्ध शर्मा परिवार का अरुण के प्रति रवैया बदल जाता है और वह कृतज्ञता में उसकी कृष्णा से शादी कराने के लिए राजी हो जाते हैं। हालांकि कृष्णा और

सीता इस कहानी पर यकीन करने से इनकार कर देती है। जब शर्मा परिवार रघु की बुराई करने लगता है तो अरुण से और सह नहीं पाता और उन्हें सच्चाई बता देता है, ये खुलासा करते हुए कि वास्तव में वो रघु से अपने ही अखाड़े में मिला था और उसके साथ एक छोटा सा दोस्ताना मैच खेला था जहाँ उसे रघु से मामूली चोटें आई थी। इसके अलावा उसने जेवर का बक्सा देखा और रघु से इसके बारे में पूछा, जिस पर रघु ने जवाब दिया कि बक्सा ही वो असली कारण था जिसके लिए वो वहाँ आया था। इस प्रकार रघु ने अरुण से कहा था कि वो बक्सा शर्मा परिवार को दे दे और उनसे झूठ बोले कि उसने इसे चुरा लिया था ताकि अरुण घर में अपनी जगह वापस आ सके और कृष्णा और परिवार का दिल जीत सके। इसी बीच कृष्णा रघु को घर से बाहर देखती है और उसे पूछती है कि उसने ये सब क्यों किया। रघु उसे बताता है कि उसका असली नाम प्रोफेसर प्रभाकर था लेकिन उसने रघु का झूठा नाम लिया है और नौकर के रूप में दिखावा किया क्योंकि उसने शर्मा परिवार जैसे कई परिवारों को देखा था जो टूटने के कगार पर थे और इसलिए उसने अपने ज्ञान का उपयोग इसे रोकने के लिए करने का फैसला किया। एक स्तब्ध शर्मा परिवार को ये स्वीकार करना पड़ता है कि रघु ने शांति निवास जैसे कई घरों को बचाने के लिए अपनी राह से हटकर काम किया। हालांकि कृष्णा समय पर रघु को कहीं और जाने से रोक लेती है और रघु उसे बताता है कि ये उसके जीवन का मिशन है और अब उसे जाना होगा। फिल्म का अंत रघु के एक नए गंतव्य की ओर यात्रा करने के दृश्य के साथ होता है और अमिताभ बच्चन कहते हैं कि रघु एक नए घर जा रहा है, आशा है कि वो आपका घर ना हो। दोस्तों, इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट अभिनेता का भी पुरस्कार पेंटल को दिया गया था। इस फिल्म के गीत लिखे थे कैफी आजमी ने, उन्होंने दिलकश संगीत से संवारा था मदन मोहन ने, गीत गाए थे मन्ना डे, किशोर कुमार, लता मंगेशकर और लक्ष्मी शंकर ने।

0: प्रदेश के सशक्त प्रचार प्रसार माध्यम आकाशवाणी पर आप अपने कारोबार में ला सकते हैं बढ़ोतरी।
1: यदि आप जुड़े हैं किसी स्टार्टअप या मेक इन इंडिया या किसी पंजीकृत सेल्फ हेल्प ग्रुप से, तो आप आकाशवाणी पर सस्ते दामों में विज्ञापनों के माध्यम से अपनी मेहनत को जन जन तक पहुँचाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं। शुभवाणी, लाभ वाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

हर रात उनकी यादों का जहर पीता हूँ, टूटता हूँ, बिखरता हूँ, फिर भी जीता हूँ। शायद यही किस्मत में लिखा था हमारी, उनके बिना हर पल बस यूं ही तड़पता रहता हूँ। प्रोग्राम दिल की आवाज़ भी सुन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं आपका रेडियो मैरम दीपक शर्मा। प्रोग्राम की पहली पेशकश तुम्बन फिल्म से, उदित नारायण अनुराधा पौडवाल की आवाज़ से। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

हर बात तुम से शुरू तुम से ही ख़त्म हो, हमारी ज़िंदगी बस तुम से जुड़ी हर दम हो। ये दुनिया जन्नत से कम न होगी जब एक दूजे के साथ हम और तुम हो।

प्यार में जुदाई भी होती है, प्यार में बेवफाई भी होती है। थाम के वो देखे जो हमारा हाथ, तो पता चलेगा कि प्यार में सच्चाई भी होती है।

आंखों की चमक पलकों की शान हो तुम, चेहरे की हंसी लबों की मुस्कान हो तुम, धड़कता है ये दिल बस आप ही की आरजू में, फिर कैसे न कहें कि हमारी जान हो तुम।

दिल उनके लिए ही मचलता है, ठोकर खाता है फिर संभलता है। किसी ने इस कदर दिल पर कर लिया है कब्जा कि दिल हमारा है, बस उन्हीं के लिए धड़कता है।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यदि आप चला रहे हैं कोई पंजीकृत स्वास्थ्य क्लिनिक या अस्पताल
3: या पंजीकृत होटल या रेस्टोरेंट,
2: तो अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आकाशवाणी से सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से

0: अपना प्रचार प्रसार कीजिए। शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।
2: हमने तन्हाई में जंजीर से बातें की है, अपनी सोई हुई तकदीर से बातें की है। उनके दीदार की भला हमको अब क्या तमन्ना होगी, जिंदगी भर उनकी तस्वीर से बातें की है। मौसीकी से भरपूर गजलों के इस कार्यक्रम में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। मैं आपका रेडियो मेरा दीपक शर्मा। प्रोग्राम की पहली पेशकश चंदन दास की आवाज में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

बहुत उदास दिल उनके चुप हो जाने से, हो सके तो बात कर ले वो किसी बहाने से। वो लाख खफा हैं पर इंतहा तो देखिए, कोई टूट गया है उनके चुप हो जाने से। अगली आवाज़ गुलाम अली की।

तुम्हारी धड़कन से ज़िंदगी का रिश्ता है हमारा, तुम्हारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है हमारा। ये मोहब्बत तुमसे सिर्फ लफ्ज़ों की नहीं है, तुम्हारी रूह से रूह का रिश्ता है हमारा।

खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, न जाने कौन कब ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग ज़िंदगी में मिलते हैं ऐसे कि जिनसे कभी ना ख़त्म होने वाला रिश्ता बन जाता है। प्रोग्राम की आखिरी पेशकश आशा भोसले और भूपेंद्र की आवाज़ में।

0: कुछ जन जन तक पहुंचना चाहते हैं और अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं तो आकाशवाणी पर सस्ते दामों पर अपना विज्ञापन प्रसारित करवाएं।
1: आपका थोड़ा सा प्रयास आपके सपनों को पूरा कर सकता है।
0: आकाशवाणी के माध्यम से आप न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में अपने व्यवसाय का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। शुभवाणी लाभ वाणी जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।
2: उनकी हर अदा मोहब्बत सी लगती है, एक पल की जुदाई भी मुद्दत सी लगती है। पहले नहीं पर अब सोचने लगे हैं हम कि जिंदगी के हर लम्हे में उनकी जरूरत सी लगती है। सदाबहार नगमे कार्यक्रम की पहली पेशकश त्रिशूल फिल्म से।

फिर न सिमटेगी मोहब्बत जो बिखर जाएगी, ज़िंदगी जुल्फ नहीं जो यूं ही संवर जाएगी। थाम लो हाथ उसका जो प्यार करे तुमसे, ज़िंदगी ठहरेगी नहीं जो गुजर जाएगी।

हमें किसी से मोहब्बत नहीं तुम्हारे सिवा, हमें किसी की ज़रूरत नहीं तुम्हारे सिवा, जो हमारे दिल और ज़िंदगी पर राज करे, किसी को इतनी इजाज़त नहीं तुम्हारे सिवा।

क्या चाहूँ रब से तुम्हें पाने के बाद, किसका करो इंतज़ार तुम्हारे आने के बाद। क्यों मोहब्बत में जान डुटा देते हैं लोग, मैंने ये भी जाना इश्क करने के बाद।

चले गए हैं दूर कुछ पल के लिए, मगर करीब हैं हर पल के लिए। कैसे भुलाएंगे आपको एक भी पल के लिए, जब हो चुका है प्यार उम्र भर के लिए।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम शिमला केंद्र। इस समय रात्रि के 11 बजने को हैं। समाचारों का प्रसारण अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा, पहले हिंदी में और फिर 11:05 पर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों पक्षों ने व्यापार, हरित बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु का

0: कार्रवाई के अलावा द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के नए तरीकों पर भी चर्चा की। इस बीच स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वीडिश समकक्ष यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ मिलकर एक प्रमुख अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा के सहयोग में बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी आज शाम अपने पांच राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। गोथेनबर्ग हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गोथेनबर्ग के लिए रवाना होने से पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को विदाई देने आए। नीदरलैंड की अपनी दो दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डच समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीदरलैंड की उनकी यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान की है। इस दौरे को गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके डच समकक्ष ने ऊर्जा, बंदरगाह, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों की प्रमुख डच कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को दो दिन की यात्रा पर द हेग पहुंचे थे। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आज हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। घटना लूनी रिक्शा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच हुई। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जाँच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है। इकाई ने कहा है कि भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। भारत के श्रेयांसी वलिशेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांसी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. The two sides also explored new avenues of cooperation in trade, green transition, artificial intelligence, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defence, space, climate action, and